मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस टीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम फ्रीक्वेंसी 41.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से।

भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू।

0: हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टेलफेन में एसआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पीटीएम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में परवल की खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम परवल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। परवल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। भारी व लवणीय मृदाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। यह फसल सूखे के प्रति सहनशील है। जलमग्न दशा में इसकी पैदावार ठीक नहीं हो पाती है। मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद 4-5 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल बना लेते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो परवल की अच्छी खेती के लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से पहले ही खेत में मिला देना चाहिए। फिर इसके बाद 120 किलोग्राम यूरिया, 240 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अंतिम जुताई के समय 40 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 65 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बाकी जो यूरिया बचती है 40 किलोग्राम यूरिया मार्च माह में सिंचाई के बाद खेत में देना चाहिए तथा 40 किलोग्राम यूरिया फूल आने पर पौधों के चारों तरफ देना चाहिए। जब खेत तैयार हो जाए फिर 30 से 40 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे 2 मीटर की दूरी पर बना लेते हैं। लाइन से लाइन की दूरी भी 2 मीटर ही रखते हैं, परंतु जब इसे मचान पर चढ़ाने के लिए उगाते हैं तो ये दूरियां 1.5-1.5 मीटर ही रखते हैं। प्रत्येक गड्ढे में आधा भाग मिट्टी, 1/4 भाग बालू और 1/4 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 100 ग्राम नीम की खली ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई कर देते हैं और फिर इसमें परवल के पौधे को लगाते हैं। इसकी जो प्रजातियाँ हैं वह हैं डांडली, कल्याणी, बिहार शरीफ, सुपारी, सफेदा, निरिया, संतोखिया और जौनपुरी। ये सब देसी किस्में हैं। इसके अलावा कुछ उन्नतशील किस्में हैं जैसे FP1, FP3 और FP4। तो इनमें से जो भी प्रजाति आपको मिले लेकर के रोपाई करें। परवल के पौधे तनों द्वारा लगाए जाते हैं। इसके लिए परवल की लताओं की कटिंग लगाते हैं। पके परवल के बीज बोकर भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से लगभग 50% पौधे नर निकल जाते हैं जिससे पैदावार की क्षति होती है। अतः पौधों का प्रसारण कटिंग द्वारा ही किया जाता है। जिन पौधों में फलत समाप्त हो चुकी होती है वो तो मादा पौधे ही होते हैं। इन्हें पहचान कर इन्हीं लताओं में से 120 से 150 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े जिनमें 3-4 गांठों से कम ना हो गोलाई में घुमाकर इस प्रकार मोड़ना चाहिए कि लच्छे की चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर

0: मीटर रह जाए। फिर गोले को आमने सामने दाब कर बीच में बांध देते हैं, जिससे ये लंबे हो जाते हैं और दोनों किनारों पर छोर की शक्ल बन जाती है। इन लच्छों को तैयार किए गए थालों में, जो ज़मीन से 6 से 8 सेंटीमीटर ऊपर उठे हों, में इस प्रकार रोपित करते हैं कि बंडल के दोनों सिरे लगभग 2-2 सेंटीमीटर ज़मीन से बाहर निकले रहें। रोपाई के बाद मिट्टी भली भांति दबा देनी चाहिए, ताकि वायु जड़ों तक न पहुंच सके। एक बात और ध्यान में रखें, परागण क्रिया सुचारू रूप से होने के लिए 10% नर पौधों की रोपाई भी करना जरूरी है। लताओं की रोपाई के तुरंत बाद थालों में हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार गर्मियों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर तथा सर्दी में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूलने एवं फलन के समय खेत में नमी रहना आवश्यक है। पौधों को मचान पर चढ़ाने से 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ उपज अधिक मिलती है। ये मचान एंगल आयरन अथवा लकड़ी के खंभों पर लोहे के तारों अथवा लकड़ी के मार्च के महीने में बनाए जाते हैं। अप्रैल या मई माह में परवल में फल आने लगते हैं तथा अक्टूबर तक मिलते हैं। फल लगने के 15-20 दिन बाद परिपक्व हरे फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर परवल की खेती करनी चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में परवल की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना।

शिव का ध्यान भक्त को भक्तिमय बनाता है। शिव के ध्यान से भक्तों के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। भक्त रुद्राक्ष की माला जपते हुए अपने अभीष्ट भगवान शिव का नामस्मरण करता रहता है और गहन साधना में तल्लीन रहता है।

भगवान शिव की महिमा जो भक्त गाता है उसका हृदय सद्विचारों से भर जाता है। प्रभु भक्ति में वो शिव नाम का जाप करता रहता है। ऐसे तेजोमय शिव के चरणों में सादर प्रणाम है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम में आज आपने नरेंद्र चंचल, रूप कुमार राठौड़ और अनुराधा पौड़वाल के स्वरों में भक्ति रचनाएं सुनी। आराधना कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु।
1: दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत आत्मबल ऐसे गुण हैं कि हर क्षेत्र में इनके बल पर सफलता मिलती है, लेकिन इन गुणों के बल पर अहंकार हो जाता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए भगवान श्री राम ने रावण को समझाने के लिए उसके पास अंगद को भेजा ताकि वो माता सीता को ससम्मान लौटा दे। रावण को अंगद ने जब प्रभु श्री राम का संदेश दिया तब रावण अंगद का मखौल उड़ाने लगा। अंगद ने भी रावण से नीतिगत बातें कही कि गलतियों को प्रभु क्षमा कर देते हैं। अंगद ने रावण के अहंकार को धिक्कारा भी, लेकिन रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो अंगद को उठाकर फेंक दें। रावण की इस बात पर अंगद ने अपना पांव भूमि पर रखकर कहा, सिर्फ इसे कोई उठा ले तो मान लूंगा कि तुम्हारी सेना में बड़ी ताकत है। मेघनाथ सहित अनेक योद्धा अंगद का पांव हिला तक न सके। अंततः जब रावण खुद आगे बढ़ा तब अंगद ने अपना पांव हटा लिया और कहा, जाओ श्री राम के चरण को पकड़कर माफी मांग लो। प्रथमतः तो अंगद चाहते नहीं थे कि अहंकारी और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला उसका स्पर्श करे, और दूसरा अंगद अपनी दृढ़ता और शक्ति का श्रेय भगवान श्री राम को देना चाह रहे थे। स्वाभिमानी और अहंकारी में यही अंतर होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति हर तरह से सशक्त होकर भी अनर्गल कार्य नहीं करता, जबकि अहंकारी व्यक्ति थोड़ी सी शक्ति और प्रभुता अर्जित कर लोगों का उत्पीड़न करने लगता है। इसीलिए हमें बिना बाह्य प्रदर्शन के अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि जब दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है तब बहुतेरे स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए आगे पीछे लग जाते हैं जिनका उद्देश्य अपना हित साधने का होता है। ऐसे लोग

0: झूठी चापलूसी करते हैं। यहीं से अहंकारी व्यक्ति विफलता की ओर बढ़ने लगता है। अहंकार भौतिक पदार्थों या परिस्थितियों का होता है। धन बल, सौंदर्य बल, साधन, शिक्षा, कला, कौशल आदि के बलबूते अपने को दूसरों से बड़ा मान बैठना, दर्प दिखाना और दूसरों का तिरस्कार उपहास करना ही अहंकार है। स्वाभिमान आत्मगौरव के संरक्षण और अभ्युदय का प्रयास है। इसमें आंतरिक उत्कृष्टता को अक्षुण रखने का साहस होता है। दबाव या प्रलोभन पर फिसल न जाना और औचित्य से विचलित न होना स्वाभिमान है। इसकी रक्षा करने में बहुधा कष्ट कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है और दुर्जनों का विरोध भी सहना पड़ता है। तत्ववेत्ता मनीषियों का कहना है कि प्रायः घर द्वार छोड़ने और वैराग्य की चादर ओढ़ लेने पर भी अहंकार नहीं छूटता, वरन और भी बढ़ता है कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है। इसी तरह धन छोड़ देने या दान कर देने की भी अहम प्रवृत्ति बनी रहती है। तथाकथित मोह मुक्तों का भी स्त्री बच्चों के प्रति लगाव कहाँ छूटता है। बड़े बड़े ओहदे पद प्रतिष्ठा को छोड़ देने वाले भी इस अहम भाव से ग्रस्त पाए जाते हैं कि हमने अमुक पद को छोड़ दिया। वस्त्र छोड़ने पर वैराग्य का अहंकार बना रहता है। आध्यात्मवेत्ताओं के अनुसार अहंकार से बचने का केवल एक ही उपाय है कि उसे खोजा जाए कि वो अंतर की किन गहराइयों में डेरा डाले पड़ा है। उन्होंने अहम को गलाने और स्वाभिमान को जगाने का सर्वोत्तम उपाय लोक आराधना को बताया है और कहा है कि पूजा उपासना से कम महत्व की साधना नहीं है। साधना उपासना से जो प्रगति मनुष्य के व्यक्तित्व में होनी चाहिए वो सच्चे लोकसेवी में भी विकसित होती देखी जा सकती है। उसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, वो मात्र विश्व मानव के कल्याण की बातें सोचता और ईर्ष्या द्वेष ऊंच नीच के भेदभाव से रहित जीवन जीता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से उत्प्रोत सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य बन जाती है। कालांतर में ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मधुर और संतुलित हो जाता है। क्रोध और घृणा से दूर का भी उसका वास्ता नहीं रह जाता है।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में आज की कड़ी का शीर्षक था अहंकार और स्वाभिमान। आलेख एवं स्वर अरुण पांडे का था। आइए अब सुने स्वास्थ्य चर्चा।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर असीम मिश्रा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एवं टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी में हेड नेक कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूं। आज के समय में कैंसर से कैसे बच सकते हैं और कैंसर क्या है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है मुंह का कैंसर, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है तंबाकू का सेवन। तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, सुरती, खैनी, बीड़ी, तंबाकू का सेवन, किसी भी तरीके से उसका सेवन किया जाता है तो ये कैंसर का कारक होता है और ये सबसे ज्यादा कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन इससे बचना बहुत आसान है, जिस चीजों से होता है हमको उन चीजों का सेवन बंद कर देना है। अभी ये चीजें हमको इतनी लुभावने अंदाज में, इतने अच्छी तरीके से पैक करके इस तरीके से दी जाती हैं, कोई भी इससे ललायित हो जाता है, सेवन करना शुरू कर देता है और एक बार जब आदत पड़ जाती है तब इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी लोग तंबाकू पान मसाला का सेवन कर रहे हैं इस समय, उनको उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो जब भी आप तंबाकू का सेवन करते हैं, जिस भी जगह पे आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं, दांत के नीचे रखते हैं या बगल में रखते हैं, सुरती रखते हैं, चूना रखते हैं, जो इस तरीके से चीजें सेवन करते हैं, तो जिस जगह पे भी आप सेवन कर रहे हैं वहां पे एक सफेद दाग, सफेद चकत्ता से शुरुआत होती है, सफेद या लाल चकत्ता होकर शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे करके वो भरता नहीं है, फिर उसमें जख्म हो जाता है और वो बढ़ता जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि ये शुरुआत हो सकता है मुंह से हो रही है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ मुंह की नहीं है, पूरे शरीर की बीमारी होती है। क्योंकि जो कैंसर होता है वो दिखता उस जगह पे है, पर धीरे धीरे करके उसके सेल्स जो हैं, कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, वो पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से फैलती रहती हैं। इसीलिए कैंसर खतरनाक है, क्योंकि एक जगह से शुरुआत होके वो पूरे शरीर में कहीं और पे भी फैल सकता है। और इतनी घातक बीमारी हो रही है जिस चीज के सेवन से, उस चीज का सेवन हमको

0: तुरंत बंद कर देना चाहिए। और आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, फलां खाते हैं, उनको नहीं होता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर 100 लोग तंबाकू खाते हैं तो उसमें लगभग 45 से 55 लोगों को कैंसर होने का रिस्क रहता है, और अगर 100 लोग तंबाकू नहीं खाते हैं तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक से भी कम व्यक्ति, एक्चुअली कहा जाता है 500 में से एक व्यक्ति को होने का रिस्क रहता है। तो अब ये चॉइस है, ये हमारी है कि हम किस ग्रुप में रहना चाहेंगे, क्योंकि कैंसर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वाद विवाद करने के लिए हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन से भी होता है, पॉल्यूशन से भी होता है, गंदगी से भी होता है, इन सब चीजों से होता है, लेकिन उसका बहुत कम रेशियो है। और तंबाकू जिससे डायरेक्टली हो रहा है उसका हमको सेवन बंद कर देना है। तो हमको ये समझना है कि हमको इस चीज के लिए जागरूक रहना है कि मुंह का कैंसर कैसे हो रहा है। जो भी लोग इस चीज का सेवन कर रहे हैं उसका सेवन बंद करें। उसके अलावा रेगुलर अपने आप से ही शीशे के सामने खड़े होकर लाइट डालकर मुंह को चेक कर सकते हैं कि कहीं पे इस तरह का सफेद दाग, चकत्ता है, कुछ भी डेवलप हो रहा है, तो उसका चेकअप करवाएं। क्योंकि अगर ये हो रहा है, शुरुआत हो रहा है और आप बंद करते हैं तंबाकू, तो इस तरह के जो चकत्ते होते हैं कई बार अपने आप ठीक भी हो सकते हैं, और अगर सही समय पे पहले पता चल गए हैं तो उसका इलाज संभव हो सकता है। तो अपने आप को इन सब रोगों से बचाएं। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने कैंसर रोग एक जानकारी विषय पर डॉक्टर असीम मिश्रा से ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
2: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 से 11 के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शोक संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और मिताली सिंह। मीडियम वेव 241.5 चार्बीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुने आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी एन राजम का वायलिन वादन। दिन 12:45 पर उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर अनीता सेन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे फनकार होंगे तलतजीज और पीनाज मसानी। इसे कार्यक्रम में दिन 12:30 पर भजन प्रस्तुत करेंगी हरप्रीत कौर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे सफल किसान की सीख, प्रेरक अनुभव विषय पर सीमांत मिश्रा से बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 12:45 पर और 9:50 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे

0: आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीत। अंगनैया कार्यक्रम में दिन 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी दांतों में होने वाली सामान्य बीमारियां, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विजय राव से बातचीत। साथ ही बहनें सुनेंगी गीत संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12 बजे। आपकी पसंद आप सुनेंगे आज रात 10 बजे। रात 9:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। रसमाधुरी सुनिए सुबह 8:15 पर। रसमाधुरी आप सुनेंगे रात 8:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7 बजे और शाम 6:10 पर। कहकशा सुनिए दिन 2:30 पर। प्रस्तुति सना सलीम की होगी। ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार आप सुनेंगे दिन 10 बजे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। श्रोताओं, हम आपको याद दिलाएं आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी एन राजम का वायलिन वादन। दिन 12:45 पर उपशास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर अनीता सेन। शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे फनकार होंगे तलत अजीज और पीनाज मसानी। इसे कार्यक्रम में दिन 12:30 पर भजन प्रस्तुत करेंगी हरप्रीत कौर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्येतेषु चतुर्षु राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,400,000,900,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,000,200,000 तमवर्षात् 31,000,200,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य चतुर्मार्गीय मानकानुसारं उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,300,000 कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिंद प्रशांत क्षेत्रे रणनीतिक विश्वास

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी, सो बनारस लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और बढ़िया हैं। देखिए, काशी की सुबह हो, सुबह चाय की दुकान हो और हाथों में लस्सी का कुल्हड़, भाई साहब इससे बेहतर शुरुआत पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। सुबह सुबह अस्सी घाट की वो ठंडी हवा और गंगा जी की वो पावन तस्वीर देखकर दिल बस यही कहता है कि जियो रजा बनारस। आज 20 अगस्त का दिन बड़ा ही खास है। जी हाँ, आज पूरे देश में सद्भावना दिवस यानी कि हार्मनी डे मनाया जा रहा है। और जब बात सद्भावना और प्रेम की हो तो हम बनारसी हैं और इसमें सबसे आगे हैं। हमारी काशी तो बनी ही है मिलजुल कर रहने, हर त्योहार को धूमधाम से मनाने की। तो आज के दिन चलिए खुद से एक छोटा सा वादा करते हैं, गुस्सा थोड़ा कम करेंगे और चेहरे पर मुस्कान थोड़ी ज्यादा रखेंगे। चौराहों पर किसी को रास्ता देना हो या किसी परेशान की मदद करनी हो, हम बनारसी दिल खोल कर आएंगे आगे। अच्छा बनारस, किसी भी देश संस्कृति का चेहरा होती है हमारी भाषा, है ना? व्यवहार का आधार जो है वो यही है, ये सारे मुखौटे हटा देती है। हमारी भाषा हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ये हमारे बारे में सब बता देती है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं पर कान खुले होते हैं। सच तो ये है कि उसके

कान गर्भावस्था में भी आवाजों की टोह ले रहे होते हैं। गुजरते दिनों के साथ माँ की लोरी, पिता की आवाज, दादी की कहानी, आंगन की बदकही और गली मोहल्लों की पुकार, यही सब धीरे धीरे उसके भीतर एक अदृश्य संसार को आकार देते हैं। शब्दों का ये संसार इतना गहरा होता है कि जब बच्चा पहली बार बोलता है तब वो केवल भाषा नहीं बोल रहा होता बल्कि अपने पूरे परिवेश का परिचय दे रहा होता है। इसीलिए किसी छोटे बच्चे के मुंह से कोई अपशब्द सुनकर पहले लोग चौंक उठते हैं। उन्हें उस एक शब्द से उतना दुख नहीं होता था जितना इस बात से है कि ये शब्द आखिर उसके कानों तक पहुंचा कहां से। बच्चे शब्द गढ़ते नहीं, उन्हें विरासत में पाते हैं। सबसे बड़ी पैतृक संपत्ति कई बार मकान नहीं भाषा होती है। भारतीय लोक जीवन की ओर देखिए तो लोक भाषा का संस्कार अद्भुत रूप में दिखाई देता है। अपरिचित आदमी भी भैया, खेत का किसान काका, गली की वृद्धा माई और राह चलती स्त्री बहन या दीदी थी। गांव में आधे लोग रक्त संबंधी नहीं होते थे पर भाषा ने सबको रिश्तों की डोर में बांधा रखा था। राम राम, प्रणाम, राधे राधे या नमस्ते, इन सब में सामने वाले के मंगल की भावना छिपी रहती थी। भाषा पहले सम्मान देती थी, परिचय बाद में पूछती थी, क्योंकि भाषा केवल भाषा नहीं होती है, वो सभ्यता संस्कृति की वाहक होती है। और जब सभ्यता और संस्कृति की बात ही हो रही है तो हम रेडियो को कैसे भूल सकते हैं भला, है ना? संस्कृति से संस्कार तक सिखाने वाला रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सीधे दिल से जुड़ता है और जब इसमें अपनी मातृभाषा की मिठास मिल जाए तो इसका असर दुगना हो जाता है, है ना? आज हम सब मिलकर रेडियो का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, आज है राष्ट्रीय रेडियो दिवस यानी कि नेशनल रेडियो डे। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रेडियो की असली ताकत क्या है। इसकी ताकत है हमारी अपनी भाषा। चाहे देश का कोई भी कोना हो, जब रेडियो पर अपनी भाषा में कोई बात गूंजती है तो वो सीधे हमारे दिल को छूती है। ये भाषा ही है जो हमें हमारी संस्कृति और अपनों से जोड़े रखती है। और आप हमारे प्यारे लिसनर्स, जी हाँ, इस भाषा को जिंदा रखते हैं। जब आप हमें सुनते हैं और हमसे जुड़ते हैं तो हमारा जो हौसला होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। आज एक और खास दिन है रेडियो से ही जुड़ा हुआ। जी हाँ, आज है रेडियो श्रोता दिवस। जी हाँ, तो आज के इस खास दिन पर हम अपने सभी सुनने वालों को सलाम करते हैं जो हमारी भाषा और हमारी पहचान को हर रोज और मजबूत बनाते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस।

0: और अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज और देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और इस वक्त अपने शहर में आज खास। वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता पर्व और कला उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह आज यानी 20 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ऑडिटोरियम संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं प्राचार्य सांस्कृतिक और कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, विविधता और भारतीय कला संस्कृति का संदेश देंगे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्र विद्यालय बीएचयू परिसर वाराणसी होंगे। और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान।
1: नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 5 संभागों से आए हुए विद्यार्थियों, उनके अनुरक्षकों का केंद्रीय विद्यालय संगठन आंच

0: आंचलिक स्तर पर आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव प्रतियोगिता हेतु अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। यह प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती है। केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी को वाराणसी संभाग के अंतर्गत इस वर्ष यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत आंचलिक स्तर पर 2 दिवस दिनांक 20 अगस्त एवं 21 अगस्त 2026 को केवीएस राष्ट्रीय एकता पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2 प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें पहली प्रतियोगिता का ग्रुप एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जिसमें कुल 4 प्रतियोगिताएं होंगी और यह विभिन्न राज्यों पर आधारित समूह नृत्य गीत आर्टिफैक्ट्स प्रोजेक्ट व प्रश्नोत्तरी है, तथा दूसरे ग्रुप में कला उत्सव, जिसमें 12 प्रतियोगिताएं एकल व समूह गायन, एकल व समूह वाद्य संगीत, एकल व समूह नृत्य, एकल व समूह दृश्य कला, नाटक अथवा पारंपरिक कहानी कथन के माध्यम से 5 संभागों जबलपुर, आगरा, लखनऊ, रांची तथा वाराणसी के प्रतिभागी, जो इन संभागों के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आए हुए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक पर आधारित उनकी संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और विरासत को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इसमें कुल 260 विद्यार्थी एवं 30 शिक्षक भाग लेंगे।
1: इसके साथ ही आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वाराणसी के आदित्यनगर पार्क में सघन वन विकसित करने के लिए एक विशाल पौधरोपण अभियान आयोजित किया गया। ये पुनीत कार्य 95 बटालियन सीआरपीएफ और सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हंसराज विश्वकर्मा की उपस्थिति में सभी नागरिकों और जवानों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। सृजन संस्था के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह और सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर की अगुवाई में आम, अमरूद, आंवला और महुआ जैसे कई फलदार पौधे रोपे गए। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छ, सुंदर और हरित काशी का संकल्प दोहराया। इसके साथ ही आपको बता दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर देश भर में सीताराम जीवन चरित से प्रेरित और रामायण पर बेहतर कार्य कर रहे 28 लोगों को रामायणी सम्मान दिया गया। इसमें भजन गायक अनूप जलूटा भी रहे। कल बुधवार को उन्होंने सम्मान कार्यक्रम के दौरान मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में देश भर से आए शिक्षाविद, संत, सांसदों और छात्र छात्राओं को भजन ऐसी लागी लगन सुनाया। ये सम्मान रामायण रिसर्च काउंसिल और बीएचयू के भारत अध्ययन केंद्र की ओर से दिया गया। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने की बात कही। रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी, संयोजक और सेवानिवृत्त आईएएस देवदत्त शर्मा ने कहा कि इस सम्मान का मुख्य लक्ष्य भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, साहित्य और शोध के क्षेत्र में रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना और सम्मानित करना है। और साथ ही मौसम का भी हालचाल आपको बताते चलें कि कल काशी में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा बही। पूरे दिन रिमझिम बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आज यानी बृहस्पतिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, बारिश के मौसम में कपड़े ठीक से नहीं सूखते हैं। धूप की कमी और हवा में ज्यादा नमी की वजह से कपड़ों से अजीब स्मेल आने लगती है। कई बार अलमारी में रखे कपड़ों से भी सीलन की स्मेल आती है। दरअसल बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। ऐसे में कपड़ों को सही तरीके से सुखाया और स्टोर ना किया जाए तो उन्हें स्मेल और फफूंदी की समस्या बढ़ सकती है। लंबे समय तक ऐसे कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में बारिश में कपड़ों को फ्रेश रखने के आसान तरीके हम आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे कि बारिश में कपड़ों को स्मेल से बचाने के कुछ घरेलू उपाय क्या हैं और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए, बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं और यही देरी स्मेल की बड़ी वजह बनती है। जब कपड़े लंबे समय तक नम रहते हैं तो उनमें बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। कपड़ों

स्मेल के कई कारण हैं, जैसे नमी, बैक्टीरिया, फंगस पनपना, देर से सूखना और डिटर्जेंट रह जाना। देखिए, गीले या नम कपड़े बैक्टीरिया के अनुकूल माहौल बनाते हैं, ये बैक्टीरिया स्मेल का कारण बनते हैं। हवा में नमी और धूप की कमी से कपड़े अच्छे से नहीं सूखते, इससे कपड़ों में फंगस पनपने लगते हैं। ठीक से ना खंगालने पर कपड़ों में साबुन या डिटर्जेंट रह जाता है। ये अवशेष भी बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, इससे स्मेल ज्यादा

खाते हैं से स्मेल ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। धुले कपड़े देर तक बाल्टी या मशीन में पड़े रहने से माइक्रोब्स पनपते हैं, इससे भी स्मेल आने लगती है। देखिए एक सवाल और आता है कि कितनी देर कपड़े गीले रहने पर स्मेल आने लगती है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये कपड़ों में कितनी देर नमी बनी हुई है उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर 6 से 8 घंटे के अंदर कपड़ों से स्मेल आने लगती है। फैब्रिक के केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कौन से फैब्रिक से कितनी स्मेल आएगी। तो इन फैब्रिक्स में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, विस्कस, सिल्क, जिम लेगिंग्स, एक्टिव वियर, स्पोर्ट्स टी शर्ट और सिल्क के कपड़े शामिल हैं। गीले कपड़े पहनने से स्किन पर लंबे समय तक नमी बनी रहती है। ये फंगस के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। लगातार गीलापन स्किन की बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर को कमजोर कर सकता है। इससे दांत, खुजली समेत कई फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। गीले या नम कपड़े पहनने से किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, जो जिम करते हैं, जो टाइट कपड़े पहनते हैं, जो नमी वाले इलाकों में रहते हैं, जो पर्सनल हाइजीन नहीं रखते और जिनकी स्किन सेंसिटिव है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इससे काफी हद तक रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, जैसे कि वॉशिंग के दौरान 1 कप व्हाइट विनेगर डालें। यह बैक्टीरिया को खत्म करता है और स्मेल न्यूट्रल करता है। वॉशिंग के समय 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालें, यह स्मेल सोख लेता है। 1 बाल्टी पानी में 1 से 2 नींबू का रस मिलाकर कपड़े भिगोएं, यह नेचुरल फ्रेशनर की तरह काम करता है। 1 ढक्कन एंटीसेप्टिक लिक्विड रिंस में डाल सकते हैं, इससे बैक्टीरिया खत्म करने में मदद मिलती है। परफ्यूम बैक्टीरिया या फंगस को नहीं खत्म करता। कई बार स्मेल और परफ्यूम मिलकर अजीब और हार्ड स्मेल बना देते हैं। धूप न होने पर कपड़े अगर आपको सुखाने हैं तो उसके तरीके जो है वो हम आपको बताएं कि ऐसी जगह कपड़े सुखाएं जहां हवा का फ्लो बना रहे। कपड़े को सूखे तौलिए में लपेटें, इससे उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में 1 से 2 बार एक्स्ट्रा स्पिन चलाएं, कपड़ों के बीच गैप रखें, मोटे कपड़े उल्टे करके सुखाएं, नमी हल्की होने पर आयरन करें। और बारिश में कपड़ों को फ्रेश रखने के लिए हम पूरी तरह कपड़े सूखने के बाद ही उसे अलमारी में रखें। अलमारी में नीम की पत्तियां, कपूर रखें, इससे स्मेल और नमी कम होती है। अलमारी में सिलिका जेल पाउच, अखबार रखें, ये नमी सोखते हैं, और डिटर्जेंट जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग का मानना है कि वॉशिंग मशीन जो होती है वो भी स्मेल की वजह बनती है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। उसके कई कारण भी हैं कि अगर मशीन के अंदर नमी बनी रहती है, अगर नियमित सफाई नहीं होती और अगर डिटर्जेंट और गंदगी का रेजिड्यू जमा होता है, इससे सीलन जैसी स्मेल बनने लगती है। ऐसे माहौल में कपड़े धोने से स्मेल आने लगती है। आमतौर पर वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग हर 15 से 3 दिन में करनी चाहिए। अगर डेली मशीन यूज करते हैं तो हर 2 हफ्ते में साफ करना बेहतर है। इसके अलावा रेगुलर कुछ बेसिक केयर करना चाहिए, जैसे कि हर वॉश के बाद डोर या लिड खुला छोड़ें ताकि नमी सूख जाए। रबड़, गैसकेट और डिटर्जेंट ट्रे को हफ्ते में 1 बार साफ करें। बारिश में कपड़ों की देखभाल में की गई छोटी छोटी गलतियां उनमें सीलन और स्मेल पैदा कर सकती हैं, जैसे मशीन में कपड़ों को ओवरलोड, बहुत ज्यादा डिटर्जेंट यूज करना, गीले कपड़े मशीन में छोड़ना, बिना हवा या वेंटिलेशन के सुखाना, बिना सूखे अलमारी में रख देना। बारिश में सिर्फ घर ही नहीं कपड़ों की भी खास देखभाल बहुत जरूरी होती है। सही वॉशिंग, अच्छी तरह सुखाना और सूखी जगह पर स्टोर करना कपड़ों को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। इससे स्मेल, फफूंदी और स्किन से जुड़ी परेशानियों से भी बचाव होता है। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्युएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स, खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17:32 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30।

0: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने परीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान की प्रमुख कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। इस अवसर पर जापान की दो कंपनियों के 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। ईडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आभार जताते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। श्री योगी ने कहा कि जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, वहीं उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है।
5: जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है, उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ प्रदेश के बजट, GSDP और प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी

0: में बनने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
1: बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है।
0: इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है कि अनुसंधान और तकनीकी नवाचार सीधे किसानों तक पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और ये वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम तो मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों को नंदन नीलेकणी समिति द्वारा संशोधित रूप में लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GK पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ने इस ऐतिहासिक बांध को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना WHS के रूप में मान्यता दी है। एक रिपोर्ट।
3: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है।

0: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल भारत दौरे पर आए नाइजीरियन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वहां के कृषि और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर अलियू साबी अब्दुल्लाही से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सकारात्मक और जमीनी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर श्री मौर्य ने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में सरकार अच्छा काम कर रही है।
1: यह सब कुछ जो होता हुआ हम देख रहे हैं, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार 9 वर्ष से अधिक समय से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया, उसका सुपरिणाम।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र कल 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्र आज से शुरू हो रही समिति की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर न्यास का लोगो लगाया जाना बाकी है, बाकी सारे कार्य पूरे हो गए हैं। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जनपदों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में 84 घाटों का संपर्क भी टूट चुका है। सुरक्षा के लिहाज से अगले आदेश तक नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर करीब 67 मीटर दर्ज किया गया है, वहीं 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ना लगातार जारी है। चित्रकूट में बारिश की संभावना को देखते हुए कक्षा 12वीं तक के विद्यालयों को आज के लिए बंद कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ की 3,195 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग। कहा, भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर है आधारित। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से मांगा जवाब। झांसी के बेतवा नदी पर बने पारीक्षा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स के रूप में मिली मान्यता। 14 अक्टूबर को फ्रांस में मिलेगा अवार्ड। और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अजय पोहनकर का गाया राग बिलासखानी तोड़ी। आपके साथ तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पंडित अजय पोहनकर का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुना। आपके साथ तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और सारंगी पर आपका साथ दिया उस्ताद लतीफ अहमद खान ने। पंडित अजय पोहनकर से आइए अब सुनते हैं राग सिंधु भैरवी में ये ठुमरी।

0: अभी आपने पंडित अजय पोहनकर की राग सिंधु भैरवी में गाई ये ठुमरी सुनी। आपके साथ तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और सारंगी पर राग का साथ दिया उस्ताद लतीफ अहमद खान ने। शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के

0: डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं

0: और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
1: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईनाज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से

0: बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेन जी को साधने की मोर्चाबंदी तेज।

0: नव भारत टाइम्स में है। जेनजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to post today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। 5 मेजर डिसीजंस हैव बीन टेकन। द फर्स्ट 4 प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलवेज व्हाइल द 5th इज अ हाईवे प्रोजेक्ट। द फर्स्ट 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द हावड़ा चेन्नई मेन रेलवे रूट एंड द क्वाड्रपलिंग ऑफ द कटक पारादीप रेलवे लाइन। द 5th प्रोजेक्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन हाईवे फ्रॉम मुजफ्फरपुर वाया सीतामढ़ी टू सोनबरसा। दीज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13,041 करोड़ रुपीज वर अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे।
4: टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees.
5: ये प्रोजेक्ट पूरे बिहार के लिए।
3: द प्रोजेक्ट इज बिकमिंग अ मेजर लाइफ लाइन फॉर द एंटायर बिहार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोनबरसा ऑन द नेपाल बॉर्डर एंड पासेस थ्रू सीतामढ़ी एंड मुजफ्फरपुर। इट विल क्रिएट अ कंप्लीट ट्रांसपोर्ट आर्टरी विच विल बेनिफिट बिहार फॉर मेनी इयर्स। इट इज एन 83 किलोमीटर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट अंडर विच द एग्जिस्टिंग रोड विल बी अपग्रेडेड इनटू अ 4 लेन हाईवे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,591 करोड़ रुपीज
4: का इन्वेस्टमेंट इसमें हो।
2: Union Home Minister Amit Shah will chair 31st meeting of the Southern Zonal Council at Kovalam near Chennai in Tamil Nadu this morning. The meeting is likely to focus on issues requiring coordination between the centre and southern states and union territories. The Southern Zonal Council comprises Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana along with union territories of Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Chief Minister

0: another headline in the Tribune. New U.S. immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. U.S. President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of AFIH Hockey World Cup in Amstel, Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों का इहाता करने वाले चार मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और एफआईएच हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टल फेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के पांच प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के चार और शाहराहों का एक प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर कयादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें चार रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को चार लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और तीन मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में छह वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वज़ीर आला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वज़ीर आला रंगासामी।

0: शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतल्लिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकतदारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसायल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाजात समेत कई अहम मौजूद पर तबादले ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोख और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वजा किया गया, जिसकी निकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वजीर आज़म लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालाकृष्णन के साथ शामिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिनजिरो कोइजुमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीयत मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तावुन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वुजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तावुन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तावुन को मजीद बढ़ाने का रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत में अमरीका के सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दिया है और कहा है कि मरकज और रियासत की हुकूमतों ने जम्मू और कश्मीर में सलामती की सूरत हाल को बेहतर करने से मुतालिक कई इकदाम किए हैं। अमरीकी सफीर कल श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमरीका ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की गई और उन शोबों पर गौर व खौज किया गया जहां अमरीका जम्मू और कश्मीर के साथ मसरूफ अमल हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान मुस्बत मसरूफियात और मुस्तकबिल के इश्तराक पर जोर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। BNP पार्लियामानी पार्टी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए आलमगीर ने BNP के अरकान पार्लियामेंट से आज के सदारती इंतखाब में उन्हें वोट देने की अपील की। मुंतखब सदर को कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शिहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज सदर के ओहदे के लिए वोट डाले जाएंगे।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमरीका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज करेगा जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इक्तिसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदामात का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाजों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इक्तिसादी शहरक को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदामात को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इत्तेहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमद और रफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक़वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR में दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नजरसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा शाई किया जाएगा। दावे और एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराजात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाई की जाएगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमाए मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इंकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती इस्लाहात पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हमारा फर्ज है कि एक ऐसा मुतहरिक इदारा बने जिस पर मुल्क को फख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी तलबा का एहतजाज

0: अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट।
1: ना, ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड।
0: तो
1: डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
2: पर पैसे तो गए।
1: नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करने पड़ेंगे भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत परांजपे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का मधुरिमा केंद्रित है बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा पर। रणदीप हुड्डा एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। वो अपनी दमदार अभिनय शैली और फिल्मों में भारी शारीरिक बदलाव यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। रणदीप का जन्म एक हरियाणवी जाट परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा पेशे से डॉक्टर हैं और सर्जन हैं। वहीं उनकी मां आशा हुड्डा एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरियाणा से पूरी की और बाद में वो

रणदीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की साल 2001 में मीरा नायर निर्देशित फिल्म मॉनसून वेडिंग से। इसके बाद इन्होंने साहिब बीबी और गैंगस्टर, जन्नत 2, हाईवे, सरबजीत और रंगरसिया जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर में भी उन्होंने काफ़ी सशक्त अभिनय किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन में भी शानदार अभिनय किया था। रणदीप हुड्डा को घुड़सवारी और खेलों का बहुत शौक है। वो एक पेशेवर घुड़सवार भी हैं। नवंबर 2023 में उन्होंने मॉडल और अभिनेत्री लिन लैशराम से विवाह किया था।

0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं मधुरिमा। मधुरिमा कार्यक्रम के शेष नगमे आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: रविवार प्रातः 11:30 पर इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ। स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: रणदीप हुड्डा ने विद्यार्थी जीवन से ही अभिनय के क्षेत्र में कदम रख दिया था। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से मार्केटिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री करने के बाद वो भारत आ गए और मॉडलिंग और रंगमंच में बतौर अभिनेता काम करने लगे। 2005 में रिलीज्ड फिल्म डी में अपने किरदार के लिए काफी सराहना इन्हें मिली थी। ये फिल्म निर्देशित की थी राम गोपाल वर्मा ने।

फिल्म 2005 में रिलीज्ड फिल्म डी में अपने किरदार के लिए रणदीप हुड्डा को काफ़ी सराहना मिली थी। ये फिल्म निर्देशित की थी राम गोपाल वर्मा ने। सन 2010 में रिलीज्ड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई इनके करियर की एक निर्णायक सफल फिल्म रही। इसे निर्देशित किया था मिलन लथुरिया ने। इसके बाद उन्होंने 2011 में रिलीज्ड फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर, जन्नत 2012 में और जन्नत 2 2014 में रिलीज्ड फिल्मों में काम किया। साथ ही रंगरसिया फिल्म में उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई।

सन 2000 में रिलीज्ड फिल्म रंगरसिया में रणदीप हुड्डा ने एक यादगार भूमिका निभाई थी। जन्नत 2 फिल्म में उन्होंने एसीपी प्रताप रघुवंशी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने एक दमदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री ईशा गुप्ता भी नजर आए थे। रणदीप हुड्डा को कई फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इनमें 2006 में जी सिने अवार्ड, बॉलीवुड मूवी पुरस्कार, वार्षिक केंद्रीय यूरोपीय बॉलीवुड पुरस्कार, 2011 में इन्हें लायंस गोल्ड अवार्ड, ग्लोबल फिल्म अवार्ड, अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड इत्यादि पुरस्कार मिले थे।

श्रोताओं, आज का मधुरिमा केंद्रित था अभिनेता रणदीप हुड्डा पर। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त प्रशांत परांजपे को।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के जीएमयू से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई। लखनऊ में विभिन्न पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को तन्मयता से सुना। संबोधन के बाद छात्रों ने नशा मुक्त जीवन जीने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।
2: आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: स्वतंत्रता दिवस राजधानी लखनऊ में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता जताई जिनके घर जन्मे वीरों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से भी पूर्ण मुक्ति है। स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकालकर हुई। हजरतगंज क्षेत्र में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाज के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। 17 अगस्त तक विभिन्न संगठनों, स्कूल, कॉलेज और संस्थानों द्वारा अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 अगस्त 2026 को लखनऊ स्थित CSIR राजकीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। ये हब जैव विविधता के प्रति जागरूकता और प्राकृतिक पर्यावरण की गहरी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पहल विज्ञान, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर हरित और जागरूक भविष्य की दिशा में प्रेरित करती है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के निदेशक और वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र अब घर बैठे अपने कार्यों का निस्तारण करा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन फेसलेस स्टूडेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। अब छात्र परीक्षा सहित अन्य कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे। विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश में 750 से अधिक संस्थान जुड़े हैं। कई बार छात्र परीक्षा से संबंधित रिजल्ट में सुधार, अंक पत्र अपडेट करने सहित डिग्री से जुड़े कामों के लिए विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर या नोएडा परिसर पहुंचते हैं, जिससे असुविधा होती है। अब ये कार्य ऑनलाइन होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि स्टूडेंट्स को अपने कार्य और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद छात्र को एक विशिष्ट ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा। इस विशिष्ट नंबर से छात्र अपने कार्य की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर और कोनेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, जो कि पूरे महीने लागू रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के ग्रामीण इलाकों में विशेष दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इमाम हुसैन का चहलुम 4 अगस्त को लखनऊ में गम के माहौल में मनाया गया। राजधानी में चहलुम के अवसर पर निकले ऐतिहासिक जुलूस में हजारों की संख्या में अजादारों ने भाग लिया और आंसू बहाकर इमाम को अपना पुरसा पेश किया। चहलुम का जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नदीम

0: की महामारी से शुरू होकर तालकटोरा की करबला पर जाकर खत्म हुआ। जुलूस से पहले एक मजलिस भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे आजादी के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है। लखनऊ निवासी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी अबू हुबैदा ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वह देश के लिए अधिक संख्या में मेडल जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जाने वाली यूपी T20 लीग के चौथे संस्करण की शुरुआत 14 अगस्त 2026 को हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने पहले मैच के टॉस के लिए सिक्का उछालकर लीग की औपचारिक शुरुआत की। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर दो स्थानों पर किया जा रहा है। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबकि फाइनल सहित 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग में लखनऊ फाल्कन्स, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मैवरिक्स, नोएडा किंग्स, काशी रुद्रास और गोरखपुर लायंस टीम भाग ले रही हैं।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावनाओं के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। राज्य मंत्री समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग बलिदान संघर्षों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और एवं अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम उनके आदर्श और त्याग की प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता, समृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक नागरिक को महत्वपूर्ण भूमिका है तथा हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में चौमुखी विकास हो रहा है। सेमी कंडक्टर समेत हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं गिरीश चंद्र यादव?
3: प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: जिलाधिकारी सेमुल पाल के द्वारा तहसील बदलापुर और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का अचूक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही समस्त सुविधाओं और दवा वितरण, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन के मंशा के अनुरूप आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो, चिकित्सा एवं कर्मचारियों के समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे तथा जांच एवं उपचार की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में आम जन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी का स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार जन एवं जनमानस में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत पुनर्वृत्त न हो। साइबर क्राइम थाना सेल जौनपुर जनपद के द्वारा साइबर के सेल पुलिस टीम के द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल की कीमत 45 लाख रुपए, अब तक कुल 1941 मोबाइल जो कीमत 3,90,00,000 रुपए की बरामद कर चुके हैं। मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल जो जिसकी कीमत 45 लाख रुपए के मोबाइल फोन को बरामद मोबाइल स्वामी कर्मियों को सुपुर्द किया गया। अब तक जिले में कुल 1941 मोबाइल बरामद की गई जिसकी कीमत कुल 3,90,00,000 रुपए है। मोबाइल फोन स्वर्ग में सुपुर्द किया जा चुका है। गुमशुदा मोबाइल के प्रार्थना पत्र CEIR पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जौनपुर पुलिस टीम के द्वारा पीड़ितों को गुम मोबाइल 200 मोबाइलों में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से व थाना के साइबर सेल द्वारा बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद वाराणसी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, भदोही से मोबाइल फोन बरामद किए गए। कुछ मोबाइल फोन अन्य प्रांत जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान से बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बरामद शुदा मोबाइल स्वामियों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन गायब होने की दशा में तुरंत गुमशुदगी दर्ज कराने के उपरांत CER पोर्टल के शिकायत करें। साइबर क्राइम से बचाव सबसे प्रभावी उपाय जन जागरूकता एवं सतर्कता है। साइबर अपराधों के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrimegovernment.in

0: इन पर शिकायत कर पंजीकृत करें। अपनी नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क पहुंचकर लिखित शिकायत करें। खोया हुआ मोबाइल वापस मिलाने में सभी मोबाइल सर्वियों को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जौनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी समीप पाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा थाना बरसट्टी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर कार्यालय अभिलेख माला खान बैरक तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायत एवं विवेचना में गुणतापूर्ण संबंध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में नव निर्मित भोजनालय का उद्घाटन किया गया। भोजनालय की व्यवस्था में निरीक्षण करते हुए साफ सफाई एवं स्वच्छता विशेष ध्यान रखने तथा पुलिसकर्मियों को गुणतापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा थाना परिसर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आम जन मानस की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण करने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

श्री आनंद कुमार शर्मा ने ग्राम प्रेमापुर थाना चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी अंतिमा शर्मा दिनांक 3 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से गुमशुदा है। कुमारी अंतिमा शर्मा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 18 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग गोरा है और एक गहरा बदन है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है। इन्होंने सूट सलवार पहना है। कुमारी अंतिमा शर्मा के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना कोतवाली चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। श्री बुद्धूलाल अग्रहरी निवासी ग्राम सत्यागंज थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनके पुत्र रमेश चंद्र अग्रहरी दिनांक 13 जून 2026 को लगभग 4:30 बजे से लापता हैं। रमेश चंद्र अग्रहरी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 35 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इनका रंग गोरा है। इन्होंने काले रंग का पैंट और सफेद शर्ट पहना है। रमेश चंद्र अग्रहरी के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। श्री उदय भान चमार पुत्र मन्नू राम ने शिष्ठा खुर्द थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी श्रीमती ममता दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन 3 बजे से गुमशुदा हैं। श्रीमती ममता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और एक गहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी है। ये अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़कर गई हैं और एक लड़का अपने साथ लेकर गई हैं। श्रीमती ममता पत्नी श्री उदयभान चमार पुत्र श्री मन्नू राम के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना मड़िहान या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। कोई भी महिला का नाम श्रीमती ममता है। श्री अनिल गौड़ ने ग्राम जिगनौड़ी पोस्ट मेवली थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी नैन्सी गौड़ दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम को मेला देखने गई थी, तभी से गायब है। कुमारी नैन्सी गौड़ पुत्री श्री अनिल कुमार गौड़ के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र करीब 20 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है और इनका डील डॉल सामान्य है। इन्होंने चश्मा लगाया है और लेगिंग्स और छींटदार सफेद कुर्ती पहनी है। इन्होंने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी है। अगर आपको कुमारी नैन्सी गौड़ पुत्री श्री अनिल कुमार गौड़ के बारे में सूचना मिले तो कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी बालिका का नाम कुमारी नैन्सी गौड़ है और ये दिनांक 6 जुलाई 2026 शाम से गुमशुदा है। श्री विजय कुमार पुत्र श्री रामसनी

0: इन्हीं ने ग्राम बानपुर थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में सूचना दी है कि उनकी पत्नी नीलू दिनांक 17 जून 2026 से कहीं लापता है। नीलू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा लंबा है, रंग सांवला है और डील डॉल सामान्य है। इन्होंने पीले रंग की साड़ी और पैरों में चप्पल पहनी है। श्रीमती नीलू पत्नी श्री विजय कुमार के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया क्षेत्राधिकारी नगर जनपद सोनभद्र से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति का नाम श्रीमती नीलू है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
1: लखनऊ की पेशकश सेहतनामा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी सेहतनामा में आप सबका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम के लिए आप सब अपने रेडियो सेट के करीब हो जाइए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सारे इंसानों को जन्म देने वाली, हमारे वीरान घरों को जन्नत बनाने वाली, नई नस्लों की तरबियत करने वाली और मुस्कुराकर अपनी परेशानियों को छुपाने वाली यानी औरत की। सामिन, औरत कभी माँ की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी बीवी की शक्ल में और कभी बेटी की शक्ल में हमारी जिंदगियों को मुकम्मल बनाती हैं। मगर अफसोस, अक्सर ख्वातीन अपने गमों को और मसाइल्स को छुपा ले जाती हैं, जिससे उनकी सेहत खतरे में पड़ जाती है। इसलिए आज हमने अपने सेहतनामा की खुसूसी थीम रखी है मसाइले ख्वातीन। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नाजिश बानो, जनरल फिजिशियन तिब्बे यूनानी। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
3: जी, बहुत शुक्रिया।
2: डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में औरतों की सेहत से मुताल्लिक क्या क्या मसाइल हैं।
3: देखिए, आज का जो दौर है उसमें औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले जमाना था कि औरतें घर में महदूद थीं, घर के कामों में रहती थीं, लेकिन आज औरतें बाहर भी निकलती हैं और बाहर की भी जिम्मेदारियां उठाती हैं। तो इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में उनके सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। तो धीरे धीरे जब ये मसाइल्स बढ़ते हैं तब पता चलता है कि हाँ, ये परेशानियां हैं। तो आमतौर पे जो आजकल की औरतें जिन बीमारियों से लड़ रही हैं उसमें पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस है
2: जी,
3: और खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द।
2: अभी एक बात कही, पीसीओडी और पीसीओएस।
3: जी जी।
2: अब ये पीसीओडी और पीसीओएस है क्या और इनमें फर्क क्या है, इसका इलाज क्या होना चाहिए, A to Z जो इसकी चीजें हैं वो आप हमारे सामने को जरूर बताएं।
3: ये PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ये हार्मोन्स की जो इरेगुलरिटी या इसको इम्बैलेंस कह लीजिए, ये होता है। ये औरतों में खासतौर से उनका लाइफस्टाइल जो होता है उस पर डिपेंड करता है
2: जी।
3: और ये वजह भी यही है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है, जो खाना है आजकल का, और औरतें ज्यादातर घर में रहती हैं, एक्टिविटी कम है और उनका खाना ऐसा है कि शुगर की मात्रा ज्यादा है, देखती नहीं मैदा है, तो इन सबसे हॉर्मोन्स में गड़बड़ी पैदा होती है। और इससे क्या होता है, पीरियड से रिलेटेड कई तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे ओलिगोमेनोरिया की पीरियड्स का कम आना, देर से आना, पीरियड्स के समय दर्द होना, डिसमेनोरिया और इस तरह की परेशानियां बढ़ती हैं।
2: ये पीसीओडी और पीसीओएस क्या दोनों एक ही चीज
3: है? लगभग बहुत जरा सा फर्क है। पीसीओएस जो सिंड्रोम होता है, इस तरह का एक उनका फेज होता है, एक नेचर होता है, ये पीसीओएस होता है। अगर वही बीमारी का रूप ले ले, जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सही से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये एक डिजीज बन जाती
2: क्या
3: है।
2: क्या ये ओवेरियन पर यानी कि उस जगह पर गांठ होती है, कैसे, मतलब इसको थोड़ा हमारे तमाम सामईन को आप जरा बताएं, क्योंकि वो कई बार मेडिकल टर्म्स या ऐसी जबान नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं आप उस पर भी रोशनी डालें कि ये सिस्टिक जो सिस्ट है, ये गांठ होती है कैसे, मतलब
3: ये ओवरी जो औरतें का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अगर उनका हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बेस होगा वो ओवरी मानते हैं।
2: बच्चेदानी की,
3: बच्चेदानी ओवरी जो होती है वो अंडे बनाती है।
2: बिल्कुल,
3: औरतों के जिस्म में, और वो जो ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, और कभी कभी जिसमें फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, वो सिस्ट बन जाती हैं।
2: ठीक है।
3: और धीरे धीरे, वैसे तो ये खत्म हो जाती हैं, इसमें डरने की बात नहीं है, 1 से 3 महीने लगता है ये बनती हैं खत्म।

0: होती रहती
1: है
0: जी बिल्कुल, और इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ये जो गांठें होती हैं ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। यूट्रस जो कि रहम होता है औरतों का, जो गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा जन्म लेता है, तो जो उसकी दीवार होती है उससे चिपक करके उसकी परत को मोटी करती रहती हैं
1: जी
0: और उसमें खून है, फ्लूइड है, ये सब जमा होने लगता है और ये एक फाइब्रॉइड का रूप ले लेता है, तब ये खतरनाक हो जाता है।
1: मतलब अगर वो ट्यूमर बनने
0: जी
1: लगता है
0: जी
1: तो क्या उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है?
0: नहीं, उसके लिए जांचें करवाइए, देखिए कि वो ऑपरेशन के लायक है। कभी कभी वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, लाइफ स्टाइल में चेंज करने से, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से, खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी लेने से वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। अगर वो बना हुआ है, वो तकलीफ दे रहा है, तब हम आगे का ये सोचते हैं कि उसको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत है, वरना
1: इन
0: नहीं।
1: इन गांठों की मैडम पहचान कैसे करें? आम आदमी जिसको अभी ना अल्ट्रासाउंड का पता है ना वो खून की जांच करा रहा है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि उसको ऐसी दिक्कत है या अगर दर्द हो रहा है कि अगर इसके सिम्टम्स क्या हैं जो वो आप हमारे सामने को बताएं?
0: हाँ देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो पीरियड ही की गड़बड़ी हो जाएगी,
1: जी
0: औरतों की जो माहवारी है, जो मासिक धर्म है, वो गड़बड़ हो जाएगा।
1: जी
0: कभी 15 दिन में आ गया, कभी 2-3 महीने में एक बार हो रहा है, कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। उनको पेट के एक तरफ दर्द बढ़ जाता है,
1: अच्छा
0: भारीपन महसूस होता है,
1: जी
0: कभी कभी उल्टी जैसा लगता है,
1: जी जी
0: तो इस तरह के लक्षण होते हैं। तब औरतें आती हैं और अपनी तकलीफ बताती हैं, तो उनकी हिस्ट्री लेकर के अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी हो जाता है।
1: जी जी
0: तो उसमें फिर ये आ जाता है कि आपके सिस्ट है, फाइब्रॉयड है, बल्कि यूट्रस है,
1: जी
0: इस तरह की
1: अगर
0: आ जाती
1: ऐसी
0: है।
1: चीजें हैं, PCOD हो
0: जी
1: या खाली सिस्ट हो या बल्कि यूटेरस हो, तो ऐसी चीज में हैज पर प्रॉब्लम आती हैज की
0: बिल्कुल
1: परेशानी
0: बिल्कुल
1: बढ़ जाती है, आगे
0: जरूर
1: पीछे हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: अभी आपने एक चीज बताई थी एनीमिया,
0: जी
1: कि ऐसा आजकल की खवातीन में अक्सर हो रहा है, एनीमिया क्यों होता है, इसकी बड़ी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
0: कि एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ब्लड
1: बिल्कुल
0: में, और औरतों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो हर महीने उनके साथ जो एक
1: जी जी जी
0: मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फेज होती
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: ब्लड लॉस होता है, प्लस वो थोड़ा खाने पीने में गैर जिम्मेदार होती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाती हैं जो कि ताकत देती हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं खाती हैं।
1: ये
0: और
1: आपका तजुर्बा भी है
0: जी बिल्कुल
1: भाई,
0: तजुर्बा,
1: आप तो इसको बहुत अच्छे से जानती हो और आप
0: बिल्कुल
1: बता सकती
0: मेरे
1: हो।
0: पास लड़कियां आएंगी, चाट बताशा टिक्की जरूर खाएंगी, लेकिन पालक
1: बिल्कुल
0: और सब्जियां नहीं खाएंगी, फ्रूट्स नहीं खाएंगी,
1: बिल्कुल
0: कहेंगी अरे फल तो खाती नहीं है
1: जी
0: ये,
1: जी
0: तो उनको हमको समझाना पड़ता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
1: हाँ
0: आज अगर आप ये अपने आप को ज़िंदगी में शामिल कर लेंगी तो आगे जा करके आपकी बॉडी मजबूत रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बच्चियों की बात की है, 12, 13, 14 साल की बच्चियों को किस तरह की परेशानी आती है, बिलखसूस इसी मौजू पर जिस
0: जी
1: पर हम बात
0: जी
1: कर रहे हैं,
0: हाँ
1: अय्याम हैज में उनको किस तरह की परेशानियां सामने आती हैं, दरपेश आती हैं?
0: हाँ अक्सर मेरे पास लड़कियां 12-13 साल की आती हैं और उनकी मदर्स कहती हैं कि बहुत अभी पीरियड शुरू हुआ, 1-2 महीना, 5 महीना, 6 महीना,
1: जी
0: उसके दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और थोड़ा लड़कियां स्ट्रेस में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, उनको ये सोच करके कि ये शुरुआत क्या हुई है, कैसी है।
1: उनको अभी पता भी नहीं
0: हाँ
1: होता
0: तो
1: पूरी
0: एक ये जो
1: तरीके से।
0: सोच होती है उसकी वजह से वो स्ट्रेस में भी रहती हैं और उनको दर्द तकलीफ़ होती है उन दौरान, और खून की भी कमी होती है, वीक होती हैं, तो इस तरह की परेशानियां ज़्यादा होती हैं, मतलब डिसमेनोरिया,
1: जी जी
0: पॉलीमेनोरिया।
1: जी जी जी जी ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे पहले ही ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: एब्डोमिनल पेन,
0: क्रैम्प
1: पेड़ों
0: शुरू
1: पे
0: हो
1: दर्द
0: जाते
1: होना,
0: हैं,
1: कमर
0: बिल्कुल
1: पे दर्द होना। एक चीज़ और डॉक्टर साहिबा सामने आती है, अक्सर गांव के इलाके में जब भी ऐसी दिक्कतें होती हैं तो लड़कियां जाकर मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन्स
0: जी,
1: ले
0: पेन
1: लेती हैं,
0: किलर्स ले
1: पेन
0: लेती
1: किलर्स
0: हैं
1: जैसे वो
0: सिंपली,
1: डाइसाइक्लोमीन,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेफेनामिक एसिड, ये ले लेती हैं, क्या ये सही है?
0: इसको अगर आम तौर पे लिया जाने लगेगा तो ये नुकसान ही करेंगी।
1: जी
0: और मेरे पास जब अगर बच्चियां आती हैं खास तौर से 12-13 साल की और डिसमेनोरिया बताती, तकलीफ बताती हैं पीरियड्स के दौरान, तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है और हर लड़की के साथ होता है, और इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा।
1: जी
0: और बहुत तकलीफ हो तो गर्म पानी की बॉटल से हम सिकाई बताते हैं कि पेल्विक साइड पे आप सिकाई कर लीजिए पेट की, और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो 1 या 2 खुराक के हम रिकमेंडेशन करते हैं, और इसके अलावा हम मना करते हैं कि कोशिश करो बगैर दवा के, तुम ये 2 दिन झेलने होते हैं, उसके बाद 5 दिन जो आगे गुजरने होते हैं वो आराम से गुजर जाते हैं।
1: जी
0: और कभी कभार लड़कियां मेरी बात समझती हैं और खुद ही कहती कि अब हम दवा नहीं खाते हैं।
1: बिल्कुल बच्चियों की हमने बात की, लेकिन अब एक सवाल आ रहा है, जो 40+ की ख्वातीन हैं जो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए खास मशवरा आप क्या देंगी?
0: हमारे इंडिया में 45 से 55 साल की

0: उम्र जो बीच का दौरान होती है वो मेनोपॉजल स्टेज मानी जाती है औरतों की। तो एक साल से ज्यादा हो जाता है पीरियड्स नहीं आता तो वो मेनोपॉज में मानी जाने लगती है, और उससे 2-4 साल पहले का जो टाइम होता है वो पेरी मेनोपॉज कहलाता है, यानी उसमें सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और ये एक बहुत टफ फेज होती है इन महिलाओं के लिए, उसमें कई चीजें होती हैं, कई बदलाव होते हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है। और कई महिलाएं जो होती बहुत ज्यादा तकलीफ झेलती, कई महिलाएं आसानी से पार कर लेती हैं। और इसमें क्या होता है कि जब पीरियड्स रुकने लगते हैं तो हार्मोन्स कम होने लगते हैं, हार्मोन का लेवल कम होने लगता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन हमारी हड्डियों की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कमर में दर्द, घुटने में दर्द, काम में दिल नहीं लगता है, थकावट महसूस होती है। तो इस तरह की परेशानियां आती हैं इन औरतों में।
1: जब अभी मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक खातून मिली और उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई। उन्हें पता चला कि मैं एक लेडीज डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ, गुफ्तगु करूंगा अपने प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने एक अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई और कहा कि डॉक्टर साहिबा से जरूर मेरे बारे में जिक्र करना। उनकी उम्र 60 साल है लेकिन अचानक उनको 2-3 दिन से हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इस कदर होती है कि वो बता रही थी कि अय्यामे हैज में भी उनको ऐसी ब्लीडिंग नहीं हुई जैसी अब हो रही है, और उनको वही एब्डोमिनल पेन हो रहा है और सारी दिक्कतें जो आमतौर पर होती है। उन्होंने यूएसजी कराई अपनी, तो उसमें बल्कि यूटरस वगैरह और एंडोमेट्रियम वगैरह कुछ जमा हुआ था, गाढ़ा हुआ था। उनका जो TSH लेवल था वो 5 से ऊपर जा रहा था। ऐसी सूरत हाल में उनको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस तरह से उनको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि ये परेशानी भी उनकी चली जाए और जो दोबारा ना आए?
0: देखिए, वो आप बता रहे 60 साल की एज उनकी आप बता रहे हैं और उनको पीरियड्स रुक गए होंगे, हमें लग रहा 5-4 साल हो गया होगा, लेकिन उनके एकदम हैवी ब्लीडिंग हुई है। तो ये देखिए सोचने की विषय है और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और उनको बता दिया एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की बहुत सी डिजीज होती है, एंडोमेट्रियम पॉलिप बन जाता है और ये कैंसरस भी हो सकता है, तो इसको रूल आउट कराने की बहुत जरूरत है। तो फौरी तौर पे तो उनको कुछ ऐसा जो ब्लीडिंग को रोके, जैसे ट्रेनेक्सिमिक एसिड है, इथामसिल है, इस तरह की दवाइयां ले, और अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श ले, और हो सकता है इसमें ऑपरेशन की जरूरत हो या फिर ये हार्मोन थेरेपी से भी ठीक हो सकता है, तो लेकिन इसमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
1: उनका यूरिन आयरन जब कराया गया तो उसमें पस सेल्स अच्छे खासे लेवल में मिल रहे थे,
0: मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फेक्शन है उनके।
1: यूटीआई भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, यूटीआई हो सकता है, यूटीआई की वजह से ये परेशानी भी हो सकती है।
1: जी जी।
0: और अगर पस सेल्स आई हैं तो उसमें इन्फेक्शन है, तो उसको भी यूरिन के एग्जामिन करवाएं और जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट उसके लिए जरूरी है वो ले, लेकिन बगैर डॉक्टर की देखरेख के,
1: मतलब डॉक्टर साहब अगर मशवरा दें तो जरूर उसको ट्रीटमेंट में लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बात करते हैं पुख्ता उम्र की औरतों के लिए, क्योंकि सेहत कुदरत का एक नायाब तोहफा है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पुख्ता उम्र की औरतों को किस तरह के टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए?
0: देखिए, हाँ, एक एज के बाद बहुत जरूरी हो जाता है कि हर 6 महीने पे आप रूटीन चेकअप करवाएं।
1: जी।
0: जिसमें हर साल में या हर 2 साल में हम एक सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत होते हैं, औरतें आखिर में उनके कैंसर की शिकायत, सर्वाइकल कैंसर जो औरतों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें नीचे का हिस्सा होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, अक्सर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है। शुरुआत में औरतें इग्नोर करती हैं, बताने में शर्म महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। तो एक पैप स्मेयर टेस्ट होता है जिसमें इसके जाँच होती है, वो जरूर करवाना चाहिए 1 या 2 साल में, और विटामिन डी और B12 की जाँच जरूर करानी चाहिए क्योंकि हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होती रहती हैं। तो इसके लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हर साल एक बार इसका भी टेस्ट करवाएं। और लड़कियों में और औरतों में भी खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस बढ़ रहे हैं। ये अवेयरनेस की कमी की वजह से है, तो कोशिश करना चाहिए कि हर 2 साल में मैमोग्राफी करानी चाहिए और कोशिश करके सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। पुख्ता उम्र की है तो थायराइड, BP, कोलेस्ट्रॉल, इन सबकी भी दिक्कतें होती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो चर्बी पेट के आसपास जमा होनी शुरू हो जाती है, तो मोटापा बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, BP है, थायराइड है, शुगर, ये सब जरूर चेक करवाने चाहिए।
1: आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की है, क्या आम तरह की गांठें जो पिस्तान में होती हैं, क्या वो गांठें भी कैंसर हो सकती हैं? औरतों में ये शिकायत रहती है कि भारीपन है, दर्द महसूस हो रहा है, इनमें भी टेस्ट कराना जरूरी है?
0: नहीं, अगर वो गांठ बनी हुई है, उसमें दर्द हो रहा है और वो मूवेबल, यानी अगर उसको टच करिए तो इधर उधर होती है, अगर ऐसी कंडीशन है और 1-2 महीने के तक बनी हुई है और उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये बिल्कुल सोचने की बात है, चिंता का विषय है और इसमें जरूर जांच की जरूरत है। हाँ, कभी कभार होता है लड़कियों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, खाने

0: पीने की कमी होती है तो वो थोड़ी बहुत घाट इधर उधर लम्प्स बन जाते हैं, लेकिन वो एक दो महीने के बाद दवा लेने से, मल्टी विटामिन वगैरह ही लेने से ठीक हो जाती है। तो लेकिन अगर वो बनी हुई है एक दो महीने तक तो सोचने की
1: अच्छा
0: बात
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब, एक ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन का वजन बढ़ जाता है, ये क्या एक सिर्फ लोगों का कहना है या हकीकत से भी उसका
0: जी
1: कुछ लेना देना है?
0: नहीं, कहना लोगों का क्या, लोग देखते भी तो है, तो इसमें
1: तजुर्बा
0: जी हाँ बिल्कुल तजुर्बा भी है। अगर आप 5 लोगों को लेंगे तो उसमें 3 तो मोटी हो भी जाती हैं और शायद 2-4 मोटी हो जाती हूँ।
1: वो एक
0: और
1: मुकाबला है कि घर में इतना आराम मिल जाता है, हस्बैंड को
0: हाँ,
1: परेशान करते
0: लेकिन अगर हम
1: करते।
0: अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो औरतें जब शादी के बाद होती तो चलिए ठीक है, एक मेंटल सुकून हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में, समाज में ऐसा सोचा जाता है जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती, जब तक उनका घर नहीं बस जाता, उनकी लाइफ अभी सेटल नहीं हुई है,
1: बिल्कुल
0: तो एक मेंटल सुकून तो आ ही जाता है औरतों को कि हाँ चलो मेरी शादी हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो एक
1: जी,
0: टेंशन नहीं होता उसमें, ये तो है कि थोड़ा सुकून से इंसान जब खाएगा तो वो जिस्म में लगेगा। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी आती है या अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो हॉर्मोन्स का फिर एतदाल बिगड़ता है और इसकी वजह से भी मोटापा आता है। प्लस अगर 30 के आसपास की औरतें हैं तो थायराइड का खतरा रहता है, शुगर का खतरा रहता है, आजकल तो बड़ी जल्दी डायबिटीज भी हो
1: जी।
0: जाती है लोगों को।
1: मैडम यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि शादी के कितने दिनों बाद आमतौर पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या हो जानी चाहिए?
0: अगर आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ आप प्रिवेंशन नहीं ले रही हैं
1: जी
0: तो शादी के 2-3 महीने के अंदर ही आप कंसीव कर सकती हैं। अगर आप फर्टाइल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि 2-3 महीने से ज्यादा,
1: और अगर इससे ज्यादा हो तो फिर वो डॉक्टर से मिले।
0: हाँ अगर 1 साल से ज्यादा, 1 साल तक वेट करना चाहिए
1: जी
0: और नेचुरल तरीके से सोचना चाहिए, लेकिन अगर 1 साल से भी ज्यादा हो गया है तो हाँ थोड़ा आपको कंसल्ट करने की जरूरत है डॉक्टर
1: जो
0: से।
1: औरतें हामिला हैं, किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज उनके लिए सही है या नहीं है, जो अभी 3, 4, 5 महीने की हामिला हैं और ऐसी सूरत हाल से वो गुजर रही हैं, तो
0: जी
1: उनको क्या करना चाहिए?
0: देखिए, प्रेगनेंसी तो एक अल्लाह का तोहफा है
1: यकीनन
0: और प्रेग्नेंट औरतें बीमार नहीं, बहुत आजकल का खैर लोगों का माइंडसेट है कि प्रेगनेंसी है तो वो बीमारों की तरह अपने आप को फील करने लगती है कि
1: बिल्कुल
0: हमें काम नहीं करना है, आराम करना है,
1: हाँ।
0: लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट औरतें हैं तो शुरू के 3 महीने खास ख्याल रखना चाहिए, उनको एक अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें दाल, सब्जी, फ्रूट्स, अनाज और नट्स होने चाहिए, दूध, पनीर, इस तरह की चीजें खानी चाहिए। अगर उल्टी मतली जैसी शिकायत है शुरू के 3 महीने में तो ब्रेक ब्रेक करके उनको मील लेना चाहिए, थोड़ी
1: ओके
0: थोड़ी देर पे छोटा छोटा मील लेना चाहिए।
1: ठीक है
0: और शुरू के 3 महीने ख्याल रखें, लेकिन उसके 3 महीने के बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिए, घर के सारे काम आप कर सकती हैं। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप बिल्कुल घर के सारे काम आराम से कर सकती हैं
1: जी
0: और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए,
1: जी
0: इससे आपकी डिलीवरी ही आसान होगी, बाकी
1: प्रेगनेंसी
0: और कोई परेशानी नहीं होगी।
1: से जुड़ी एक और सवाल मेरे सामने आ रहा है, IVF। ये
0: जी
1: IVF क्या है मैम, इसके बारे में जरूर बताएं।
0: इसका फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता
1: यस
0: है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है।
1: जी
0: जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है उनकी प्रेगनेंसी में, और कभी कभी मेल्स में कुछ कमी होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, औरतें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, एक मेडिकल टेक्निक होती है जिसमें औरतों के ओवरी से अंडे निकाल करके उसको लैब में मेल स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है,
1: जी
0: और जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को वापस उस महिला के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर जैसे नॉर्मल प्रोसीजर प्रेगनेंसी का होता है उसी तरीके से वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है और वो नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन डिलीवरी ये सब हो जाता
1: और हम आपसे ये जानना जरूर चाहेंगे कि इसका टोटल खर्च कितना है, क्या ये पेनफुल है, ये पूरा प्रोसीजर क्या है?
0: इनका खर्चा तो कम से कम 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का
1: अपने
0: होता है,
1: हिंदुस्तान
0: क्योंकि
1: में
0: हाँ जी ये प्रोसीजर थोड़ा महंगा है, और अगर आपको ये इसके लिए जाना है IVF के लिए तो किसी अच्छे संस्थान या अच्छे डॉक्टर से ही करवाएं, क्योंकि अगर अच्छे डॉक्टर करेंगे तभी ये कारगर साबित होगा।
1: डॉक्टर साहिबा, चूंकि स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है कि हमारा वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक सवाल और आपसे चाहेंगे,
0: जी बिल्कुल
1: वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया क्या ये बीमारी है, इसका इलाज करना जरूरी है या इसको ऐसे ही सही किया जा सकता है?
0: देखिए, छोटी बच्चियों में जो 15 से 20 साल तक की लड़कियां होती हैं, थोड़ा बहुत आमतौर पे वाइट डिस्चार्ज होता है,
1: जी
0: और ये मेनली कैल्शियम की कमी से होता है लड़कियों में। अगर हम तो कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो उससे भी ठीक हो जाता है, लेकिन
1: ओके
0: अगर यही वाइट डिस्चार्ज थोड़ा चिपचिपा, बदबू या बहुत ज्यादा आ रहा है और नहीं ठीक हो रहा है कैल्शियम सप्लीमेंट से भी, तब भी समझ लीजिए इन्फेक्शियस है, और इसमें यही एंटीबायोटिक वगैरह, एंटी अमीबिक चलती है और ठीक हो जाता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, बदबू नहीं है तो छोड़ सकते।

0: सकते हैं, इसको कैल्शियम सीधे खाइए।
1: डॉक्टर साहिबा, इतनी कीमती जानकारी देने के लिए, इतनी मालूमात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। सामईन, ये था हमारा आज का खुसूसी सेहतनामा मसाइले खवातीन। इस मौजू पर हमसे बात कर रही थी मोहतरमा डॉक्टर नाजिश बानो साहिबा, जनरल फिजिशियन तिब्बी यूनानी। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दें इजाज़त। आदाब।
2: उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश सेहतनामा।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:50 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
8: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 से 11 के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ। स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 से 11 के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। आइए इनसे पहले सुने ये कजरी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने मोहन सिंह यादव और साथियों के स्वर में कजरी और सावनी गीत सुने। लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम झंकार।
1: कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ। स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम झंकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आए दिन बाहर के से, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

बत्ती गुल मीटर चालू। जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ अरिजीत सिंह की है, गीतकार हैं सिद्धार्थ, संगीत दिया है संचेत परंपरा ने।

ये गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को प्रातः 10 से 11 के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर। हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ। स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 23/8/2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी समस्याएं और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भोलानाथ मौर्य। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 20 अगस्त 2026

इस दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैं आपके फोन का इंतजार रहेगा। बनारस का एसटीडी कोड है 0542 और हमारा फोन नंबर है 2221052 पर हमें फोन जरूर करें। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

यह आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम रोटी, आनंद गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म आपकी परछाइयां का एक गीत। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत मदन मोहन का है।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप जब शामिल होते हैं मेल संदेशों के जरिए, तो उसके लिए आप हमें मेल भेजते हैं। जो नए श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं उनको हम अपनी ईमेल आईडी बताते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए AIR VNS FGEXP@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए AIR VNS FGEXP@gmail.com। जो भी संदेश आज आप भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अभी तो हम जो पहले से आए हुए मेल हैं उनको ही शामिल करते हैं। तो आज है रेडियो दिवस और श्रोता दिवस, चर्चा करेंगे इसकी हम इस गीत के बाद।

क्या कहता है ये सावन, कुछ तो कहता है ना। यही कहता है कि आज है आपका दिन, श्रोताओं का दिन, श्रोता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और बात और भी करेंगे, लेकिन बता दें इस गीत को सुनने के लिए किसने मेल किया था, ये मेल भेजा था खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविका सिक्का ने। धनोरे तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आली आयान बाबू। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नू वडतकर। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल, देवंती जायसवाल, चिन्मय महतो, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी निष्का और तन्मय गजभिये। कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। गांव खरियां ढाड़ी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया ने। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री गुप्ता का भी मेल हमें मिला है। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी, मोहम्मद अफजाल मलिक। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने संदेश भेजा है। पद्मा टाकिच नेपा नगर मध्य प्रदेश से। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुराहनुद्दीन ने भी संदेश हमें भेजा है मेल के जरिए। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। इन्होंने लिखा है माय रेडियो माय लाइफ और माय चॉइस आप सभी। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरलाल मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर, बेबी प्रियांशी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। पटेल नगर मुगलसराय

से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी मेल हमें मिला है। रोहान से छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, जानकी साहू। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी, बेबी बॉय, हिमाक्ष। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मिराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से मेल हमें प्रेषित कर रहे हैं। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। बोरेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू, रविंद्र और वृंदावन प्रजापति ने ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से हमें ये संदेश भेजा है। आप सभी सुनना चाहते हैं शोले फिल्म का गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का। तो आज है श्रोता दिवस, श्रोता यानी आप, और हमारा और आपका रिश्ता तो वो है ना दोस्तों, आप हैं तो हम हैं। और ये हम नहीं कह सकते कि हम हैं तो आप हैं, लेकिन आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, हम जैसे चंदा और गगन का रिश्ता होता है, धरती और नदी का रिश्ता होता है, उसी तरह से हमारा आपका ये अटूट रिश्ता है। और इस रिश्ते को हम बनाए रखें, इसी ख्वाहिश के साथ सुनिए शोले फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे दोस्ताना फिल्म का गीत। तो हमारी आपकी दोस्ती तो कायम रहेगी, है ना? पक्का वादा है, क्योंकि आज आपका दिन है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवाएंगे शोले फिल्म का गीत, और ये गीत भी आपको ही समर्पित है। और इस गीत के लिए मैं संदेश भेजा है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह ने। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरो, ज्योति रानी, गुरमत कौर मनु, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल, अपरकोट बोहला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ईमेल में भेजा है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषि वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ने। सेक्टर 18 जगधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनो मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। चमनपुर उदयपुर से नजीब खान, सभिया खानम, फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान। मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक का भी मेल हमें मिला है। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से अपने संदेश में प्रेषित किया है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी सुनिए शोले फिल्म का ये गीत। और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरटी बर्मन का है, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। तो दोस्तों बात हो रही थी श्रोता दिवस की। तो श्रोताओं आप हमें मेल भेजते हैं, आप हमें व्हाट्सअप करते हैं, आप हमें फ़ोन भी करते हैं और आप हमें चिट्ठियां भी लिखते हैं। तो आपका जो ये असीम प्यार हमें मिलता है, हम उसके एकदम मुरीद होते हैं और फिर कहते हैं कि इस दोस्ती को हमें कायम रखना है। और इस दोस्ती को आइए हम आज ये संकल्प लेते हैं कि इसको और मजबूत करेंगे।

तो श्रोता दिवस पर आप भी संकल्प लीजिए, हम भी संकल्प ले रहे हैं कि हम आप साथ साथ चलेंगे और साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपके जो भी संदेश आएंगे हम उसको कोशिश करते हैं सबके संदेशों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, चाहे वो जरिया मेल का हो, व्हाट्सएप का हो, फ़ोन का हो या पत्रों का हो। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई श्रोता दिवस की। और अब बढ़ते हैं आगे, देखें किसने मेल भेजा है और जानते हैं श्रोताओं अभी जो हमारे पास मेल की संख्या, पिछली बार मैंने बताया था 72,000, अभी है मेल्स की संख्या हमारे पास 74,269 मेल हमारे पास भरे पड़े हुए हैं और इन मेल में से आपके कुछ मेल्स को हम छांट के ले आते हैं। तो इसी मेल में से मैंने इन समुद्र में से छांटा है और भी मोती। ये हमारे श्रोता हैं जमनिया जिला गाजीपुर के, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल।

दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, अस्तु जायसवाल, अभिनव जायसवाल। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, उमरखेड़ से भाई रज्जाक खान, जावेद खान और शबाना बेगम। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। ऊंचे गांव नादेड़ महाराष्ट्र से देवानंद शिंदे पाटिल का भी मेल हमें मिला है। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजित कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। गांव नागल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहरागाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। अमरकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया। बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। आप सभी सुनना चाहते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और गीत को लिया है हमने फिल्म मेला से।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है मुबारकपुर रुचि तक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा ने। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सदिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का भी मेल हमें मिला है। आमा खोड़रा रेंगाखार जिला कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग, रोली, अदिति, माताजी निर्मला त्रिपाठी। बाड़मेर राजस्थान इसरोल थे शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान और ईदो कुमारी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोको रानी। गांधी चौक बाण में राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मैनिश पवार, खलीफों की बॉडी से खुदाबख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डोंगरी से बाबूराम जयपाल। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और

और सीमा साहू का भी संदेश में मिला है। तो हमने बताया था कि संदेशों की संख्या इतनी अधिक होती है, एक कुछ श्रोता के संदेश लगातार रिपीट होते हैं, इसलिए 74,000 मेल्स में से हमको अलग करने पड़ते हैं। उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है क्योंकि कार्यक्रम लाइव होता है। छत्तीसगढ़ रायपुर से अनुश्री बाल्यान, राजश्री बाल्यान और पूजा डॉली बाल्यान, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बबलू कश्यप और महेंद्र कश्यप, कुछ हमें ये लग रहा है कि कुछ नए श्रोता भी मेल भेज रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं। अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। और कार्यक्रम में आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं और प्रतिक्रिया भेजने के लिए हमारी मेल आईडी नोट कीजिए। हमारी मेल आईडी है pkldaarvaranasi@gmail.com। इस मेल पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। और कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है ग्राम बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री यशवर्धन यशवश्री देवांगन का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है मेल के जरिए। ये संदेश भेजा है अक्रम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। इन्होंने भेजा था मेहसूल सीतामढ़ी से और लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और बीनस का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ रायपुर से अनुश्री का भी संदेश आया हुआ है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चिन्मय महतो, बबरी बाजार चंदौली से सरोज जायसवाल, विजय जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, दिलदानगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम साह। पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। आप सभी सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का ये गीत।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कार्यक्रम में अगला मेल भेजा है गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से। इमृति यादव ने संदेश भेजा है ग्राम बारा बराठी पोस्ट सकलडीहा चंदौली से। गौ लक्ष्मी सासाराम गली नंबर 8B से कुमारी गंगारति चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान। सुकुलपुरा वाराणसी से परवेज अहमद फागू सोनकर। लल्लापुरा वाराणसी से अलीसा आयान खान, अलीजा और एनुल खान। अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गोंड, रामा गुप्ता गोंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गोंड, अविरल अग्रिम गोंड। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आश गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नु गोस्वामी। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामण शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने। कर्नाट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं बेईमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। इस गीत को

रखा है बर्मा मलिक ने संगीत शंकर जयकिशन का। दोस्तों अगले हफ्ते भाई बंधन के अटूट प्यार का जो त्यौहार है रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस गीत से लगेगा कि अब रक्षाबंधन आने वाला है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत बेईमान फिल्म से।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहा है आप सभी ने। गोलाघाट रामनगर वाराणसी से तन्मय साहू और इनके परिवार के सदस्य, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, और ये संदेश भेजा है गुरमीत सिंह मीता ने साउथ दिल्ली से। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं योगेश का लिखा हुआ गीत संगीत आर डी बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म मंजिल।

तो एक बार फिर सभी श्रोताओं को श्रोता दिवस की शुभकामना के साथ फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जी कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर, डी टी एच और डी आर एम 1233 किलोहर्ट्स वेव्स ओटीटी पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओ, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
3: श्रोताओ, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
2: जी
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओ, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
2: जी
3: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो

0: शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी,
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं,
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी,
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी,
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है।

0: अबा ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट हट यहाँ से, मेरी बारी है।
2: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
3: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
4: अरे आ गए, देखो,
5: अरे देखो, आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है।
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: बा, बा, बा, बा, बा।

0: जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: तालियां तालियां। फिर इसके बाद क्या हुआ जुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता।

0: पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
1: क्या बात है! सूरज भा बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
0: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: ये मारा! हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु,
6: हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
8: जी,
6: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी,
6: हा?
8: मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
6: ये कैसी अजीब बात है?
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते,
6: हा?
8: हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
6: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
6: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
8: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
6: अच्छा?
8: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। जल्दी सुनाइए।
6: हाँ बेटा,
8: जल्दी सुनाइए।
6: अरे सोचने तो दो,
8: जल्दी सोचिए।
6: मैं किसकी कहानी सुनाऊं? देखो।
8: अरे जीवन काका।
6: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
9: बाबूजी,
6: हाँ?
9: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
6: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ, अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
9: जी,
6: यहाँ लेट जाओ।
9: जी।
6: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
8: जी।
6: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
8: जी अभी लाई।
6: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
9: जी।
6: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
9: जी।
6: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
9: जी जी जी।
6: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
8: जी, जी, जी, जी नाना जी।
6: हाँ ला बेटा ला। जीवन
9: जी
6: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: अरे तनु
1: जी,
0: क्या बात है? कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
1: नाना जी, मैं सोच रही थी, जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
0: बेटी तनु
1: जी,
0: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
1: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
0: सुनो
1: जी,
0: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
1: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
0: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
1: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था?
0: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
1: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
0: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस।
1: जी।
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे, एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी।
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ बताता हूँ, सांस लेने दे, बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह

डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।

0: ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
1: जी
0: समझ गई ना।
1: जी,
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
1: जी,
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हाँ?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
5: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हरप्रीत कौर, इनके स्वर में पहले सुनिए गुरु नानक की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं हरप्रीत कौर। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए कबीरदास की ये रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी हरप्रीत कौर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर
0: जी रहे तू जरा। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगति की है ओंकार घुड़बड़ी ने, सारंगी पर लियाकत अली खान और बांसुरी पर रोनी मजुमदार। तो सुनिए इनकी गाई कजरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिता सेन का उप शास्त्रीय गायन कचरी। आपके साथ तबले पर संगति की थी ओंकार गुलबड़े ने, सारंगी प्रसाद दिया था लियाकत अली खान ने और बांसुरी पर रोनी मजुमदा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दिन का 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए

0: आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्म जोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ज्योति, पति का नाम राजू पटेल, ये ग्राम कैमार सूलपुर थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। ज्योति के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 27 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है, डील डोल सामान्य है। ये जब लापता हुई थी उस समय सफ़ेद रंग का सूट और पीले रंग का सलवार पहने हुए थी। ज्योति के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से ये सूचना भी प्राप्त हुई है। रवि पुत्र राकेश, निवासी ग्राम नदीहार, थाना राजगढ़।

जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हैं। रवि की उम्र है 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, दोहरा बदन है, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए थे। रवि के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। कंचन बिंद, पत्नी रमा शंकर, निवासनी ग्राम रामनगर सीकरी, थाना पडरी, जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हो गई हैं। कंचन बिंद के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा, दोहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उस समय लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। कंचन बिंद के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे विदुषी एन राजम का वायलिन वादन। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर, और कहकशा आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे तलत अजीज और पीनाज मसानी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी में सफल किसान की सीख, प्रेरक अनुभव विषय पर सीमांत मिश्रा से बातचीत। इसी कार्यक्रम में मोहन सिंह यादव और साथी का लोकगीत भी होगा। इनका गायन लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 आप सुनेंगे कुछ कुमाऊनी गीत। अंगनैया कार्यक्रम में दिन 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी चर्चा गीत संगीत के अलावा दांतों में होने वाली सामान्य बीमारियां, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विजय राय से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7 शाम 7:31 पर रसरंग में, रात 8:15 पर रस माधुरी में, और रात्रि 10 आपकी पसंद कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से संप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाही सवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। 16वीं मालवियाती कमीशन के तहत माली इमदाद हासिल करने के लिए आज लखनऊ मकामी इदारों यानी शहर कस्बे या गांव की मकामी हुकूमत को बाख्तियार बनाने पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। सेमिनार में इस बात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि किस तरह ग्राम पंचायतों और मकामी इदारों को 16वीं मालियाती कमीशन से ज्यादा फंड हासिल करने के लिए बाख्तियार बनाया जाए। सेमिनार के तकनीकी इजलास को डॉ प्रभाकर साहू प्रोग्राम डायरेक्टर नीति आयोग हुकूमत हिंद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक मजबूत कौमी मईशत के लिए रियासत के माली इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तकरीबन 2/3 अखराजात रियासत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क 2047 तक तरक्की कर सकता है अगर हर

0: शहरी की फीकस आमदनी बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि फीकस आमदनी में इजाफा किसी मुल्क में माली ताकत का बाइस बनता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कल 3 रोजा दौरे पर अयोध्या पहुंचे। मिस्टर मिश्रा आज से शुरू होने वाली कमेटी की मीटिंग में शरीक होने के बाद अहाते में जारी तामीरात के बारे में मालूमात फराहम करते हुए कहा कि
1: 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टूब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहां से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा और ये सभी कार्य प्रत्येक जिससे मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे।
0: वहीं राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से मुतालिक आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मॉनिटरिंग की दरख्वास्त दायर की गई है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल ने यह दरख्वास्त पेश की। अर्जी में कहा गया है कि अकीदतमंदों के पैसे की चोरी से एसोसिएशन के जज्बात मजरूह हुए हैं। अर्जी में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर चोरी में मुलविस होने का इल्जाम है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा बदलाव किया है। राम मंदिर के अहाते में तैनात मुलाजमीन की निगरानी अब मजीद सख्त कर दी गई है। मुलाजमीन की हाजिरी से लेकर ड्यूटी तक पर नजर रखी जाएगी। ड्यूटी पर पहुंचने के दौरान कैमरे के जरिए फेस रीडिंग होगी और ड्यूटी पूरी करने के बाद बाहर निकलते वक्त भी मुलाजमीन को फेस रीडिंग के अमल से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्टर मुलाजमीन के आने और जाने का वक्त भी दर्ज किया जाएगा। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल हिंदुस्तान के दौरा करने वाले नाइजीरिया के वफद से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने नाइजीरिया के वजीर मुमलकत बराए ज़राअत और खुराक की हिफाजत डॉक्टर अलीउसाबी अब्दुल्लाही के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत रियासत के देही इलाकों में होने वाली मुस्बत और जमीनी तब्दीलियों के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जनाब मौर्य ने कहा कि हुकूमत ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में अच्छा काम कर रही है। झांसी में वाकई 140 साल पुराने परीक्षा डैम को अब बैनुल अक्वामी सतह पर पहचान मिल गई है। बैनुल अक्वामी कमीशन बराए आपाशी और निकासी आब ने इस तारीखी डैम को आलमी सकाफती विरसा आपाशी के ढांचे के तौर पर तस्लीम किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: जौनपुर मंगरा बादशाहपुर थाना इलाके के तहत धर्मपुर गांव में आज सुबह एक बस स्कूल वैन से टकरा गई। हादसे में कई मासूम बच्चों की हालत तश्वीशनाक है। गांव वालों की इतला के फौरन बाद पुलिस पहुंची और बचाव के काम शुरू किया। कई बच्चों को करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर सड़क हादसे का नोटिस लिया है। वजीर आला की हिदायत के बाद जिला मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जख्मी बच्चों की हालत दरियाफ्त की और उन्हें बेहतर इलाज यकीनी बनाने की हिदायत की। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दरियासना बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से कई अजला सैलाब की जद में। वाराणसी के 84 घाटों को काट दिया गया है। हिफाजती वजूहात की बिना पर कश्तियों के ऑपरेशन को अगले नोटिस तक मुअत्तल कर दिया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गंगा के पानी की सतह तकरीबन 67 मीटर रिकॉर्ड की गई है और ये मुसलसल 4 सेंटीमीटर की शरह से बढ़ रही है। चित्रकूट में बारिश के इम्कान की वजह से 12वीं जमात तक के स्कूल आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया।

0: उसके पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: अग्नैया कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते आ साथे में लाजो तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते मुन्नक्का दीदी, और साथे में देखा अपन कार्यक्रम सुनने वाले भी सब बहनी लोगन के हमारे नमस्ते।
0: लाजो
1: हाँ दीदी।
0: देखा आज एक खास दिन हो और अपने पूरे देश में जौन है बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनावल जात हो। और खास दिन के बात कह दिली जाते, देखा आज हो अपन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन।
1: एकदम दीदी। आ देखा एकरे साथे साथे एक आउट खास दिन हो,
0: ऊ का
1: आज हो अक्षय ऊर्जा दिवस। ये हर साल देखा 20 अगस्त के माने आज के दिन मनावल जाला।
0: सही कलू हो। और जो अक्षय ऊर्जा दिवस आज मनावत है जाना अपने देश में, तो ई भी राजीव गांधी के जन्मदिन से ही जुड़ल हो। काहे से कि देखा जौन ई अपन प्रधानमंत्री रहे ना, इनकर जौन मन लगे ना उन इनकर ई मानना रहे कि अपने देश में जौन तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा विकास होवे के चाहिए है ना, ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होवे के चाहिए। यही लिए इनके जन्मदिन के आज जौन है अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनावल जाता हो।
1: एकदम दीदी। और देखा अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखा ये अक्षय ऊर्जा दिवस एक ऐसा चीज है मतलब जो प्रकृति से जुड़ा हो, माने जो अपन प्रकृति का ऊर्जा हो उसे आप बिजली बना सकलू, जैसे हवा हो गल, धूप हो गल, पानी हो गल, ये सब चीज से बिजली बनावे का हो। तो देखा एकरे बदे अपने घरे के छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाए के होला, जैसे जो धूप से बिजली बनावाला। तो देखा पहनी लोगन एक अपने घरे पे लगवावे, और साथ में देखा पंखा टीवी जो हो ये सब आप फ्री में मतलब मुफ्त में चला सकलू। और गांव में देखा दीदी का होला कि बिजली आए जाए का झंझट हर घड़ी लगल रहला, काम भी ओकरे वजह से रुक जाला कई ठे। तो यही से जब आप लोगन अपने घरे में मतलब सोलर पैनल लगवा लेबू तो ये सब चीज का झंझट न रही।
0: बिल्कुल सही कलू है लाजो। और देखा नाम है अक्षय, यानी जवन के कभी क्षय न हो। जैसे सौर ऊर्जा का बात हम लोग करी ला, तो ई ऐसा ऊर्जा है जवन की देखा साल में एक कुछ 6 दिन लेला गिनल चुनल, तो सूर्य नारायण न देखिए तो के नहीं तो बरहो महीना सूर्य नारायण उगे ना। तो यही से जवन सोलर पैनल लगत है माने कि फ्री का तो तुहके लाइन मिलवे करी, यानी एक तरह से तुहार पैसा का भी बचत हुई। और साथे में जितना चाह अपने आवश्यकता के हिसाब से तू बिजली का उपयोग भी कर सकलू। और वैसे देखा कहल भी जाला ऊर्जा का साधन जवन सीमित है, जैसे अपन कच्चा तेल का बात कही ला जा, पेट्रोल हो डीजल हो ई कुल सीमित हो, या अपन खाना बनाओ वाला जौन गैस हो ईंधन ई भी सीमित हो। तो यही लिए ये दिन के मनावे के पीछे खास मनसा यह है कि ई कुल जौन सीमित ऊर्जा का साधन हो ए पर ज्यादा निर्भर न रह के अपन जौन प्राकृतिक साधन हो ऊर्जा का ओके ज्यादा से ज्यादा अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लियावल जा है ना।
1: एकदम दीदी। देखा कच्चा तेल और पेट्रोल की बात कह लो तो देखा दीदी ये एक ना एक दिन खत्म हो जाए, लेकिन जो अपन प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत हो ये कबो खत्म ना है वाला हो।
0: बिल्कुल
1: देखा सूर्यनारायण भगवान तो हर वक्त दिखा रहलन, और साथ में देखा जो अपने गाँव में गोरु चगुआ लोग हन उनकर गोबर हो वो भी हमेशा रहे। तो देखा उसे बायो गैस प्लांट लगावल जा सकला, जैसे बहनी लोगन अपन खाना बना सकल इन पे। और वैसे देखा उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ला, जब वो
0: बिल्कुल
1: लकड़ी पे
0: बिल्कुल
1: खाना बनावलिन चूल्हा पे बनावलिन तो उपे उनके स्वास्थ्य में उनके सांस लेने में दिक्कत होला, आँखी में भी कई तरह का समस्या हो जाला।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब
0: बिल्कुल
1: वो गैस पे खाना बनाइन तो उसे उनकर स्वास्थ्य बेहतर रही।
0: एकदम सही कलू हो। माने कुल मिला के बहन लोगन यही कहे क्या हम लोग के कि ऐसे अपन पर्यावरण भी सुरक्षित रही और लाजो अपन स्वास्थ्य भी जौन बढ़िया रही स्वस्थ रही, तो करे के कुछ ना है। देखी अपने दिनचर्या में आप एके ली आवे अपनावे। और दिनचर्या का बात करी ले जाना, तो शुरुआत है होला लाजो सवेरे से। और सवेरे जब उठा तो पहला काम होला कि पहले जल्दी से अपन जौन है कि दैनिक काम हो जो

0: निपटान का काम है, साथे में दांत का सफाई है, तब ना हमन का आगे काम बढ़ला। और जब
1: एकदम
0: दांत के
1: दीदी।
0: सफाई का बात करी ला जाना, तब पूरा स्वास्थ्य जौन है दांत से जुड़ल है। दांत के रही बढ़िया सुंदर रही तो देखा अपन जौन है ना कि खूबसूरती भी जौन है मन चार चांद लगेला।
1: एकदम
0: हाँ
1: दीदी। अरे देखा दांत के बारे में बात करत हो तो देखा यही पे के निकेगा बहनी लोगन खातिर
0: हाँ
1: बतकही लेके आवल गया है
0: बिल्कुल
1: कि दांतों में होने वाली सामान्य बीमारियां कारण लक्षण और उपचार ए विषय पे डॉक्टर विजय राय से अपन शिखा श्रीवास्तव बहनी बतिए लेन तो बहनी लोगन ही बतकही सुने।
2: श्रोता बहनी, आज हमरे साथे कार्यक्रम में आयल हुवन डॉक्टर विजय राय जी, ई दंत रोग विशेषज्ञ हुवन और आप लोगन के जानकारी दी हैं कि दांत में कौने कौने तरह का बीमारी हो सकेला और एकर कैसे उपचार कइल जा सकेला, का लक्षण है एकर, तो ई सब जानकारी आप लोगन अभी सुनी है। तो पहले तो डॉक्टर भैया आपका हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनी लोगन के ये बताई कि दांत में जो सबसे अधिक बीमारी होले वो कौन कौन सामान्य बीमारी है जो सबसे ज्यादा आपके मरीजन में देखे के मिलेला।
3: दांतों में मुख्यतः दो तीन बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। पहला दांत में कैविटी लगना, जिसे हम कीड़ा लगना भी बोलते हैं। मसूड़ों से खून आना, जिसे हम लोग कई बार पायरिया भी कहते हैं, और मुंह में छाले होना। ये तीन बीमारियां मुख्यतः देखी जाती है।
2: छाला का तो बहुते सुनाई देवेला कि
3: हाँ
2: छाला
3: जी
2: हो गए।
3: जी जी गलत खान पान से ये छाला हो जाता है।
2: अच्छा, ये पायरिया का मुख्य कारण का होला।
3: पायरिया का मुख्य कारण होता है कि हम अगर सही से ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं रखते हैं, दंत चिकित्सक दांत के डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं और मुंह में गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है।
2: अच्छा, तो यही से वो पायरिया रोग हो
3: जी।
2: जाएगा। अच्छा, कीड़ा कैसे लग जाएगा दांते में।
3: कीड़ा लगने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कि सही ढंग से ब्रश न करना, और एक बार की जगह हमें दो बार ब्रश करना चाहिए, और बीच बीच में कभी कोई छोटा मोटा कैविटी हो तो डॉक्टर के पास जाके समय पे भरा लेना चाहिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती।
2: अच्छा, तो आप कहत हुन कि सही ढंग से सफाई करे का, तो का सही ढंग से सफाई करे का नियम होए के चाहिए, कई बार ब्रश करे के चाहिए।
3: सफाई हम लोग को मुख्यतः दो बार करना चाहिए, और खासकर रात में तो जरूर करके सोना चाहिए, क्योंकि रात भर कोई अगर हमारे मुंह में मीठा चिपचिपा या पदार्थ फंसा हुआ है तो रात के पूरे 8 घंटे तक वो फंस के बैक्टीरिया को पैदा करता है, जिससे हमारे दांत में सड़न ज्यादा होती है। तो इसलिए मुख्यतः कहा जाता है कि रात में अवश्य ब्रश करें ताकि मुंह साफ हो जाए, और फिर इससे कीड़ा लगने में कमी आ जाती है, दिक्कत नहीं होती।
2: कबो कबो दांत बहुत लंबे समय से जब खराब होए लगेला तो दांत झरे लगेला, माने कि बीच बीच से टूटेला या किनारे से टूट जाएला, ओमन ठंडा गरम लगे लगेला, तो इक्वल समस्या जब हो जाएले दांत में तो ऐसे कैसे राहत मिले और ये कौने कारण से हो जाएला, काहे दांत इतना कमजोर हो जाए।
3: जैसा आपने कहा दांत झड़ना, दांत तभी झड़ता है जब सड़ जाता है वो, या हम बहुत ज्यादा ब्रश करते हैं।
2: अच्छा,
3: तो इन दोनों स्थिति के लिए समय समय पे अपने दंत चिकित्सक को आप दिखाते रहें, जिससे कि वो इसका आपको उपाय बताएंगे और ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी।
2: कबो कबो ऐसा होला ना डॉक्टर साहब कि दर्द नहीं होला हाँ, लेकिन बीमारी अचानक से सामने आ जाएले, तो का बिना दर्द के भी कोनो बीमारी दांत के सामने आ सकेले।
3: जी आ सकती है। जैसा कि कैविटी जो होती है शुरुआती स्टेज में जब अपने होती है तो समय दांत दुखता नहीं, और मसूड़ों में भी थोड़ी प्रॉब्लम जब शुरू शुरू में शुरू होती है तो उसमें भी दांत में दर्द नहीं होता है। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ भी हो तो तुरंत अपने नजदीकी दंत चिकित्सक को दिखा के उसका उपचार करें।
2: अच्छा, ये बताई जैसे बहुत लोगन कहेलन ना कि मीठा खैले से दांत खराब हो जाएला, तो का ये सही बात है कि मीठा बहुत खाए तो दांत खराब
3: हाँ
2: हो जाए।
3: मीठा पदार्थ दांत में ज्यादा चिपकते हैं, लेकिन अगर हम ठीक ढंग से दो बार सफाई करते हैं तो मीठा पदार्थ हमें नुकसान नहीं पहुंचाते।
2: अच्छा, बच्चन का दांत बहुत सड़ेला, अगर देखल जाला कि 5 साल 6 साल का बच्चन हुआ तो उनका दांत में खराबी ज्यादा देखे के मिलेले,
3: क्योंकि बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं और मीठा, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये उनकी पसंदीदा चीज है, टॉफी। कोई भी रिश्तेदार आता है तो बच्चों को टॉफी पकड़ा देता है।

0: इन सब चीजों से ज्यादा खाने से, और दो बार ब्रश बच्चों के लिए भी जरूरी है, अगर वो भी रात में ब्रश करके सोएं और 6 महीने साल में एक बार अपने पास के डॉक्टर को दिखाते रहें, तो ये सब चीजें नहीं बढ़ती।
1: आप जैसे बोलन है कि मुंह में जो मसूड़ा होला उमन सूजन आ जाएले तो पायरिया का शिकायत हो जाएले,
0: जी
1: तो कब्बो कब्बो तो दुर्गंध नहीं आवेले लेकिन मसूड़े में सूजन हो जाएले, तो ये मसूड़ा में सूजन भैले का कुछ और भी कारण हो सकेला?
0: जी, दांतों का सड़ना होता है, गलत ब्रश करना, या कहीं खाना फंस गया हम लकड़ी से या सीख से उसको खोदते हैं, तो उससे भी सूजन या ब्लड आ सकता है।
1: अच्छा।
0: और पायरिया जो है ये पूरे मुंह में या ज्यादातर हिस्सों में होती है, कई जगह से ब्रश करने पे या ऐसे दबाने पे भी खून आता है, लेकिन इसमें एक निश्चित स्थान से किसी सड़े दांत के बगल से या जहां खाना ज्यादा फंसता है वहां से ब्लड आ सकता है।
1: बहुत डॉक्टर भैया लोगन कहलन कि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होला, तो ओकर भी लक्षण यही तरह का समझ में आवेला, तो ये कैसे अलग हो उसे?
0: स्कर्वी अलग चीज हो गई, पायरिया अलग चीज हो गई। पायरिया में हम लोग विटामिन सी देते हैं, या जो लोग खट्टी चीजें कम खाते हैं उनको ये पायरिया रोग ज्यादा देखा गया है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी चीज है दांतों की सफाई, मुंह की सफाई समय समय पर अगर होती है तो पायरिया जैसी बीमारी आगे नहीं बढ़ती।
1: जब बहुत जब उम्र हो जाए ले केहू मनई का, तो बहुत उम्र के बाद दांत लगेला हिले, दांत में तरह तरह का समस्या हो जाए ले, तो वो समय में का करे के चाहिए? दांत उखड़वा देवे के चाहिए?
0: नहीं, जरूरी नहीं है। अगर दांत सब कमजोर हैं, खराब हो गए हैं, तभी निकालना जरूरी होता है, अन्यथा हम उन दांतों को भी बचा सकते हैं, वहां प्लेट लगा सकते हैं, फिक्स दांत भी लगा सकते हैं, वो भी रास्ते हैं।
1: कौने कौने स्थिति में डॉक्टर साहब दांत का प्रत्यारोपण कइल जाला?
0: जब हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं, सारे दांत हमारे खराब हो गए या निकल गए किसी कारणवश, तो उसको खाने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए फिक्स दांत लगाए जाते हैं, वो इम्प्लांट को लगाने के बाद उसके ऊपर बैठा के खाने की सुविधा दी जाती है, जिससे आदमी सब अच्छे से खा लेता है।
1: एक प्रश्न हमारे मन में और आवत है कि जब खाए पिए का बात होता, भाई दांत का पूरा काम खाए पिए कही है, तो ऐसा कौन कौन चीज खाए पिए कि दांत का भी स्वास्थ्य बनल रहे, और कौन चीज न खाए जैसे कि दांत जो न बीमार पड़ जाए?
0: खाने पीने के लिए तो सब चीजें हैं, और बस यही है कि मीठी चीजें थोड़ा कम खानी चाहिए, और सबसे जरूरी है सफाई। खान पान से सबसे ज्यादा जरूरी, जो लोग ध्यान नहीं देते, दो बार की सफाई और नियमित साल में एक बार अपने डेंटिस्ट से मिलना, चेकअप कराना, दांत कराना। अन्यथा आप कुछ भी खाइए पीजिए, अगर मुंह में कैविटी है, खाना फंस रहा है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी।
1: सुनल जाला ना, बहुत गवई में बुजुर्ग लोग रहेलन, कहेलन कि हम अगर खैनी खा लेला तो मेरे दांते का दर्द दूर हो जाएगा।
0: नहीं, ये सब गलत है। ये सब सोच है कि खैनी खाना, लौंग का तेल रख लेना, ये सब एक घरेलू उपचार या जो लोग मानते हैं, ये गलत है।
1: आपके हिसाब से कौन कौन ऐसा बात है जेके नजरअंदाज न करे के चाहिए और ये सोचे के चाहिए कि हम दांत की समस्या की तरफ बढ़ते?
0: किसी भी प्रकार का नया चीज मुंह में अनुभव होना, जैसे कि खाना फंसना, दांत गंदे होना, ठंडा गरम लगना, मुंह में छाले आना, ये सब चीजें बताते हैं कि कुछ बीमारियां मुंह में आ रही हैं, और इसका ध्यान दिया जाए।
1: अच्छा, दांत के बीच में जो जगह हो जाएला, तो का ये कोनो बीमारी का के कारण होला, या कैसे काहे एकर का कारण, काहे वो जगह बन जाएले दांत के बीच में?
0: दांत के बीच में जगह आने के बहुत सारे कारण है। सबसे प्रमुख कारण है कीड़ा लगना। कीड़ा कैविटी बनने से खाना फंसता है, उसको यथाशीघ्र भराएं ताकि भविष्य में वो आगे न बढ़े। दूसरा, दांतों का कमजोर होना या हिलना, उससे भी गैप या जगह बन जाता है, तो उसका दूसरा उपचार है, तार का ट्रीटमेंट है, और भी है ये चीजें इसके लिए बनी।
1: गवाई में एक थे बीमारी कही जाला कि दांते में खोरड़ा हो गई है, माने अंदर से कुल दांत खलिया गई है, अमन कुछ रह नहीं गई, और जब वो नुकीला हो जाएला तो और जीभ के नुकसान पहुंचावेला, गाल के नुकसान पहुंचाएला, तो ये कौन बीमारी है कि कैसे ऐसे चिकित्सा एकर कैसे होली?
0: खोरड़ा कोई बीमारी नहीं है, एक दांत का सड़न है। दांत समय अनुसार जब सड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ समय बाद जब कोई उसका एक हिस्सा

0: निकल जाता है तो बच्चे इससे शार्प हो जाते हैं, तो वो ज्यादातर हमारे गाल में चुभते हैं और छाला या नुकसान करते हैं, तो उसको समय रहते रूट कैनाल करा लेना चाहिए ऐसे दांतों में, और कैप लगवा लेने से ये समस्या पूरी खत्म हो जाती है।
1: अच्छा, जब आप रूट कैनाल का बात कहलन है तो श्रोता बहनी लोगन के इहो बता दें कि ये रूट कैनाल चिकित्सा का होले।
0: रूट कैनाल चिकित्सा दांतों को बचाने का सबसे उत्तम उपाय होता है। जब हमारे दांत हमारी थोड़ी लापरवाही से खराब होने लगते हैं या जिसमें दर्द होने लगता है या किसी वजह से थोड़े सड़ गए, तब भी एक मौका रहता है उसको सुरक्षित करने का, ठीक करने का। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसमें हम लोग उसको नस ट्रीटमेंट भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: नस ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं जिससे कि आदमी पहले जैसा फिर सब कुछ खा पी सकता है।
1: अच्छा, क्योंकि आधा दांत अगर टूट गई कोनो घटना दुर्घटना में तो ओहू पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकेला?
0: हाँ, हो सकता है, लेकिन उसका पूरा निरीक्षण करना पड़ेगा, किस स्थिति में है, हिला है कि नहीं, कितना टूटा है, कहीं ज्यादा तो नहीं टूट गया, तो उन सब स्थितियों को देखने के बाद उसे भी बचाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आप इतना महत्वपूर्ण जानकारी दांत की बीमारियों से संबंधित देते हुए और बहुत बहनी लोगन इसे लाभ भी ली है, लेकिन समय का अभाव है तो चलत चलत बहनी लोगन बदे का संदेश देहल चाह?
0: हमारा यही संदेश है कि जो भी खाना पीना है सब कुछ खाइए, लेकिन दो बार ब्रश करिए अच्छे से, और समय समय पे ब्रश को भी बदलिए, ताकि ब्रश कड़ा ब्रश भी नुकसान करता है, और आसपास के अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं, कुछ कीड़ा लग रहा हो जिसे कैविटी हम लोग कहते हैं, तो उसको समय पे भराएंगी तो खोड़रा के रूप में नहीं जाता है, मतलब वो ज्यादा बड़ा होके दांत को डैमेज नहीं करता। तो समय रहते शुरुआत में ही किसी भी बीमारी को अगर ठीक किया जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है, कम समय लगता है, कम पैसा, कम तकलीफ दर्द होता है, जो कि सबके लिए अच्छा है।
1: बहुत अच्छी बात आप कहलीन हा, सही बात है। बहनी लोगन, दांत की समस्या के हल्का में न लेवे के चाहिए कि चला आज नहीं काल देखब, जब दांत दर्द होला ना तो तेरे लोग नजर आवे लगेला। हाँ, तो दांत की बीमारी अगर कोनो आपके है तो जरूर अपने आसपास के दंत रोग विशेषज्ञ से मिली और दांत का उचित चिकित्सा कराई। आप अगर स्वस्थ रहब, आपका दांत स्वस्थ रही है, तो आप मुस्कुराए भी तो बहुत बढ़िया लगी। डॉक्टर विजय राय जी, आप हमारे कार्यक्रम में इलन और दांत से जुड़ल बीमारियन के बारे में श्रोता बहनी लोगन के इतना बढ़िया बढ़िया इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लाजो।
3: हाँ दीदी।
2: देखा, ये बत कही होत रहा कि दांतन में हो वाली सामान्य बीमारी का हो, एकर कारण का हो, लक्षण का हो और उपचार एकर कैसे हुई, ए विषय पर डॉक्टर विजय राय से शिखा श्रीवास्तव दीदी के बत कही रहा और बहुत अच्छी बत कही भइल। एक बात बहुत अच्छा दीदी कनी है कि भाई देखा, दांत हो तो सुंदरता भी बनल रही।
3: हाँ,
2: और स्वास्थ्य भी बढ़िया रही। जेके भी कोनो तरह का दिक्कत हो अगर ऐसा, तो लापरवाही मत कर, जल्दी से जल्दी जौन अपन समस्या डॉक्टर भैया से मिल के दूर करवाऊ।
3: एकदम दीदी, देखा बातचीत तो हो गई, लेकिन अब बहनी लोगन जोहत हो कि कुछ गीत गौनाई सुनवा देवल जाए बहनी लोगन के?
2: अरे जोहत हुई है ना ही, एकदम इंतजार में है, सही बात हो। और चलत है देखा अपन सावन का महीना, आ एमन अपने अंगनैया में भी गुजर के चाहिए कजरी, है ना? तो बहिन लोगन सुना मालनी अवस्थी और सखियां लोगन के साथे एक कजरी।

0: देखा निक्का कजरी रल और झलुआ झूले में ना हम कहीं लाजो, जब तक सखी लोगन साथे नहीं रहती नाही मजा आवाला।
1: दीदी
0: और हमके तो मजा आवाला पटेंग मारे में, आ तुहके तो कैसे अच्छा लगला झलुआ झूले
1: देखा
0: में?
1: दीदी, जब सखी सहेली लोगन रहली ना तब मजा आवाला, अधिका पटिंग मारे के बात करूँ तो उनमें तो मजा आईबा करला।
0: हाँ सही कलू है। आ साथे साथे अगर लाली दीदी हूँ, इमरती दीदी हूँ, तो लाली दीदी का जवन कजरी चला लेना तो पटेंग और बढ़िया से जौन की मारे में अच्छा लगला। और झलुआ जब लहराला तो पूछा मत, लेकिन ये झलुआ तो आजकल रुपए बदल गया हो लाजो। आजकल तो जौन पेड़ है सब कोई काटा चल जात बा, तो ये झलुआ का जौन रूप अब बहुत कम देखे के मिलत हो। लेकिन हम कहें कि बहन लोगन के अभी भी बना के रखें। और एक बात यो कहब ना
1: हाँ
0: लाजो,
1: दीदी,
0: कि आज एक और खास दिवस है।
1: ओ का दीदी बता दे बहनी लोगन के।
0: आज हो देखा विश्व श्रोता दिवस है। हम हन जवन अपन कार्यक्रम करत है
1: हाँ
0: ना, ई तब इतना अच्छा से हो पावला, एमन का कमी है, का बढ़िया होवे के चाही, और का मतलब बहन लोगन के सुझाव देवे के बात हो, ई कुल हम लोग का तब चलत है जब हम हन का बहन लोगन मन से हम हन के सुनेनी।
1: एकदम दीदी, देखा हम

0: लोगन का आवाज का वजूद तब हो जब अपन श्रोता लोगन ओके सुनिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। तो बहन लोगन के भी श्रोता दिवस का खूब बधाई हो। हमहन पर जवान है उ लोगन का ऐसे ही नजर बनल रहो, हमहन का कार्यक्रम खूब निखरत रहो बढ़िया से और आगे। और एक बात इहो कहब ना कि देखा मौसम सावन का चलत है और अगर खाए पिए का जब बात होला तो सीजनी चीज मिल जाला तो कितना निक लगल बरखा के साथे। उ कौन चीज है बताइबो?
0: देखा उ है भुट्टा। देखा इसमें बरखा शुरू होला ना तो भुट्टा अगर खायल जाए तो बरखा का मजा दुगना हो जाला। तो देखा दीदी भुट्टा खाए में तो स्वाद तो बहुत ज्यादा होला लेकिन साथे में देखा ये स्वास्थ्य खातिर भी बहुत फायदेमंद होला।
1: अच्छा
0: इनमें देखा इनमें कई तरह का फाइबर विटामिन और कई तरह का विटामिन हो जैसे आयरन हो जैसे खून का कमी कम होला दीदी खून का कमी दूर हो जाला। एक खाइले से देखा अपन पाचन तंत्र मजबूत होला कब्ज का समस्या दूर होला ये आँख खातिर भी देखा बड़ा अच्छा होला। ऐसे देखा दीदी अपने शरीर में ना लंबे समय तक ऊर्जा बनल रहला जैसे ताकत मिलत रहला और ये बाल और त्वचा खातिर भी बहुत अच्छा होला। ऐसे में देखा बरसात का समय में अपने त्वचा से संबंधित कई तरह का लोग के समस्या हो जाता तो एकर अगर सेवन करिए ना तो ये सब चीज से बचल जा सकला।
1: बिल्कुल देखा कुल मिला कि ई हो ना लाजो कि मौसमी चीज हो अपने बजट में मिल जाए तो मौसमी चीज ही खाए के चाहिए है ना। और साथे साथे हम कहें कि खाना भी बड़ा आसान है चाहे तो तू एक भूज के खा और नहीं तो भाई जेके थोड़ा सा जेकरे दांत का बात कैली है जाना दांत कमजोर बा जैसे जे बुजुर्ग हम भाई मन तो करबे करे लगी खाए सब दिन ना खैले बाटा तो ऐसने लोगन खातिन भुट्टा के जवन उबाल के और मन नमक लगा के नींबू लगा करके अगर खाए तो एक स्वाद भी बढ़िया जौन है दुगना बढ़ जाए और स्वास्थ्य के लिए भी गुणकारी रही। और स्वास्थ्य का जब बात करे लगे ला जा तो स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव स्वच्छता से होला। अब मौसम देखा ऐसा चलत हो कि साफ सफाई रखना बहुत जरूरी हो।
0: एकदम दीदी देखा साफ सफाई रखल बहुत जरूरी हो घरे में तो साफ सफाई रखे और साथे में अपने घरे के आस पास में भी जरूर साफ सफाई रखे। कई जने देखा होलन की अपने घरे का सब कूड़ा कचरा गली में ले जाके फेंक देवलन सोचलन की साफ सफाई हो गए तो देखा ये चीज न करे के चाहिए से कि वही रास्ते से आप लोगन का आना जाना लगल और बीमारी का शुरुआत भी वही ढंग से होला।
1: बिल्कुल सही कहलू है साफ सफाई अगवारे पिछवारे आस पड़ोस हर जगह होए के चाहिए। साथे में जहाँ सार्वजनिक जगह पर तू जात हूँ बाजारे हाटे वहाँ भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रख। कहे से जगह जगह पर देखा कूड़े दान रखल है तो जो भी चीज खा या पिया तो ओकर जवन पैकेट है या दोना है कुछ भी है ओके तू कूड़े दान में डाला जौने से आस पास का जगह साफ तो रहबे करी। और साथे में आपन जवन पर्यावरण है वो भी जौने की शुद्ध रही साफ रही है ना। तो देखा यही से कहल जाला ना कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखे के चाहिए और विचारन में भी सफाई होवे के चाहिए। ये सबसे बड़ा जरूरी हो। अब बतकही करत करत लाजो देखा चले का बखत होगर है ना। तो अब बहिन लोगन से कहल जा नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। इनके स्वर में सुनिए कजरी।

आकाशवाणी वाराणसी से समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और उनके साथी। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए एक और कचरी।

आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार थे मोहन सिंह यादव और उनके साथी। मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। अब से कुछ ही पल बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं कीजिए कुछ पलों का इंतजार और सुनिए समाचार।

0: बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन।

0: स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
0: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाई और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य

0: समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।

0: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की सातवीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
3: नूरे रोशनी से भरा है समा, यहाँ वहाँ हर शू है

वैसे तो ये गली है गुमनाम सी, एक आबाद ये तेरा मकां, मेरे बाग में खिली हुई एक कली नहीं, तू आ जाए तो यही है गुलिस्तां।

टकराई तो तेरी आंखें देखी मैंने, मेरा दिया सूरमा लगा है यहां, आ तुझे अपनी दुनिया से मिला दूं, दर्पण में देख ले यही है मेरा जहां।

मोहब्बत करना भी जरूरी है और जताना भी। वादे अगर किए हैं किसी से तो उसे निभाना भी जरूरी है।

अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़क।

प्यार के हर एहसास को बयां करती आज की कहकशां में आपने सुना अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और अदनान सामी को। इसी के साथ ही आज की कहकशां यही मुकम्मल होती है। तो बस अब आप ही के सारे सरा सलीम को इजाजत दें। हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नई कहकशां के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।

0: आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा, प्रस्तुति सना सलीम की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराब से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारे शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी। मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरए में 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। आरंभिक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स ठीक शाम 4 बजे से दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीतिका ओनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं और आपसे वादा करती हूं कि हर बार की तरह आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके दिलों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि हमारे लिए कोई कहीं मुस्तैद है, कार्यरत है, जो अपनी जान को अपनी हथेलियों में लेकर चलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश की सेवा में सर्वत्र अपना सर्वत्र न्योछावर किए आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर रात। आपसे साझा करना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शिव शंकर कुमार जी, जो इंस्पेक्टर हैं जनरल ड्यूटी सहस्त्र सीमा बल में, आजकल गैंगटॉक में कार्यरत हैं और इन्हें गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात आज के अंक की ये है कि ये सीधा गैंगटॉक से यहाँ पहुँचे हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपको अपनी यात्रा से अवगत कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। हर सिपाही हर ऑफिसर की अपनी यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा का गंतव्य सिर्फ देश सेवा होती है। तो देश सेवा को समर्पित हमारे आज के मेहमान शिव शंकर कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शिव शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार SSB की ओर से आप सभी श्रोताओं को जय हिंद कहना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। SSB का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुरक्षा को बनाए रखना है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे SSB के सभी कार्मिक दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपना काम कर रहे हैं। SSB हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर के साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का।
0: जी इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी, आपने जिस तरह से व्याख्या की यहाँ पर SSB की, इससे ये साबित होता है कि आप देश के साथ साथ अपनी सेवाओं से, सेनाओं से कितना प्रेम करते हैं। और आज आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सहस्त्र सीमा बल का, उन तमाम सैनिकों का, उन तमाम अधिकारियों का जो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी, आप कहते हैं ना कि अपने आत्म मनोबल या आत्मबल तो हमें हमारी सेवाएं सेनाएं देती हैं, पर हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं वो भी सेनाओं के माध्यम से काबिल तारीफ है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो नन्ना मन
1: जी,
0: लंबी उड़ान, छोटे छोटे पंख, आपका जो जीवन है खासतौर पर आपके बचपन की बात की जाए तो किस तरह के बच्चे थे आप? क्या शैतान थे और पढ़ाई में कितना

0: मन लगता था, कैसा माहौल था घर में?
1: बचपन तो मेरा बिहार में सीतामढ़ी जो एक बाजपट्टी पटदौरा गांव है वहाँ बीता है। मेरा परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा माहौल था और हमेशा इनकरेजिंग मिलता था काम करने के लिए। शरारती बच्चे तो थे ही, लेकिन हमारे परिवार से हमें मेहनत और अनुशासन के प्रति हमेशा सजग रहने को सिखाया गया है,
0: जी
1: और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का भी एक हमारे पिताजी सिखाते थे कि पूरी ईमानदारी से कोई भी काम को करना है तो पूरी ईमानदारी से करना है, लगन के साथ करना है। तो वो हमारे अंदर हमेशा के लिए रह गया और आगे चल के हमारे जब भी हमारे प्रोफेशन लाइफ में भी वो काम किया है।
0: जी कहते हैं कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे विकास में। आज हम जो कुछ भी हैं अपने परिवार की वजह से, और जो भी संस्कार आपको प्राप्त हुए
1: जी
0: वो
1: जी
0: देश सेवा में निहित है, नज़र आ
1: जी
0: रहे हैं। और आज जब आप अपनी वर्दी पहने यहाँ FM रेनबो के स्टूडियोज, आकाशवाणी के स्टूडियोज में बैठे हैं,
1: जी
0: तो आपके माता पिता जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, घर
1: जी जी
0: परिवार वाले सुन रहे होंगे, वो इस बात की मिसाल दे रहे होंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जो बेड़ा उठाया है, काबिले तारीफ है। तो शिव कुमार जी, आप शिव शंकर कुमार जी, आप हमें ये बताइए कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको देश सेवा में इस पथ पर चलना है, और SSB ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया?
1: मेरे लिए वर्दी हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी की प्रतीक रहा है। मन में हमेशा से इच्छा थी कि फौज के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसा काम करे जो देश और समाज में अपना योगदान भी दे सके। इसी
0: जी
1: सोच को जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तो सुरक्षा बल में जाने का फैसला किया। उसके बाद SSC की फॉर्म आई, उसमें मैंने पास करके और फिर SSB को ज्वाइन किया है। एक SSB एक ऐसा माध्यम रहा, एक ऐसा अवसर रहा जिसके देश सेवा के साथ साथ देश सेवा करने का पूर्ण मौका मिला।
0: जी और ये मौका आपके जीवन में एक सुखद अनुभूति लेकर आया, वर्दी पहनना, फिर देश सेवा में जितने भी ऑपरेशंस में आप कार्यरत रहे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये अनुभूति ज़रूर हुई होगी कि अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता तो ये मौका मुझे कहाँ मिलता, कहाँ मैं अपने देश का परचम लहरा पाता। तो ये सौभाग्य की बात है कि सेनाओं ने आपको चुना, और सशस्त्र सीमा बल आपको बल दे रहा है आज, और आप इस बल से देश सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के उपरांत आपने एग्जाम क्लियर किया, क्या प्रक्रिया रही, कैसे पहुंचे, और कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अटेम्प्ट्स में आपको ये हासिल हुआ? क्या कुछ और भी करने की सोच रहे थे साथ साथ, या सिर्फ ये था कि फौज में ही जाना है?
1: ये मेरी पहली अटेम्प्ट ही थी और मैंने 2012 में ये SSB को ज्वाइन किया था और इसकी जो फॉर्म थी SSC के थ्रू आई और 2010 में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था। पूरी भर्ती जो होती है वो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, सारी प्रक्रिया के चयन करने के बाद, पास करने के बाद मेरा चयन हुआ था। इसमें फिजिकल टफनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस की भी परीक्षा होती है इसमें। अगर वो सारा चीज़ आप पास कर जा रहे हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है। उस समय एक ही बात मन में था कि अगर मौका मिले तो मैं भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ ये करूँगा।
0: जी तो वो कौन सा वर्ष था जब आपका चयन हुआ, और चयन होने के बाद जब ये खबर आप अपने परिवार तक ले गए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: ये 2012 में हुआ है। 2012 में हमें SSB ज्वाइन करने का मौका मिल गया था। परिवार के लिए तो ये बहुत खुशी और गर्व का विषय था, लेकिन एक छोटा सा वो भी था कि फौज में जा रहा है तो फौज में घर से दूर रहेगा। उनके मन में एक था कि घर से दूर रहेगा, लेकिन उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ चलो जो भी करना है अपने मन से ईमानदारी से करते रहना है, मुश्किल परिस्थितियों में भी ड्यूटी करना है तो उसके लिए भी परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमेशा साथ किया है, दिया है। और
0: उसी साथ के चलते आप आज यहाँ तक पहुँच गए,
1: जी
0: सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का सफर आपने पूरा किया।
1: जी
0: इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी बताएं कि जब आप घर परिवार के साथ साथ, जब जिस जगह से आप संबंध रखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार दोस्त, उन तक जब ये बात पहुंची कि हमारा दोस्त या हमारा परिवारजन अब SSB ज्वाइन करने वाला है, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप जैसा बनना चाहते हैं, हम भी SSB ज्वाइन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं देश की?
1: सभी के लिए, ये हमारे गांव वालों के लिए भी ये गर्व की बात था कि हमारे बीच का एक

0: का कोई जाके फौज में भर्ती हो रहा है, वो सबके लिए गर्व की बात था। और एक तो आइडल बन ही जाता है गांव समाज के लिए कि हाँ कोई
1: जी
0: भी जाए तो वो उसके जैसा बनना है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जैसा ही बनना है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करे, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी पर ऐसा तो ज़रूर होता होगा कि जब आप अपने घर जाते होंगे तो आपके अपने आपके दोस्त, आपके परिवारजन, एक जमावड़ा सा लग जाता होगा और कहते होंगे, सुनाओ ना कुछ किस्से, कहानियाँ, क्या कुछ होता है SSB में, जहाँ जिस बटालियन के साथ जाते हो, क्या कुछ खास हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे जो देश के जो वीर हैं ना, कैसी ज़िंदगी जीते हैं। हम आम जनमानस बस आपकी किस्सों को दोहराते हैं, लेकिन जब आपकी ज़ुबानी इनको सुनते हैं ना, तो गर्व से सीना फूल जाता है। आज जिस कार्यक्रम के माध्यम से भी जितने लोग हमें सुन रहे हैं, संदेश आने हम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासा रहती है कि कैसा जीवन जीते हैं। ये तो जानते हैं कि मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी ऐसी होती होगी जो हम नहीं जी पाते। और यही कारण है कि आज देश के युवा, भावी पीढ़ी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा होता होगा आपके साथ?
0: ये होता है, फौज ऐसी संस्था है जो एक जॉब नहीं देती, एक लाइफ देती है,
1: जी
0: ये पूरा जीवन देती है हमको। आप अगर आप इसमें जीना चाहते हैं तो पूरी लाइफ जो है वो देती है। और किस्से कहानियाँ तो चलते रहते हैं, घर पे जाते हैं तो जो भी किस्से कहानियाँ हैं वो चलते रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं कि कुछ तो बताएं फौज में कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब तो चलते रहता है। और ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी, और ड्यूटी जब नहीं रहती है तो हम लोग भी रिलैक्स होके रहते हैं और
1: जी
0: काम करते हैं।
1: जी लेकिन लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपने मेहनत की, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ। और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर किया, हर चरण में आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उसके उपरांत तो ट्रेनिंग जो एक अहम हिस्सा रही, तो ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा, कहाँ ट्रेनिंग हुई, और क्या आप ये मानते हैं कि इस ट्रेनिंग ने आपको पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था सेवाएं देने के लिए?
0: मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 2012 में हुई, जब मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए CTC सलोनीबारी असम में है वहाँ गया। वहाँ से एक सिविलियन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फौज में आने के लिए, फौजी बनने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 13 महीना का जो बेसिक ट्रेनिंग था उसमें। इससे ये होता है कि हमारा सिविल लाइफ और फौज के लाइफ थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब फौज में कैसे किससे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारा चीज़ को वो 13 महीने के अंदर में हमें हमारे इंस्ट्रक्टर लोग ने, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया, फिजिकल टफनेस से लेके मेंटल टफनेस तक सभी चीज़ को हमने सिखाया गया उसी दौरान। उसके बाद हमारी पोस्टिंग आगे होती चली गई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सबसे पहले 53 बटालियन फालाकाटा में हुई, जो इंडो भूटान बॉर्डर को मैन करती है, वहाँ पे ड्यूटी करती है। उसके बाद 2018 में मेरी पोस्टिंग सीतामढ़ी 51वीं बयानी है, वहाँ पे जो इंडो नेपाल बॉर्डर को ड्यूटी करती है, मैन करती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी हो गई। वहाँ से होने के बाद हमें 2021 में ANO जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस है वो 16वीं वाहिनी जमुई बिहार में हमारी पोस्टिंग हो गई, वहाँ पे हमने दी। और फिलहाल मैं SSQ गैंगटॉक में अपनी सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑफिस ड्यूटी के रूप में दे रहा हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम यही कहेंगे कि ये सफ़र, ये कारवां यूं ही जारी है और जारी रहेगा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हमारे शिव शंकर कुमार जी, और आज इंस्पेक्टर के रूप में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इनके सफ़र के बारे में और चर्चा करेंगे। और आप सभी श्रोता जो संदेश भेजना चाहते हैं, 9868107070 इस नंबर के माध्यम से आप संदेश भेजिए और अपनी भागीदारी निभाइए। इस बात का प्रतीक चिन्ह बनिए कि हम देशवासी अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सेवाओं के माध्यम से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नित्य प्रति कार्यरत रहते हैं और जिनके लिए सिर्फ देश सेवा ही सर्वोपरि है, उनको सलाम करते हैं संदेश के माध्यम से।

0: लक्ष्य प्राप्ति किसे कहते हैं ये तो हम अपने फौजियों से ही सीखते हैं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति प्रेम ने हमेशा इन्हें लक्ष्य प्राप्त करना ही तो सिखाया है। और इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से हमारे देश भारत ने हमेशा परचम लहराया है, अपने फौजियों की वजह से और इनके देश प्रेम की वजह से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार सहस्त्र सीमा बल से। और जैसा कि मैं साझा कर चुकी हूँ कि आजकल ये गैंगटॉक में कार्यरत हैं और सीधे गैंगटॉक से यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, यही इनकी कर्तव्य निष्ठा है, यही देश प्रेम है। और सहस्त्र सीमा बल ने जैसे ही इन्हें कहा कि आपको जाना है और पहुँचना है, देखिए ये तुरंत कल चले और आज यहाँ पहुँच गए। आपसे ये जानना चाहते हैं हम शिव शंकर कुमार जी, एक लंबा सफ़र तय करता है एक फौजी, 2012 में आपकी नियुक्ति हुई, आप सब इंस्पेक्टर बने, फिर 2018 में इंस्पेक्टर बने, ये सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। पदोन्नति अपने आप में हमें सुखद अनुभूति कराती है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारी लेकर आती है।
1: यह सफ़र मेरे लिए बहुत सीखने वाला रहा है। 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ था, उसके बाद एक प्रक्रिया है, अगर वैकेंसीज हो और आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक हो तो आपको एक डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देती ही देती है
0: जी।
1: उसके साथ जब 2018 में मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया था,

0: रैंक बढ़ने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती है
1: जी।
0: इस दौरान मैंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी है उनसे भी बहुत कुछ सीखा और जो हमारे सहपाठी है कार्मिक है उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक सिविलियन होकर आकर फौज में ट्रेनिंग के बाद अगर ऑन ग्राउंड जो ड्यूटी करता है उसको सीखने के लिए जो पहले से जो भी काम कर रहे हैं उनसे सीखने को मिलता है वो हमारे दिनचर्या में शामिल हो जाता है।
1: जी जी, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज़िंदगी को जीने लगते हैं और लगने लगता है हम इसी के लिए बने थे और जिसके लिए बने थे आज उसके लिए कार्यरत है और आपकी रग रग में शामिल हो जाता है। शायद सेनाएं आपको इस तरह से तैयार करती हैं कि बस आपके रगों में आपके खून में सिर्फ सेनाएं और देश प्रेम रह जाता है। जी अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जब आप सेनाएं ज्वाइन करते हैं, जब आपने SSB ज्वाइन की तो निश्चित परीक्षण के अंतर्गत आपको फिर आगे पोस्टिंग्स मिली, लेकिन प्रशिक्षण का सिलसिला फौज में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता, वो तो बरकरार रहता है ना? तो क्या आपको लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स आपने बीच बीच में की या करते आ रहे हैं इसने आपका निर्माण किया है, इसने आपको पूर्ण रूप से एक फौजी होना भी सिखाया है और कैसे चुनौतियों से लड़ा जाए ये भी बताया है?
0: प्रशिक्षण ही किसी को बेटर बनाती है। पहले हमने बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन हमको कोर्सेज कराती रहती है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज हो और ट्रेनिंग भी हो वो कराती रहती है। जैसे आपको प्रमोशन भी मिलता है तब भी आपको कोर्सेज करने पड़ते, कोर्सेज क्वालिफाई करने पड़ते तब आपको प्रमोट किया जाता है। उसी तरह से हर कोर्स के लिए हर ड्यूटी के लिए अलग अलग कोर्सेज है जो आपको प्रोफेशनली साउंड बनाने के लिए कराए जाते हैं। जिस प्रकार से कोई भी कोर्सेज हो, जंगल वारफेयर का कोर्सेज हो, जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग कराना हो, जैसे बॉर्डर पे ड्यूटी करना है, इंडो नेपाल बॉर्डर को कैसे मैन करना, इंडो भूटान बॉर्डर को कैसे मैन करना, उसकी भी ट्रेनिंग, ये अनवरत जारी रहता है। और फौज मैंने पहले ही बताया एक लाइफ है, तो इसमें अनवरत जारी रहेगा कोर्सेज कराना, जिससे कि आप और टफ हो सके और अपने काम को अच्छे तरह से कर सके, इसीलिए ट्रेनिंग हमेशा जरूरी है।
1: जी, और ना शब्द तो कभी होता ही नहीं आपकी डिक्शनरी में, क्योंकि सेनाएं आपको हमेशा यही सिखाती हैं,
0: ना तो है ही नहीं,
1: इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस जैसा कि हमने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति ही आपका अल्टीमेट गोल है, जिस काम को आपको दिया गया उसको आपको पूर्ण करना है, यही आपकी जिम्मेदारी है
0: और हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाते भी है।
1: जी निभाते हैं। और एक बात व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी, एक फौजी होने के नाते घर भी है, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं और एक तरफ देश प्रेम है, तो इस कहते हैं कि एक फौजी के मन में कभी कोई जंग नहीं होती उसके वक्त, उस मतलब परिवार और देश को लेकर उसके मन में सिर्फ देश प्रेम होता है कि बस अब देश के लिए समर्पित है, माना कि घर है, परिवार है, भावनाएं हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से अपने जीवन में समाहित करते हैं?
0: थोड़ा मुश्किल है लेकिन परिवार का अगर सहयोग मिलते रहे तो ये सब आसान हो जाता है। परिवार और नौकरी के बीच में ये सामंजस्य बैठाना, अगर परिवार से साथ मिलता है तो ये एकदम आसान हो जाता है। सुरक्षा बल की नौकरी में कई बार परिवार के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं उसमें भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, तब भी एक परिवार का जो सहयोग होता है अगर वो मिलते रहता है तो सारा आसान हो जाता है।
1: जी, सब कुछ आसान हो जाता है घर परिवार से आपको ये कहा जाए कि जाओ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो और जाओ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, क्योंकि हमारा सम्मान तुम्हारे सम्मान में है, क्योंकि जब जब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तब तब हम गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा जो है देश प्रेम में है और देश के लिए कार्यरत है। तो यही तो जज्बा है जो हमें हर वक्त अपनी ओर आकर्षित करता है, और कितने ही युवा ये चाहते हैं कि हम फोर्सेस ज्वाइन करें और देश का नाम ऊंचा करें। तो मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम है।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी यात्रा, इन्हीं की जुबानी सुनने में जो सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ना जाने कितनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन रहा है। बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप सभी के नाम हम जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी यात्रा जिसको हम सुनने के लिए इतने ललायत हैं, कहीं भी छूट न जाए, दिल चाहता है इनसे बार बार बहुत सारे प्रश्न किए जाएं। जितना हमें आपके बारे में पता लगा है कि आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई बार तैनात किया गया है, आपको तैयार किया गया है, कभी महसूस होता है कि अगर आपको ये कार्यभार ना सौंपे गए होते तो आप जो आज हैं वो आज ना होते।
1: जी, ऐसे क्षेत्रों में सबसे जरूरी होता है हमेशा सतर्क रहना। हमारी अपनी ट्रेनिंग और जो हमारे ऑफिसर्स के निर्देशों के अनुसार हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। टीम के साथ साथ एक टीम के भावना के रूप में काम करते हैं, टीम का कम्युनिकेशन एक दूसरे के प्रति ठीक रहना चाहिए और एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
0: जी, कोई भी काम आसान हो जाता है, लेकिन आसानी से पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होता है और आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्यों का पालन करने की जो आप में गुण निहित हैं, इसकी वजह से ही आपको शायद ऑपरेशन जोश के लिए भी चयनित किया गया, जहां पर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर दमखम स्थापित किया और उस कहते हैं कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया।
1: जी, ये 8 जून की घटना है, 8 जून 2022 की घटना है। ये मेरी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। ये बिहार राज्य के जमुई ज़िले की घटना है, जिसमें हम एक ऐसे सफल ऑपरेशन के बारे में आज बात

0: करेंगे, जिसमें हमारी टीम ने एक हार्डकोर नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया था
1: जी।
0: ये सफलता मेरी नहीं पूरी टीम की सफलता है, जिसमें आपसी तालमेल हो, सही समय पे जो मिली सूचना को परिणाम था कि हमने ये ऑपरेशन सफल किया। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम ने कार्रवाई की और नक्सल को न्यूट्रलाइज किया था। इस तरह के ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, एक पूरी टीम होती है, पूरी टीम का योगदान होता है इसमें। आसूचना मिलने प्राप्त करने से लेके ऑपरेशन को अंजाम देने तक एक सभी कार्मिकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी ईमानदारी और साहस के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया था। SSB इस ऑपरेशन के बाद जमुई ज़िले में बहुत सारे नक्सलियों ने अपने आप इस ऑपरेशन के बाद खुद ब खुद सरेंडर किया सुरक्षा बलों के सामने आकर।
1: उनके मन में इतना डर
0: इनके मन में डर भर बन गया था और जस्ट एक सप्ताह के अंदर ही जो ये ऑपरेशन होने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आके खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि SSB के महत्वपूर्ण योगदान के कारण जम्मू ज़िला आज पूर्णतः नक्सल फ्री घोषित हो चुका है। इसमें SSB का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी टीम को भी, सभी साथी कार्मिकों को उनके साहस और मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए बधाई देना चाहूँगा। सही समय पे सही कार्रवाई करना एक ऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी होता है, जो हमारी टीम ने उसको किया
1: जी। एक बात और पूछना चाहूंगी, जब इस तरह के ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते हैं, एक टीम का हिस्सा बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सहकर्मियों से भी आप बहुत कुछ सीखते होंगे।
0: काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि ये टीम को लेकर काम करने की पूरी टीम काम करती है, जिसमें हम लोग हमेशा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो एक टीम के साथ काम करते हैं। इसमें किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती, सभी की अलग अलग जिम्मेवारियाँ बांटी हुई होती है और वो सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं। एक सूचना मिलने से लेके ऑपरेशन करने तक सारी की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है और जब ये ऑपरेशन सफल होता है तो वो सभी के लिए उतना ही गर्व का बात है जितना अगर मैं क्या कहूँ इसको, सभी के लिए गर्व की बात,
1: हर मेंबर के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, हर मेंबर को उसका कार्यभार सौंप दिया जाता होगा और ये कहा जाता होगा कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करने पर जिस तरह से कमांड दिया जाएगा आपको उसी वक्त डिसीजन लेकर कि आपको उसको सुचारू करना है, आप उसी वक्त अपनी बुद्धि से, अपनी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है हमें निर्णय लेने में मदद करती है, कमांडर आपका आपको निर्देश देता है, उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं उस काम को करने।
0: ग्राउंड में आने के बाद सभी को ऑन ग्राउंड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, लेकिन पहले जो भी प्रशिक्षण मिला हुआ है उसको अपने निहित करते हुए और काम को आगे किया जाता है। हमेशा जो भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले सभी का काम को बता दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सभी अपने अपने काम को बखूबी करते हैं और उसके कारण हमें सफलता मिलती है।
1: बहुत खूब। अच्छा, यहाँ पर आकर आपको लगता होगा जब आप ऑपरेशंस का हिस्सा बनते हैं और जैसा कि हमने कहा कि आप बहुत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने कार्य भी किया है, तो जो प्रशिक्षण आपने हासिल किए हैं, जो आपको प्रशिक्षण दिए हैं सशस्त्र सीमा बल ने, वो आपको लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ कि आपको वो ट्रेनिंग मिली, नतीजतन आप आज इतने सारे ऑपरेशंस का हिस्सा बन रहे हैं।
0: ट्रेनिंग सबसे जरूरी है, जितना टफ ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा मिलेगा ग्राउंड में काम करने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा काम करेगा। ट्रेनिंग सबसे जरूरी चीज़ है, टफ जितना ट्रेनिंग होगा उतना फ़ायदा हमको ग्राउंड में काम करने के लिए मिलेगा
1: जी। और कहते हैं कि कुछ विपत्ति जो है ना बताकर आती है लेकिन कुछ अनदेखी होती हैं, उसके लिए आपको सशस्त्र सीमा बल किस तरह से तैयार करता है?
0: हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करके रखता है। फौज ऐसा ही है कि जो कठिन परिस्थिति जब भी आए तब भी एक फौजी खड़ा रहता है वहाँ पे, उसी के लिए फौज रहती ही है
1: जी। जैसा कि हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आपको आपके ऑपरेशन जोश के लिए, जिसमें आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र को नेस्तनाबूद किया, और अगर हम गलत नहीं हैं तो जितने भी आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनको

0: भी आपने जब्त किया आखिरी में, और आपको 2024 में गैलेंट्री पदक से भी नवाजा गया, वो अनुभूति किस तरह की थी? सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक अलग अनुभूति, लेकिन सम्मान मिलना आपके कार्य के लिए वो उससे भी बड़ी बात, उस वक्त कैसा महसूस हुआ?
1: ये पल तो मेरे लिए गर्व और इमोशनल इमोशनल भी था। जब देश की सेवा करते हुए कोई सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। इस सम्मान को केवल अपना सम्मान नहीं मानता हूँ, ये पूरी टीम का सम्मान है। और मेडल आगे भी आगे अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीक़ों से करने की
0: जी
1: प्रेरणा देता है, और आगे हम लोग भी और मेहनत से और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल आपने सही बात की कि जब मेडल प्राप्त होता है सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आप अपने ऊपर और लेते हैं, और ये कहते हैं अपने आप से स्वयं से बात करते हैं और कहते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर कर दिखाएंगे, है ना, और जितनी भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उनका भी निर्वाह करते हुए चलेंगे, मन में बात जरूर आती होगी।
1: हमेशा कोई भी ऑपरेशंस होता है तो उसके बाद में उसकी समीक्षा होती है कि इस ऑपरेशन को और कितने बेहतर किया जा सके, तो आगे आगे नेक्स्ट ऑपरेशन में उसको और उससे बेहतर किया जा सकता है, और करते हैं हम लोग।
0: जी बहुत बढ़िया। अच्छा, गैलेंट्री पदक के अलावा भी आपको और कई सम्मान दिए हैं SSB ने, उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: तो उनके अलावा बहुत सारे सम्मान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हमारे डीजी महोदय के द्वारा भी डीजी सिल्वर डिश से नवाजा गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अगर ड्यूटी कर रहे थे वहाँ भी रिवॉर्ड्स मिले हैं, कमेंडेशन भी मिले हैं। हर सम्मान एक खुशी देता है और साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि और इससे बेहतर करना है कुछ।
0: जी इससे बेहतर करना है, और देश की, चाहे फौज की बात की जाए तो चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे वो बाहम सुरक्षा की बात हो, और हर फोर्स अपना अपना कार्य करता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है वो आंतरिक करते हैं, जो बाहम के लिए जिम्मेदार हैं वो बाहम सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश, है ना, सिर्फ देश ही याद आता है और बस देश ही समझ में आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं।
1: सबसे पहले देश है, देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल आपने ठीक बात कही, देश के लिए तो मर मिटने तक के लिए तैयार रहते हैं, जब अपने घरों से निकलते हैं और फौज ज्वाइन करते हैं, और फौज ज्वाइन करने के बाद तो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि घर भी लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, और शायद यही आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है, यही जो आपका प्रेम है देश के प्रति, हम देशवासियों को हमेशा ये प्रेरित करता है कि आप हमें जहाँ भी मिले हम आपको सलाम करें और कहें आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम नहीं।

0: और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं सशस्त्र सीमा बल से इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार, जिनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में खूक उठ रही होगी आपकी, और आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी फोर्सेस ज्वाइन करें और देश के प्रति अपने सम्मान को, हर कोई व्यक्ति ना यही चाहता है कि देश के लिए काश हम कुछ कर पाएं, और सेना ज्वाइन करना हर किसी के दिल में हुक ज़रूर मारता है। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी से, इनकी यात्रा हमने इनकी ज़ुबानी सुनी। शिव शंकर कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अलग अलग बटालियंस में आप तैनात रहे, आप अलग अलग बटालियंस का हिस्सा रहे, क्या कुछ कार्यभार आपको सौंपे गए और वो कार्यभार आपको कितने अच्छे लगे, वो तो आपकी मुस्कान से पता लग रहा है कि आपके लिए हर बटालियन दिल के करीब रही है और बहुत सारी यादें देखी गई है हर बटालियन, तो कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपनी बटालियंस के बारे में?
1: मेरे लिए हर वाहिनी अपने अलग अलग यादें हैं, हर वाहिनी की अलग अलग यादें हैं, वहाँ पर काम करने वाले साथी जो भी रहते हैं वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपना सारा सुख दुख जो भी है उस

0: के इर्द गिर्द ही बुनते हैं। हम एक टीम की तरह, एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी जो भी कार्य किए गए हैं, वो साथियों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल हमेशा याद रहते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमने सभी बॉर्डर पर काम किया है। इंडो भूटान बॉर्डर सबसे पहले हमने किया, इंडो भूटान बॉर्डर का सीनेरियो अलग, फिर इंडो नेपाल बॉर्डर पे आया, इंडो नेपाल बॉर्डर का भी अलग ड्यूटी। उसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम किया 16 बटालियन में, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली थी वहाँ पे। इसके बाद अभी हम पूरी तरह से ऑफिस ड्यूटी में है, गैंगटोक में पोस्टेड है, तो सारा काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसी ड्यूटी के दौरान।
1: जी, ये बहुत प्यारी बात होती है कि जब आपको अलग अलग ऑपरेशन, साथ ही साथ अलग अलग तरह के कार्यभार संभालने का मौका मिलता है अपने कार्यकाल में, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप फोर्सेस को उतनी अच्छी तरह से जान पाते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है क्या कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, और यही शायद बहुत खूबसूरत बात होती है। अच्छा, ये बताइए कि हर बटालियन या हर जब जिस बटालियन में आप रहे हैं, तीन तीन साल के अंतराल के बाद आपकी पोस्टिंग बदली होगी, एक बटालियन छोड़ने के बाद, एक पोस्टिंग छोड़ने के बाद कितना दुख होता है?
0: ये काफ़ी दुख होता है, कभी लगता ही नहीं कि वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाए। एक फैमिली बन जाती है, लगता है कि यहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर ले, यहीं पे अपनी ड्यूटी कर ले, लेकिन एक प्रोसेस है और उसको हमको मानना पड़ता है। जब ऊपर से आदेश आ गया कि आपकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई है, वो बिना हिचक के हम लोग अपना बैग पैक करते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए।
1: जिस तरह जो भी निर्देश दिया जाता है उसी के तहत आप अपने आप को मुस्तैद करते हैं, फिर नई जगह में पहुंचते हैं और फिर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब किसी टीम में रहते हैं तो आपसी प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आप जब उस यूनिट को, उस पोस्टिंग को छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो तीन साल का समय कहते हैं कि बहुत आत्मीयता लेकर आता है, सारे सुख दुख एक दूसरे के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपनी यूनिट के सहकर्मियों के साथ आप साझा करते हैं। पार्टी वार्टी करते हैं?
0: पार्टियाँ होती रहती है।
1: अच्छा,
0: ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि फौज एक लाइफ देती है, आप उस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। ड्यूटी है और वो लाइफ भी देती है जो जिसके लिए हम लोग भर्ती होते हैं।
1: जी, अच्छा, आप कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे कि अगर आप यूनिट में ना भी हों, अपने घर गए हों और आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो तो वो खुशी आपकी यूनिट में भी मना ली जाती है।
0: फौज में ये परंपरा भी है कि अगर घर में खुशी है तो फोन कर दो और यहाँ पे पार्टी पहले हो जाती है।
1: अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर अपने हिस्से की पार्टी वहाँ कर लेते हैं, आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। जब आपके साथ है यूनिट में है तब भी एंजॉय कर रही हैं, तब भी मना रही हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रही हैं, और अगर दूर भी हैं बस बताने भर से वो आपकी खुशी में शामिल हो जाते हैं।
0: फौज की ड्यूटी 24 घंटे की ड्यूटी है, हमेशा सुख दुख उन्हीं के साथ बांट के रहना है, तो उनके लिए ही सारा चीज़ समर्पित रहता है, हम अपनी टीम के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है।
1: अच्छा, ये बताइए कि जब घर आप जाते हैं तो घर से वापस जब अपनी यूनिट जाते होंगे तो माँ, घर परिवार वाले कुछ डब्बे खाने पीने का सामान देते होंगे, आपके साथ बंद कर जरूर जाता होगा।
0: वो सबके लिए होता है,
1: वो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक महीने का सामान है तो एक महीने में खत्म होना है, या वो उससे पहले खत्म हो जाता है?
0: नहीं, वो सबके लिए होता है, जो टीम है हमारी वो सबके लिए होता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि जाते साथ ही सब डब्बे खाली हो जाते होंगे।
0: जरूर जरूर,
1: और बड़ी चाह होती है, अरे घर से आए हो, ये बताओ क्या लेकर आए हो,
0: हमेशा रहती है चाहत रहती है कि कुछ तो लेकर आया होगा।
1: अच्छा, ये बताइए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन आपके साथ ऐसा कौन है जो साथ चलता है, जिसको आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कोई ज़िंदगी में है, जिससे बात कर रहे हैं, जो चल रहा है साथ, कोई है ऐसा?
0: एक टीम रहता है, वो हमेशा हमारे साथ चलती है।
1: और रेडियो?
0: रेडियो भी है, वो रेडियो एक लाइफ का हिस्सा है, वो हमेशा आपको चलते रहता है, साथ साथ चलते रहता है, दिनचर्या में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपको बताते रहती है। हाँ, हमेशा
1: ऐसा महसूस होता है किसी की आवाज़ कानों तक पहुंच रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, अपने काम में मग्न हैं, लेकिन अपना साथी, वो साथी तो है ही, सहकर्मी तो है ही, लेकिन रेडियो भी साथ साथ है। अच्छी, बताइए कि त्यौहार कैसे मनाते हैं आप, सारे त्यौहार मनाते हैं वहाँ?
0: अगर हम यूनिट में मौजूद है तो त्यौहार हमेशा मनता है और एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट के साथ।

0: सभी चीज होते के साथ मनता है। अगर अगर घर पे नहीं है, अगर यूनिट में है तो यूनिट में बहुत धूमधाम से त्योहार मनता है, जिससे किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं इस बार घर नहीं गया हूँ। और बहुत धूमधाम से मनता है
1: जी। और खेलने का शौक कितना है आपको?
0: हम लोग उतने बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन खेलते हैं, सभी गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सभी खेल में रुचि है और सब समय मिलता है, खेलते रहते हैं हम लोग।
1: और खेल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति और आपके विकास, आपके शारीरिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, जो हमेशा आपको सजीव रखता है।
0: फौज की नौकरी करने के लिए सबसे जरूरी है फिटनेस, और अगर आप खेल अपने नियमित हिस्सा रखते हैं तो आपकी फिटनेस भी बनी रहती है।
1: जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आपको इतने सारे दोस्तों ने सलाम भेजा है, जय हिंद सर लिखकर भेजा है, यहाँ पर दोस्त ने अपना नाम नहीं लिखा, माफ़ी चाहूँगी दोस्त, नाम लिखते तो शायद आसान हो जाता मेरे लिए पढ़ना। संदेश टू सोल्जर्स का नियमित श्रोता हूँ, तिरुचिरापल्ली विजय कुमार ने आपको नमस्कार भेजा है, और सेना नायक इंस्पेक्टर शिव शंकर जी को जय हिंद वंदे मातरम इन्होंने कहा है, इनकी राष्ट्र सेवा के लिए हमारा हृदय पूर्ण नमस्कार आप स्वीकार करें।
0: सभी को जय हिंद मेरा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों संदेश भेजने के लिए। अच्छा यहाँ पर एक संदेश आया है, नाम इन्होंने नहीं लिखा पर ये कहा है कि अगर हम फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे, हम जब डिग्निटी की बात होती है, साहस की बात होती है, समर्पण की बात होती है, ये आम जनमानस को भी हम कैसे प्रेरित करें कि वो भी अपने जीवन में आत्मसात करें, कैसे उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगियों में शामिल करें।
0: डिसिप्लिन अपने अंदर से आता है, डिसिप्लिन के लिए कहीं से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगी।
1: और वैसे भी हमारे फौजी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जब भी हम इनकी गाथा सुनते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आप घर घर तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब हमें मिल जाता है। संदेश हमारे पास आया है यहाँ पे यश शिंदे का, और इनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जय भारत वंदे मातरम इन्होंने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। जय हिंद लिख भेजा है मोनू सेठ ने, और इन्होंने लिखा है, मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। बहुत खूब। अगला संदेश हम तक पहुंचा है यहाँ पर शबनम का, बीके कॉलोनी से, और बीके दत्त कॉलोनी से, और ये कह रही हैं कि जब आपको प्रथम ड्यूटी मिली और ये इन्हीं का गांव है जहाँ आपको मिली, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप गैंगटॉक से सीधा यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज़ पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर अदा कर रहे हैं सभी दोस्त। मंसूर का यहाँ पर संदेश आया, जय हिंद। यहाँ पर पीयूष ने संदेश भेजा है, चेतन पटेरिया ने ग्वालियर से संदेश भेजा है, यहाँ पर समय कम है, संदेश पूरे नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हम शिव शंकर कुमार जी को आपके संदेशों से जरूर अवगत कराएंगे। संदेश भेजने वालों में हमारे पास बिजनौर से संदेश है, और ये है चरण कुमार का, और बहुत बहुत शुक्रिया दो संदेश भेजने का। शिव शंकर कुमार जी संदेश भेजा है इन्होंने, शिव पांडे लखनऊ से संदेश भेज रहे हैं, मोनिश इद्रिस ने बिलासपुर से संदेश भेजा है। संदेश भेजने वालों में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, हम शुक्रिया देना चाहते हैं आपका। नितिश कुमार ने हमें संदेश भेजा है, देखिए आपसे प्रेम करने वालों की फहरिस्त बहुत बड़ी है, और हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को जानकर कि हमारे फौजियों से कितना प्रेम किया जाता है। अनिल कुमार का चंपावत उत्तराखंड से संदेश आया है, संदेश भेजने वालों में पंडित स्वार्षद संदेश भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। संदेश भेजने वालों में से एक क्लास 12th के स्टूडेंट भी हैं जो एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अजय अहिरवार ने संदेश हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आप सभी का संदेश भेजने के लिए। और इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी जो SSP में कार्यरत हैं, आजकल गैंगटॉक में हैं, आपने जिस तरह से व्याख्या की, और आप SSB का नाम ऊंचा कर रहे हैं, आप देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। संदेश भेजने वालों में और भी कई दोस्त हैं, KKS रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश आया है यहाँ पर, दोस्त आपका नाम है KKS रायपुर CG इन्होंने लिखा है, क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, आप आम जनमानस में सैनिक जैसी कर्तव्य निष्ठा और श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा कैसे दी जा सकती है, इस पर हमने भी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर किसी का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ तो आप सभी से माफी चाहूंगी। अवधेश कुमार का औरंगाबाद बिहार से संदेश है, सुमन कर्माकर का सोनितपुर असम से संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश हम तक पहुँचे।

0: इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पेक्टर शिव कुमार जी का जो कार्यरत हैं गैंगटॉक में और सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आने के लिए और हमें SSB से जुड़ी हुई इतनी सारी बातों से अवगत कराने के लिए।
1: धन्यवाद सभी को, सभी को जय हिंद। मैं देश के युवाओं से भी इतना कहना चाहूँगा, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सभी जो भी देश के युवा है, देश के सेवा और सुरक्षा बल में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपनी फिटनेस को और अनुशासन को बनाए रखिए, आप जरूर चयनित होइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके लिए कि अपनी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात है। सभी को जय हिंद।
0: जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार जी SSB से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं धरती के गीत कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमाऊनी गीत। कलाकार हैं बिमला वोरा और साथी।

श्रोताओं, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं धरती के गीत कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुमाऊनी गीतों पर आधारित। और कार्यक्रम के अंत में आज के कलाकार हैं विमला वोरा और साथी आप प्रस्तुत कर रही हैं ये गीत, कुमाऊनी गीत।

श्रोताओं, धरती के गीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुमाऊनी गीत, और कलाकार थीं विमला वोरा और साथी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 और 15 सेकेंड। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: हौसला रखो, वक्त बदल जाएगा, हर अंधेरा एक दिन ढल जाएगा।
1: मेहनत करते रहो बिना थके, तुम्हारा सपना जरूर सच हो जाएगा।
0: नमस्कार दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं आपकी रेड दोस्त मोनी
1: और मैं वैष्णवी
0: करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, देंगे आपको कुछ रोचक जानकारियां, साथ ही साथ आपको सुनाएंगे कुछ मनोरंजक गीत भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
1: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
2: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
0: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे।
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
7: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
9: दोस्तों, आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे पारसी समुदाय के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व खुरदा।

0: साल की। खुर्दा साल को पारसी धर्म के महान पैगंबर जरथुस्र के जन्म दिवस के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन पारसी समुदाय के लिए केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि सत्य, सदाचार, समानता और अच्छे कर्मों को अपने जीवन में अपनाने का अवसर भी है।
1: पैगंबर जरूस्त्र, जिन्हें अंग्रेजी में जोरोस्टर कहा जाता है, प्राचीन ईरान के महान आध्यात्मिक शिक्षक और पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने मानव जीवन को अंधविश्वास और बुराइयों से दूर रखते हुए सत्य तथा नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके विचारों में मनुष्य के अच्छे चरित्र और कर्मों का विशेष महत्व दिया गया था।
0: बिल्कुल, जरथुस्र की शिक्षाओं का सबसे प्रसिद्ध संदेश है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। इसे पारसी धर्म के मूल सिद्धांतों में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचार रखने चाहिए, अपनी वाणी का प्रयोग सत्य और सद्भाव के लिए करना चाहिए तथा अपने कर्मों से समाज और मानवता का भला करना चाहिए।
1: खुर्दात साल के अवसर पर पारसी समुदाय के लोग विशेष प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अग्नि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और अपने अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। घरों की साफ सफाई और सजावट की जाती है। परिवार और मित्र एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं तथा पारंपरिक रूप से विशेष भोजन और पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता और दान पुण्य को भी विशेष महत्व दिया जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, किसी भी पर्व की वास्तविक सुंदरता केवल उसके उत्सव में नहीं है बल्कि उसके संदेश में छिपी होती है। खुर्दात साल हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य की पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हो, हमारी वाणी में प्रेम और सच्चाई हो तथा हमारे कर्म दूसरों के लिए उपयोगी हो तो हम अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं।
1: जरूस्त्र की शिक्षाओं में सत्य और असत्य के बीच चुनाव को विशेष महत्व दिया गया था। मनुष्य के सामने जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे समय में सत्य, विवेक और नैतिकता का साथ देना ही मार्ग है। यही शिक्षा आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी।
0: बिल्कुल, खुर्दात साल हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी याद दिलाता है। पारसी परंपरा में अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्वों को विशेष सम्मान दिया जाता है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति को स्वच्छ रखना और उसके प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
1: आज जब हमारा समाज तेजी से बदल रहा है और जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा तथा भाग दौड़ बढ़ रही है, ऐसे समय में जरूस्त्र का संदेश हमें सरल लेकिन गहरी सीख देता है। हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपनी वाणी से किसी को दुख न पहुंचाएं और अपने कर्मों से समाज में अच्छाई फैलाएं।
0: बिल्कुल, खुर्दात साल पारसी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवित रखने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। भारत में पारसी समुदाय ने अपनी मेहनत, ईमानदारी, उद्यमशीलता और सामाजिक सेवा के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में पारसी समुदाय की उल्लेखनीय भूमिका रही है।
1: इस पावन अवसर पर हमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच में प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। भारत की खूबसूरती ही इसी विविधता में है, जहां अलग अलग धर्मों और समुदायों के त्यौहार मिलजुल कर हमारी साझा संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए इस खुर्दात साल के अवसर पर हम पैगंबर जरूस्त्र की शिक्षाओं को केवल शब्दों तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम अच्छे विचारों को अपनाएं, अपनी वाणी में मधुरता और सच्चाई रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें।
1: यही खुर्दात साल का सच्चा संदेश है, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छाई को अपनाना और मानवता की सेवा करना। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, जानकारियां भी बहुत हो गई, अब बारी है एक गीत की।

0: इसी के साथ दोस्तों, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे आधुनिक भारत के निर्माण, तकनीकी विकास, युवा शक्ति और संचार क्रांति को बढ़ावा देने वाले नेताओं में गिने जाते थे। उनकी जयंती को देश में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
1: राजीव गांधी का राजनैतिक जीवन परिस्थितियों के कारण बहुत कम उम्र में शुरू हुआ था। वे ऐसे समय में

0: सक्रिय राजनीति में आ गए जब देश में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुजर रहा था। वर्ष 1984 में उनकी माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। उसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने। लगभग 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने के कारण वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में शामिल हुए।
1: राजीव गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण युवा और आधुनिक भारत के निर्माण पर केंद्रित था। वे मानते थे कि आने वाले समय में विज्ञान, तकनीक और आधुनिक शिक्षा के देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी सोच के साथ उनके कार्यकाल में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के विकास को प्रोत्साहन मिला। भारत में कंप्यूटर और आधुनिक संचार तकनीक के विकास विस्तार की दिशा में उनके दौर में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।
0: आज हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं को तकनीकी को अपने जीवन का दैनिक हिस्सा मानते हैं, लेकिन जिस समय देश में कंप्यूटर तकनीक अपने शुरुआती दौर में था, उस समय इस व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। राजीव गांधी ने आधुनिक तकनीक को भारत के विकास से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी कारण उन्हें भारत में तकनीकी और दूरसंचार क्षेत्र के विकास की शुरुआती प्रक्रिया से दौड़कर देखा जाता है।
1: श्रोताओं, राजीव गांधी की सोच का एक महत्वपूर्ण पक्ष था युवाओं पर विश्वास। उनका मानना था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति है युवा आबादी। युवा यदि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रचनात्मक कार्यों से जुड़े तो देश में तेजी से प्रगति कर सकता है। इसी सोच ने शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर उनकी नीतियों को प्रभावित किया।
0: वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसमें शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने पर जोर दिया गया। शिक्षा को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार मानते हुए इससे अधिक व्यापक बनाने के दिशा में प्रयास किए गए।
1: राजीव गांधी के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना भी था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से यह परिवर्तन किया गया। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। इस कदम ने भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को मजबूत किया।
0: राजीव गांधी का जीवन केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उनके कार्यकाल में देश को कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ नीतियां और निर्णयों को लेकर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। लोकतंत्र में किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल उनके उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, राजीव गांधी का जीवन हमें यह बताता है कि समय के साथ देश की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और नेतृत्व को उन बदलावों के अनुरूप नई सोच विकसित करनी होती है। उन्होंने भारत को तकनीकी रूप से सक्षम और आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके विचारों में विज्ञान, शिक्षा और तकनीक को विकास का महत्वपूर्ण माध्यम मिला गया।
0: राजीव गांधी की जयंती हमें यह संदेश देती है कि राष्ट्र का विकास केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। देश के विकास में युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, किसान, श्रमिक और आम नागरिक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदार और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे तो देश की प्रगति और मजबूत हो सकती है।
1: बिल्कुल, आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएंगे, समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे, शिक्षा और ज्ञान को महत्व देना तथा विज्ञान और तकनीक का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों से करेंगे।
0: दोस्तों, अब बारी है आज के स्पेशल सेगमेंट मेरी पसंद की, जिसमें आज हम आपको हमारी पसंद का एक गीत सुनाते हैं। तो सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों फटाफट रेडी हो जाइए कॉपी और कलम लेकर, क्योंकि अब बारी आ गई है शब्दों के ज्ञान को बढ़ाने की और जानने की कि क्या है हमारे आज के नए शब्द। तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है अभ्युपगम, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, मान लेना या किसी बात को सहमति देना। और अगर आप इस शब्द से वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, दोनों पक्षों ने न्यायालय के निर्णय का अभ्युपगम किया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं उसने अपनी गलती का अभ्युपगम करते हुए क्षमा मांगी।
1: और इसी के साथ हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है ट्रांजिएंट, विच मीन्स टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड और लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, और हिंदी में कहें तो अस्थाई, क्षणिक, थोड़े समय के लिए रहने वाला। एंड यू कैन यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस लाइक द सैडनेस वॉज ट्रांजिएंट एंड सून डिसअपीयर्ड। फ्रेम कैन बी ट्रांजिएंट बट गुड कैरेक्टर लास्ट फॉर एवर। इसी के साथ दोस्तों जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। हम बात कर रहे हैं आज के QOTD यानी क्वेश्चन ऑफ द डे की, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमने आपसे कल क्या पूछा था और उसका सही जवाब देने वाले विनर्स कौन बने हैं। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, उत्तर पूर्व चावल महोत्सव ग्रेन्स ऑफ हेरिटेज का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, जिसका सही जवाब है नागालैंड।
0: और इसका सही जवाब देकर जो विनर्स बने हैं उनके नाम है चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गुलू कुसुमबाई और दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, वहीं ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से हैं प्रेमलाल वर्मा, निकेश नंदनी हर्षिता और ममताबाई वर्मा।
1: वूहू, आप सभी को सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है कि राहवीर योजना किस मंत्रालय की पहल है, राहवीर योजना किस मंत्रालय की पहल है।
0: और इसका सही जवाब आप हमारे इंस्टा आईडी UTIR वाराणसी पर या फिर हमारी मेल आईडी UTIRvenus@gmail.com पर भेज सकते हैं। जब तक आप अपने आंसर भेजते हैं तो सुनिए ये गीत।

0: दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अपने वर्तमान में जीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए।
1: लेकिन हम अपने बीते हुए वक्त को तो भूल ही जाते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या किया था और क्या वह चीज है जिससे हम अपने आने वाले समय में उससे सीख ले सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे हम अपने इतिहास में क्या कुछ खास घटित हुआ था जिससे आप सीख ले सकते हैं, आइए जानते हैं। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला सत्र कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में, आयोजित किया गया था।
0: आज ही के दिन 1897 में रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता, अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की।
1: और आज ही के दिन 1913 में फ्रांस के एल्डो पेगोट पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पायलट बने। और आज ही के

0: 1981 में केरल के मालाबार में मोपाल विद्रोह की शुरुआत हुई।
1: 20 अगस्त 1951 को उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की।
0: दोस्तों, ये तो थी इतिहास से जुड़ी जानकारी। अब बारी आ गई है हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात की, जी हाँ, रोजगार की। तो आज की रोजगार सूचना में हमारे दोस्तों के लिए ये है कि रेल भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियरिंग JEE पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और यह भर्ती 4029 रिक्तियों के लिए की जा रही है।
1: RRB आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: और अगर आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 1 जनवरी 2027 तक 33 वर्ष होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक गीत का।

0: दोस्तों, जाते जाते हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ हमारे भविष्य को भी बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नई स्किल्स यानी नया कौशल सीखना।
1: आज के समय में तेजी से बदल रहा है तकनीक, शिक्षा, रोजगार और संचार के क्षेत्र में हर दिन नए बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में केवल पुरानी जानकारी के भरोसे आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं है, हमें समय के साथ नई चीजें सीखनी और अपने क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज के दौर में नई स्किल सीखना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने नए नए कौशल को अपने उज्जवल भविष्य की एक सीढ़ी बनाते रहिए। हम फिर मिलेंगे युवाणी के किसी अगले कार्यक्रम में।
1: मैं थी मोनी
0: और मैं वैष्णवी।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से रैली होगा। आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम प्रमोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास आ उद्यमशीलता विभाग और ई समाज कल्याण विभाग के कार्ययोजनन के समीक्षा कई हैं। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार आईटीआई का पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिस तथा ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि आईटीआई और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने आज ही समाज कल्याण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र लेकिन अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों का बैठकी आज नई दिल्ली में भइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान का रक्षा मंत्री सिंजिरो काइजुमू के सह अध्यक्षता में भइल बैठकी में समुद्री सुरक्षा के मजबूत कैले, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ावा देवे और रणनीतिक भरोसा बढ़ौले पर चर्चा भइल। दोनों मंत्री लोग समुद्री सुरक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर दस्तखत कैले। श्री सिंह कहले कि एशिया का दुई गो प्रमुख लोकतंत्र भइले के नाते भारत और जापान पे शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित कैले का बढ़हन जिम्मेदारी हो। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेन मिश्रा आज अयोध्या में बतौले कि मंदिर परिसर में ज्यादातर निर्माण कार्य 30 सितंबर ले पूरा हो जाई। वहां के जानकारी देली कि एकरे बाद खासी तौर से ऑडिटोरियम और संग्रहालय का कार्य चलत रही। श्री मिश्रा कहले कि संग्रहालय का निर्माण सबसे बढ़हन चुनौती हो।

0: 20 गैलरी बनावल जाई, जेमे आधुनिक इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिया से श्रद्धालुअन के मंदिर परिसर और भगवान राम के जिंदगी से जुड़ल प्रसंगन के दिव्य एहसास करावल जाई। गैलरी नंबर 7 में मंदिर परिसर के कई गो मंदिरन आ निर्माण का वर्चुअल दर्शन करावले का योजना हो। गैलरी नंबर 17 में भगवान राम के वन गैले आ नदियन से जुड़ल प्रसंगन के आधुनिक तकनीक से दिखावल जाई। झांसी का 140 साल पुरान परीक्षा बांध के अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली चुकल हो। सिंचाई आ जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ऐतिहासिक बांध के विश्व धरोहर सिंचाई संरचना WHS के रूप में मान्यता देले हो। एगो रिपोर्ट।
1: सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर को फ्रांस के मार्सिले में आयोजित होने वाले 26वें ICID अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 77वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान परीक्षा बांध को WHIS पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। झांसी में बेतवा नदी स्थित परीक्षा बांध ने 140 वर्षों से बुंदेलखंड की सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बेतवा नहर प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी की आपूर्ति करती है। परीक्षा बांध लगभग 1174 मीटर लंबा और नदी तल से लगभग 16.8 मीटर ऊपर स्थित है। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी हो। मौसम विभाग अगला 3 दिन ले प्रदेश के पूर्वी आ पश्चिमी हिस्सन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बरखा का संभावना जतौले हो। उधर बैराजन से पानी छोड़ने से कई जिला में बाढ़ जैसन हालत हो गई हो। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक बनारस में गंगा का जलस्तर करीब 68 मीटर दर्ज कल गई हो। ओजा अगला आदेश ले नाये चलौले पर रोक लगा दिया गई हो। प्रयागराज जिला में गंगा आ जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ी रहल हो। वहीं लगातारे हो रहल बरखा के नाते मिर्जापुर में बीतल राती 2 कच्चा मकान ढहले से 3 जने के मौत हो गई। प्रशासन मृतकन के परिजन लोगिन के 44 लाख रुपया देले के घोषणा कैले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत तत्पश्चात हम कल के कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको देंगे। पहले इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी विदुषी एन राजम, आप इनका वायलिन वादन सुनेंगे। रात 10:00 आपकी पसंद कार्यक्रम जो होगा फिल्म संगीत पर आधारित आप सुनेंगे। रात 9:30 पर अंजुमन गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत मोहन सिंह यादव और साथी के गाय लोकगीत के अलावा किसान भाई अन्य कार्यक्रम भी सुनेंगे। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर और रात 8:15 पर रसमाधुरी में सुना जा सकता है। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। और अब कल दिनांक 21 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नज़र। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर, प्रातः 7:31 एवं दिन में 12:45 पर कलाकार होंगे पंडित शिवनाथ मिश्रा, आप इनका सितार वादन सुनेंगे। स्वास्थ्य पत्रिका का समय रहेगा रात 10:00 का। अंजुमन गैर फिल्मी रचनाओं पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 लता मंगेशकर और जगजीत सिंह कलाकार होंगे। दिन में 12:30 पर आराधना विश्वकर्मा सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन डॉक्टर जांगर राम भारद्वाज से बातचीत के अलावा अमलेश कुमार पांडे से लोग

0: गीत भी सुन सकते हैं किसान भाई। इनके गाए लोकगीत सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर भी सुने जा सकते हैं। हम आपको याद दिला दें, 6:30 पर किसान भाई कृषि जगत कार्यक्रम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर डांगर राम भारद्वाज से बातचीत के अलावा अमलेश कुमार पांडे से लोकगीत भी सुन सकते हैं। अमलेश कुमार पांडे के गाए लोकगीत सुबह 9:50 के अलावा दिन में 1:45 पर भी सुने जा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर आज की बात, शाम गजल, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत युवा साथी सुनेंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 2:30 पर होगा। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहनें गीत संगीत के अलावा अन्य कार्यक्रम भी सुनेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दिन में 12 प्रसारित होगा। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप पर आधारित आप सुनेंगे सुबह 11 से। झनकार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह 10 से सुना जा सकता है। मधुरिमा का समय रहेगा सुबह 8:45 का। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण सुबह 6:40 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा बापू की आत्मकथा का धारावाहिक पाठ का प्रसारण प्रातः 6:25 पर। भक्त संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना प्रातः 6:10 पर और खेती की बातें कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 6:05 पर किया जाएगा। विषय होगा अमरूद का बाग लगाएं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे अमरूद का बाग लगाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। तो ये थे कल दिनांक 21 अगस्त को दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी जो आप सुनेंगे कल हमारी सभा में। उन प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 अर्थात 1242 kHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। STD कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे फिल्म कभी अजनबी थे। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ें थीं और रचना देव कोहली का था और संगीत विजय सिंह का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म अपनापन का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शोधों का रिकमेंड में आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं और रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत जापान देशाभ्यां रक्षा सहभागितां दृढीकर्तुं सहमतिः प्रकटिता। उभावपि देशौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय च व्यवस्था सम्मति पत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। गृहमन्त्री अमित शाहः अन्ताराज्यिक विवादान सुरक्षा विकास विषयान् च चर्चयितुं तमिलनाडु राज्यस्य कोवलम नगरे 31वें दक्षिण क्षेत्रीय परिषदुपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। झारखंड उच्च न्यायालयः जेपीएससी नियुक्तिनां खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनस्य च निरस्तीकरणादेशे स्थगनादेशं प्रायच्छत्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रतिरोध प्रदर्शनानि तीव्रीभूतानि। पाक शासनतंत्रं च जनाक्रोशेन त्रस्तं वर्तते। अपि च भारतस्य त्रिसा जौली अथ गायत्री गोपी चन्दः च बीडब्ल्यूएफ विश्वस्पर्धायाः महिलायुगलद्वन्द्वे प्रागुपान्त्यचरणे प्रविष्टवत्यौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदिल्ल्यामद्य भारत जापान रक्षामन्त्री स्तरीयोपवेशनं सम्पन्नम्। अस्योपवेशनस्य सहाध्यक्षतां भारतस्य रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च तस्य जापानी समकक्षीयः शिंजिरो कोइजुमी अकुर्वताम्। अस्मिन् उपवेशने सामुद्रिक सुरक्षायाः दृढीकरणं, मेक इन इंडिया इत्यस्यान्तर्गतं रक्षा प्रौद्योगिक्याः सहैव रणनीतिक विश्वासस्य च विस्तारः इति प्रमुख विषयेषु गभीरा चर्चा संजाता। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा सहयोगाय एकस्मिन् व्यवस्था ज्ञापन सन्धौ हस्ताक्षरम् अकुरुताम्। स्वकीये भाषणे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् एशिया महाद्वीपस्य द्वौ लोकतान्त्रिक देशौ भारत जापानौ क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां समृद्धिं च स्थापयितुं महत्तरम् उत्तरदायित्वं निर्वहतः। श्रीसिंहः प्रतिपादितवान् यत् सामुद्रिक मार्ग सुरक्षायां समाह्वानानि वर्धन्ते, अतः नौ परिवहन स्वातन्त्र्यं, वायुयान संचालन स्वातन्त्र्यम् अथ च अबाधित वैध वाणिज्यं सुनिश्चेतुं क्रियमाणाः प्रयासाः केवलम् आर्थिक आवश्यकता एव न, अपि तु एकम् अनिवार्यं रणनीतिक दायित्वमपि अस्ति। सः प्रतिपादितवान् यत् हिन्द महासागरस्य प्रशान्त महासागरस्य च सुरक्षा परस्परं दृढतया संलग्ना वर्तते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य महासागरीय दृष्टौ सहैव जापानस्य मुक्त एवं प्रकट हिन्द प्रशान्त उपक्रमे च निकट समन्वयः सम्प्रति पूर्वस्मादपि अधिकम् आवश्यकम् जातम्।
1: हम ये दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी महोदयः कुमामोटो प्रान्ते आगतेन भूकम्पेन प्रभावितान् जनानालक्ष्य भारतेन प्रकटीकृतां संवेदनां प्रशंसितवान्। सः जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षाबलस्य पोते दुरापन्नायाम् आपत्कालीन चिकित्सा स्थितौ भारतस्य नौसेनायाः सहायतायै कार्तज्ञं प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्त वक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ। चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां 31वें दक्षिण क्षेत्रीय

0: नवदिल्ल्याम् आयोजितायां BWF विश्वप्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचरणे प्रविष्टवत्यौ इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: जय जवान
1: जवान जय
0: जय किसान।
1: किसान।
0: गौरी बहन,
1: हाँ सत्तू भैया,
0: देखा हो आज ना अपने कह जाओ कि किसान बाड़ी कार्यक्रम में हमने लोग आ गए नहीं जाए। और एगो बात हम कहब कि जैसे अपने गाड़ी घोड़ा अपने शरीर का या कहल जाओ कि जौन आपन सामान है
1: हाँ
0: लोग ओकर बीमा करावे ना, ताकि कोनो नुकसान हो अगर
1: हाँ हाँ
0: तो ओके हमने के सरकार भरपाई करे, या जवनी कंपनी से कहल जा
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: बीमा करैले हैं ऊ भरपाई करे, ताकि हमने के जौन व्यापार है चाहे अपन शरीर काहे न कहल जा सके ओकर सुरक्षा रह सके, और ओकर एगो गारंटी रहे कि भाई अगर हमार कोनो चीज़ नुकसान होता तो ओकर हमके कहल जाओ कि उचित मुआवजा मिले।
1: हाँ, जैसे स्वास्थ्य कभी होला या गाड़ी को होला तो कर लोग प्रीमियम भरलन महीना महीना, या
0: बिल्कुल।
1: जो जैसन भी हो तो, ताकि उनकर जौन भी नुकसान हो से उनकर भरपाई हो सके।
0: यही मैंने देखा अपने ना कि खेती किसानी में भी है जो आपन फसल है ना गौरी बहन, भाई देखा इहू का भी सरकार बीमा करत है, और वो ये बदे करत है कि क्यों ना आफत विपत अगर किसानी में आ गई अपने पंचायती में अपने कह लो कि
1: खेती
0: खेती
1: किसानी
0: बाड़ी
1: में
0: में, तो भाई ओकर सुरक्षा कल जा सकेला, ओकर उचित मुआवजा वो किसान के दे सकेला, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति बनल रहे।
1: जैसे किसान जोन हैं खेती किसानी करके अपन आमदनी कमालन, अपन आजीविका चलावलन, तो
0: बिल्कुल।
1: अगर उनके खेती किसानी जोन फसल है उनमें कोनो प्राकृतिक आपदा आ गल, बाढ़ आ गल, सूखा पड़ गल, या कोनो जंगली जानवर से ज़्यादा क्षति होकर नुकसान हो गल, तो उनका पूरा आमदनी भी चौपट हो जाए खेती के साथ साथ।
0: बिल्कुल। और भाई आमदनी का बात कहलूँ ना, तो भाई हमने का तो खेती किसानी करे वाला मनई है, और कहल जाओ कि जब आपन लागत लगेला अपन खेत में फसल लगल रहेला, तो देखो हर खेती करे वाला किसान भैया उनके ई उम्मीद रहेला कि भाई हमार जोन अनाज जोन पैदा हुई ओके अपनी ठीक से घर में ले आई, हमार साल भर का ऐसे खर्ची खुराक है और 2 पैसा उसे लाभ भी कमाए के है। तो भाई अगर ओकर हम लोग सुरक्षा ना कर जा तो भाई ई तो अपने ना कमी हुई।
1: ए बदे जोन प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना है, ए बदे लावल गल है कि जोन फसल मतलब बाढ़ से, सूखा से, या कोनो प्राकृतिक आपदा से किसान लोग का फसल नुकसान होता ओकर भरपाई हो सका,
0: बिल्कुल।
1: ओकरे बदे बहुत मतलब बहुत थोड़ा मतलब उसका जोन भी दाम हो फसल का ओकर 1.5% 2% ओकर प्रीमियम भर के अपन
0: माने कि
1: फसल का,
0: मामूली रकम
1: हाँ
0: बस
1: बहुत
0: दे करे
1: मामूली
0: के होई
1: रकम दे
0: और
1: के
0: ओकर हमनी का लाभ ले सके नहीं
1: ले
0: जा। तो
1: सकन।
0: देखा भाई हम तो कहब ना गौरी बहन की कभी भी कोनो काम करा, और हम ही नहीं वो अपने बड़ बुजुर्ग पुरनिया लोग भी करा ना, कि कोनो काम करे जा तो ओकरे पीछे सुरक्षा का गारंटी लेके और कह के ओकर व्यवस्था जा। काहे से कि देखा पहले की भी लोग में कहल गई है कि भाई हमने का जब खेती बाड़ी भी करी जा ना, तो कुछ अनाज पानी पहले ही से सतर्कता से रख ले रहल जाए, कि भाई जब ये प्रीमियम और ये कुल बीमा ना रहे हम तब तो बात करते हैं गौरी बहन कि भाई लोग ना पीछे से भी कि भाई कोनो दिक्कत आ गई अपने फसल में कोनो अनाज में तो ओके पिछला भी अनाज रख ले रहा कि भाई ओके खाइल जी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतत गई और हमने का आधुनिकता की तरफ चलत गई नहीं जा, और सरकार की तरफ से तमाम लाभ वाला कह लो कि योजना हमने के आ गई, तो भाई ओकर लाभ तो लेबे के ना चाहिए।
1: यही से ही योजना जोन है बीमा योजना फरवरी 2016 से चालू भरल, इनमें 3 तरह का प्रीमियम, जैसे रबी का फसल पे, खरीफ फसल पे और बागवानी फसल पे।
0: अच्छा हो।
1: रबी फसल पे 1.5% है, खरीफ फसल पे 2% और बागवानी पे 5%।
0: मैंने कि पास इतनी दे दबा तो तुहार फसल बीमा सुरक्षित हो जाई और आपका फसल या बागवानी सुरक्षित रही तो

0: भाई एके अपनावे के चाही, और ऐसे कह लो कि अपने फसल के, अपने बागवानी के, कह लो कि अपने खुद के भी सुरक्षा रखे के चाही, और सुरक्षा कैल जा सकेला। तो भैया लोग एक अपने ही हैं, आ गौरी बहन देखो आगे भी बात बत कही कल जी, लेकिन है कुछ सने सना, उस सुन लिया जा और उसके बाद बत कही हो।
1: सुनवा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: गौरी बहन, देखा अभी हमने का ना जो फसल बीमा योजना के बात करत नहीं जाए, देखा वह संदेशों में भैया उनके सुनावल गई। और ए बहन देखा, जब अपन सुरक्षा का बात होले ना अपने खेती बाड़ी का या अपने कहलो कि शरीर का, तो ओमे भाई मौसम का भी बड़ा योगदान रहला, वह को भी बड़ा जानकारी लेके चले के होला। तो हम तो कहम ना कि आज का जो मौसम का उतार चढ़ाव हुआ ओके थोड़ा बता दे।
7: आज के देखा वाराणसी के मौसम में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, और चंदौली का 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, और गाजीपुर का 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस,
6: मिर्जापुर का 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहल और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहल। ऐसे ही जौनपुर में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहल तापमान और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहल। ए बहन देखा आगे ना अपन जो आज जरूरी बात कही है ना कि मुर्गियन में कृत्रिम उष्मायन और चूजों का हैचिंग है कि कैसे मशीन द्वारा या कह जाओ कि कैसे चूजन के बाहर निकाला जा सकता था आज के आधुनिक युग में। डॉक्टर अनुराधा कुमारी और सतीश कुमार यादव का ये बात बत कही है ना, आओ हमने लोग सुनल जाए और भैया के लोन के भी सुनवाल जाए।
7: सुनवाद
6: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर अनुराधा कुमारी जी, जे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग, दक्षिणी परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बरकच्छा, मिर्जापुर में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि मुर्गियन में कृत्रिम उष्मायन और चूजों की हैचिंग, जो ना के अपनी गवई भाषा में कहल जाला कि भाई मशीन के द्वारा या मशीन की मदद से जो अंडा हुआ उसे चूजा कैसे निकाले के है, तो ये विषय पर डॉक्टर मैडम से हमने का जानल जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मैडम आपका हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
8: धन्यवाद आपका।
6: तो सबसे पहले आप हमारे किसान भैया के ये बताए कि कृत्रिम उष्मायन है का चीज।
8: अंडों से चूजे निकालने की मूलतः दो विधि है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम उष्मायन।
6: अच्छा,
8: प्राकृतिक विधि में जैसा हमारे किसान भाइयों को ज्ञात होगा कि अंडे सेने के लिए मुर्गियां उस पर बैठती हैं, और इस प्रक्रिया में जिस मुर्गी का चयन होता है उसे कुड़क मुर्गी कहते हैं। मुर्गियां लगातार 21 दिनों तक अंडों पर बैठकर अपनी शरीर की गर्मी अंडों को प्रदान करती है। इस विधि में मुर्गियां अपने शरीर के आकार के अनुसार 10 से 15 अंडों को सेती है और तत्पश्चात 21

0: नो में हमें चूजों की प्राप्ति होती है।
1: हुँ.
0: यह विधि उस्मायन की छोटे किसानों के लिए लाभदायक है।
1: हुँ.
0: इस विधि से अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए जो मुर्गी का चयन होता है उसे कुड़क मुर्गी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: अपने फार्म पे आसपास में कुड़क मुर्गी के पहचान के लिए पहचान हम कैसे करेंगे? कुड़क मुर्गी एक देसी मुर्गी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कुड़क मुर्गी नॉर्मली सामान्यतः वो अंडे को उत्पादन नहीं करती है। इस विधि से जो चूजों का उत्पादन होता है वो ज्यादा समय लगता है, मतलब कम समय में हम ज्यादा चूजों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए ज्यादा चूजों की प्राप्ति हेतु हम कृत्रिम उष्मायन अर्थात आर्टिफिशियल हैचिंग मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं।
1: तो ई जोन आप मशीन बताओ थी मैडम, तो इका कहल जाओ कि ऐसे हमार जोन किसान भैया लोग हो, जोन भाई गांव में रहत हुए, या कहल जाओ कि जोन लोग एकर व्यवसाय भी कर चाहत हुए चूजा का, तो ई लोग अपने खुद से एकर कर सके ना?
0: हाँ, हमारे किसान भाई इस कृत्रिम उष्मायन की प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद इसकी मशीन को कैसे, इसका रख रखाव करना है, इस मशीन का संचालन कैसे करना है, किस तरह के अंडों का चयन करना है, इस मशीन के प्रमुख घटकों को समझकर आसानी से इसे एक स्वरोजगार के रूप में अपनाकर अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। उस सारे किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ, भारत वर्ष में 2023 और 24 में अंडा उत्पादन 142 बिलियन था और हमारे यहाँ के मीट का उत्पादन 10 और से 11 मिलियन टन था। अगर हम सिर्फ मुर्गी के मांस की बात करें ये 5 मिलियन टन से ज्यादा था। दिन पर दिन हमारे देश में अंडों और मांस की जरूरत बढ़ते जा रही है। इस जरूरत के लिए हमें ज्यादा संख्या में चूजों की मांग है। हम कृत्रिम विधि से इतनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मशीन का उपयोग करते हैं जिसको कृत्रिम उष्मायन कहते हैं। कृत्रिम उष्मायन के द्वारा हम एक साथ हजारों और लाखों चूजों को प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम उष्मायन में जिस मशीन का उपयोग होता है उसे उष्मायनन या इनक्यूबेटर मशीन कहते हैं। इस मशीन में एक नियंत्रित तापमान आद्रता देकर चूजों की प्राप्ति की जाती है।
1: अच्छा मैडम, जो नहीं हैचिंग होता है ये क्या चीज होला?
0: जब मुर्गी अंडों पर बैठती है कृत्रिम विधि में तो 21 दिन बाद चूजे निकलते हैं। इस चूजे निकलने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया हम कृत्रिम विधि द्वारा करते हैं जैसा कि मैंने बताया इनक्यूबेटर मशीन के द्वारा, तो इसको कृत्रिम उष्मायन कहते हैं।
1: अच्छा मैडम, अगर लोग जोन मशीन की मदद से आप जोन बताओ थे अगर उसे चूजा निकालत हुआ तो इससे उनके क्या लाभ हुई?
0: कृत्रिम उष्मायन से बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूजों को अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि हमारे भारतवर्ष में प्रचलन है कि सावन के महीने में, नवरात्रि के महीने में हम अंडा और मांस का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम अपनी जरूरत के अनुसार जब बाजार में इसकी ज्यादा जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही हम मशीन में अंडे रखेंगे और चूजों की प्राप्ति करेंगे। मीन्स चूजों की सप्लाई का नियंत्रण हमारे हाथों में है। कम समय में हम ज्यादा चूजे प्राप्त करते हैं। कृत्रिम उष्मायन प्राकृतिक उष्मायन के तुलना में जो चूजों की गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है और साथ ही साथ चूजों में कम बीमारियां अपनी माता के द्वारा स्थानांतरित होती हैं।
1: अच्छा, इसमें कुछ तापमान वगैरह का भी कुछ लोन के ध्यान रखे के होती है ना, तो तापमान का हो एकरी बारे में तनी बताएं।
0: मैं सारे किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि इनक्यूबेटर मशीन को चलाने के लिए 5 या 6 घटक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सारे घटकों को एक से एक करके आपको समझाना चाहती हूँ। कृत्रिम उष्मायन में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक उष्मायन में मुर्गियां अपने शरीर की गर्मी को अंडों को देती है और अपने पैरों से अंडों को पलटती है। सेम प्रक्रिया को हम कृत्रिम उष्मायन विधि द्वारा करते हैं। तो तापमान के लिए हम उस इनक्यूबेटर मशीन में इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगी रहती हैं जो पर्याप्त तापमान देती है। अगर हम मुर्गी के अंडों की बात करें जिससे 21 दिनों में चूजे निकलते हैं,
1: अच्छा,
0: तो पूरे 21 दिनों तक एक तरह का तापमान नहीं रहता है। इसके पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि बाजार में जो इनक्यूबेटर मशीन उपलब्ध है वो अलग अलग तरह के होते हैं।
1: अच्छा।
0: इनक्यूबेटर मशीन में अगर मुर्गी के अंडों की हम बात करें तो 21 दिन का उनका अवधि काल होता है। इस 21 दिन के अवधि काल को हम दो भागों में बांटते हैं, 18 दिन और 3 दिन का अवधि काल।
1: अच्छा।
0: 18 दिन तक के अवधि काल में अंडों को खड़ा स्थिति में, चौड़ा सिरा ऊपर की स्थिति में रखते हैं। इनक्यूबेटर मशीन के जिस हिस्से में रखते हैं इनक्यूबेटर मशीन के उस हिस्से को हम सेटर कहते हैं। 18 दिनों के पश्चात एक प्रक्रिया है कैंडलिंग, जिसको मैं आगे चल के बताऊंगी। कैंडलिंग प्रक्रिया करने के बाद अंडों का स्थानांतरण हैचिंग ट्रे में किया जाता है।
1: अच्छा।
0: हैचिंग ट्रे में अंडों को 3 दिन तक क्षैतिज स्थिति में रखते हैं। तो जहां तक हम तापमान की बात कर रहे थे, तो तापमान शुरुआत के 18 दिनों में 37.2 से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और अंतिम के दिनों में थोड़ा कम 36.7 से 37.2 डिग्री रखना चाहिए। और हमें इस तापमान पर बहुत ही

0: अधिक रहना चाहिए। अगर हम तापमान जो मापक हमने बनाया है उससे अधिक रखें तो चूजे समय अवधि 21 दिन से पहले निकल जाएंगे। वो बहुत छोटे, सुस्त और टेढ़ी गर्दन वाले रहेंगे। अगर हम तापमान मापक से कम रखें तो चूजे निकलने में ज्यादा समय लेंगे, साइज बड़ा रहेगा, वो बहुत ही आलसी किस्म के चूजे रहेंगे। इसलिए गुणवत्ता वाले चूजे प्राप्त करने के लिए तापमान के जो मानक है उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए।
1: जिसन की मैडम, आप बतावत हैं कि कई दिन तक उनके हैचिंग कल जाला, तो उमें जो अगर लोग बीच बीच में अगर उनके जांच कल चाहें कि का उमें भ्रूण बनत है, तो उकर कितना दिन के बाद वो लोग जांच करा और वो भ्रूण के कैसे वो लोग देखा कि हाँ इमे अंडा में भ्रूण बन गई है।
0: जैसे कि मैंने बताया कि इनक्यूबेटर मशीन में दो भागों में बांटा गया है, सेटर का पार्ट जिसमें 18 दिन अंडे रहते हैं और नीचे का पार्ट हैचर जिसमें 3 दिन अंडे रहते हैं। जब हम अंडे 18 दिन के पूरे हो जाते हैं तो हैचर में ट्रांसफर स्थानांतरित करने से पहले हम उनकी एक प्रक्रिया करते हैं, हैचिंग। हैचिंग वास्तविक में है क्या, अंडों के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनकी वृद्धि हो रही है कि नहीं, उसका परीक्षण करने के क्रिया को हम कैंडलिंग कहते हैं।
1: अच्छा,
0: कैंडलिंग विधि में हमें क्या करना है कि अंडों को एक अंधेरे कमरे में रखकर उसके अंडों के थ्रू हम अंडे से हमें प्रकाश को प्रवाहित करना है। अगर अंडे के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो रोशनी अंडों से पार नहीं होगी और अंडे अपारदर्शी दिखेंगे। अगर अंडे के अंदर में भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, प्रकाश आसानी से अंडों से पार होता जाएगा, वो हमें लाल और संतरे रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को करने में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है कि हमें कमरे में अंधेरा होना चाहिए। कैंडलिंग की विधि, हम हो सकता है कि एक अंडे की कैंडलिंग एक बार करें, उसे इंडिविजुअल कैंडलिंग कहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैंडलिंग की जो बहुत धीमी प्रक्रिया है और हम जैसा हमने बताया कि बहुत ज्यादा चूजों की जरूरत है, हमारे पास मास कैंडलिंग जैसे षड्यंत्र भी है कि मदद से हम बहुत सारे अंडों को एक साथ कैंडलिंग कर पता लगा सकते हैं कि क्या उनमें भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। जिन अंडों से रोशनी आसानी से पास हो जाती उन अंडों को हम निकाल देते हैं और उन अंडों का स्थानांतरण हम हैचिंग ट्रे में नहीं करते हैं और वह जगह जो खाली हुई उन जगहों पे हम नए अंडे रख सकते हैं जिससे 21 दिन बाद नए चूजे मिलेंगे।
1: अच्छा मैडम, ये बताएं हमारे किसान भैरों के कि जो ने वो ये शब्द आवला ह्यूमिडिटी, ये जो ने कहा जला आद्रता, तो उकर एमे का महत्व होला और कितना ऊ रहे के चाहे।
0: हम सभी इंसानों को, जानवरों को और पक्षियों को और चूजों को जीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए इनक्यूबेटर मशीन में आर्द्रता की भी प्रबंध किया गया है। यह आवश्यक है कि अंडे प्रतिदिन अपने 21 दिन के अवधि काल में 0.5% वजन कम करें। 18 दिनों तक मशीन में आर्द्रता 7% होनी चाहिए और अंतिम के 3 दिनों में 70% होनी चाहिए।
1: मैंने पहला 18 दिन में 60% और अंतिम में 70%,
0: मतलब है कि आर्द्रता लास्ट के अंतिम दिनों में अतिरिक्त होती है शुरुआत के 18 दिनों के तुलना में। आर्द्रता अंतिम के दिनों में अच्छी होने से जो डेवलपिंग भ्रूण है उसकी चोंच गीली होती है, जिसकी वजह से आसानी से कवच छोड़कर 21 दिन के बाद बाहर आ जाता है। अगर हम आर्द्रता को पर्याप्त नहीं रखेंगे तो अपर्याप्त जल हानि होने से बड़े आलसी फूले हुए चूजे पैदा होते हैं।
1: अच्छा।
0: जो आसानी से कवच से बाहर नहीं आ पाते हैं, कई तरह की स्फुटन की समस्याएं होती हैं। अगर जल आर्द्रता मशीन में कम हो तो जल की हानि अधिक होगी और वैसी स्थिति में हमें छोटे निर्जलीकृत कमजोर चूजे प्राप्त होते हैं और इन चूजों में उतनी ताकत नहीं होती कि उछल के अंडे के छिलकों को तोड़कर बाहर आए।
1: अच्छा मैडम, आप कहते हैं कि 21 दिन में चूजे बाहर निकल जाना कुल, तो जैसे चूजा बाहर निकलत हुआ अंडा से, तो उकरी बात किसान भैया लोग का करस, मतलब का कैसे तैयार रहस, कहल जाओ कि भाई जैसे वो बाहर आवस तो उकर खान पान या उनका देख रेख कैसे करें।
0: जब चूजे अंडों से निकलते हैं वो गीले होते हैं और इनक्यूबेटर मशीन से हमें जैसे ही पता चलता है कि चूजे निकले तो हम तुरंत उसे इनक्यूबेटर मशीन से बाहर नहीं रखते हैं।
1: अच्छा।
0: हम 12 से 14 घंटा बच्चों को इनक्यूबेटर मशीन में रहने देते हैं। वहाँ के तापमान के प्रभाव में उनका शरीर सूख जाता है और वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्डनिंग ऑफ चिक। जब ये चूजे थोड़े मजबूत हो जाते हैं तत्पश्चात हम उसे मशीन से निकाल कर एक रोशनी के अंदर में रखते हैं। अब रोशनी की क्यों जरूरत है? रोशनी और आप कह सकते हैं कि हीट सोर्स के पास हम चूजों को रखते हैं।
1: तो अगर रोशनी की बात आप कहते हैं तो क्या लोग उकेरी खाती बल्ब जलावा या कोनो कैंडल वाली जो ना बात कहते नहीं है वो भी जला सके ना?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। गाँव में हमारे पास जब पहले रोशनी की व्यवस्था नहीं थी तो लोग क्या करते थे कि कोयला जला लेते थे और उससे उस कमरे में तापमान पैदा और गर्मी पैदा करते थे। लेकिन दिन पर दिन आधुनिकीकरण के

0: होता गया और नए नए स्रोत जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल हीटर और गैस जैसे उपकरणों का यूज होता गया, जिससे कि चूजों को उनके हैचिंग के कुछ दिनों तक, 4 से 5 हफ्तों तक प्राकृतिक रूप से भी तापमान दिया जाए। यह तापमान देना चूजों के उनके हैचिंग के बाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चूजे जब निकलते हैं तो उनके शरीर का नॉर्मल तापमान 107 डिग्री सेल्सियस होता है और वातावरण का तापमान उससे कम होता है। चूजे जब निकलते हैं उनके शरीर में पंख नहीं होते हैं और उनके मस्तिष्क में जो तापमान नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है वो भी उस समय डेवलप नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों की सबसे ज्यादा चूजों की मृत्यु उनके शुरुआती हफ्तों में होती है। इस मृत्यु को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चूजे मशीन से निकलने के बाद उन्हें 4 से 5 हफ्तों तक एक कृत्रिम तापमान हीट दिया जाए।
1: अच्छा।
0: इस प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया में जिस यंत्र की मदद से हम तापमान या हीट देते हैं उसको ब्रूडर कहते हैं।
1: जैसे कि मैडम आप कहते हैं कि इनक्यूबेटर, ये जो मशीन है, एकर लोग साफ सफाई कैसे रखें और इनमें क्या का ध्यान दें?
0: इनक्यूबेटर मशीन में बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट कैपेसिटी के, अलग अलग कैपेसिटी के मशीन आती है। हमें किस तरह के इनक्यूबेटर का उपयोग अपने हैचिंग के लिए करना है ये हमारे अंडा उत्पादन पर निर्भर करता है। प्राकृतिक उष्मायन में मुर्गियां 10 से 15 अंडों पर बैठती है, लेकिन कृत्रिम उष्मायन की मदद से हम हजारों लाखों चूजे प्राप्त कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इनक्यूबेटर की जो कैपेसिटी क्षमता है वो हजारों लाख की होती है। बाजार में 500 से 1000 से 10000 20000 और लाखों कैपेसिटी की क्षमता की इनक्यूबेटर मशीन आते हैं। किसान भाई अपने अंडों की उपलब्धता के अनुसार, जो भी उपलब्धता के अनुसार, अपने इनक्यूबेटर मशीन का चयन कर सकते हैं। जहां तक इसके रख रखाव का बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम अंडा रखते हैं और उसे चूजा प्राप्त करते हैं, उसकी साफ सफाई के बाद फिर से हम अंडे रखते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि एक बैच से दूसरे बैच के चूजों में बीमारी का स्थानांतरण ना हो। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको धूमीकरण कहते हैं। धूमीकरण सिर्फ मशीन का नहीं, अंडों का नहीं, चूजा का नहीं, कमरे का, सारे का धूमीकरण किया जाता है।
1: अच्छा।
0: धूमीकरण एक रासायनिक विधि है।
1: अच्छा।
0: इस विधि में हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे सामान्यतः लाल दवा कहा जाता है, और फॉर्मेलिन 40% का यूज करते हैं। इसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि हम 2:1 में 2:1 होना चाहिए आपका फॉर्मेलिन का और लाल दवा का 1:1 में हम लेते हैं।
1: अच्छा।
0: जब इन दोनों दवा को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक धुआं पैदा होता है। ये धुआं सारी जगह पे चला जाता है, ऐसा पूरे जगह को जीवाणु और कीटाणु रिक्त रहित बनाता है, जिससे कि बीमारियों का स्थानांतरण एक बैच से दूसरे बैच में नहीं होता है। किसान भाई धूमीकरण करे तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। धूमीकरण करने की प्रक्रिया करते समय किसान भाई मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, क्योंकि यह गैस बहुत जहरीली होती है। धूमीकरण प्रक्रिया करने के लिए हम जब भी किसी कमरे का, इनक्यूबेटर का यूज करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद फॉर्मेलिन डालते हैं। उसके बाद जैसी धुआं शुरुआत होती है हम कमरे से बाहर चले जाते हैं और 30 मिनट तक इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करने देते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट धूमीकरण हो जाता है तब हम कमरे के सारे खिड़की दरवाजे को खोल देते हैं कि कुछ जो गैस यूज नहीं हुई है वो आसानी से कमरे से बाहर निकल जाए। इस तरह से हम अंडों से चूजों और चूजों से फिर से अंडों में होने वाली बीमारी को आसानी से रोक सकते हैं और इनिशियल शुरुआती दिनों में चूजों की जो मृत्यु दर है उनको बहुत ही कम कर सकते हैं।
1: मतलब कि ए विधि से हमारे किसान भैया लोग अगर करें तो मशीन की मदद से भी अंडन से चूजा निकालल जा सकेला। तो डॉक्टर अनुराधा कुमारी जी, आप हमने लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी बहन,
2: हाँ सत्तू भाई,
1: देखा हो बात बत कही तो हो गई कि मुर्गियन में कृत्रिम उष्मायण और चूजों का हैचिंग डॉक्टर अनुराधा कुमारी और सतीश कुमार यादव का ही बत कही रहा ला। आज का मंडी भाव का है तनी भैया लोगों को बता दिया।
2: आज का मंडी भाव में सफेद आलू का जो दाम है 500 से 600 रुपया प्रति क्विंटल है। प्याज का 3500 से 3800 रुपया प्रति क्विंटल। मरचा का 2000 से 2800 रुपया प्रति क्विंटल। कोहड़ा का 1600 रुपया प्रति क्विंटल और टमाटर का 500 रुपया कैरेट।
1: यही यानी खीरा का 1500 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का का जो कह जा कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल। पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। ऐसे ही सूरन 3000 प्रति क्विंटल और लाल आलू जो है ना

0: अपन 900 से 1100 रुपया प्रति कुंटल रहल। और गौरी बहन देखा अब ना तेरे अपने भैया लोग के मन मन साइन करा दिया जा, वो लोग खोजत हुई लोग तो मोहन सिंह यादव और साथी लोग का ना ये गंगा गीत आवाज़ सुनल जा और भैया लोग के भी सुनावल जाए।
1: सुनवा।

0: का कहल चाहत रहल बहन?
1: देखा सत्तू भैया, मोहन सिंह यादव और साथी का गंगा गीत रहला।
0: और जौन आपन अग्रिम विशेष कार्यक्रम है ना, जौन कि
1: हाँ
0: अगला किसानवाड़ी कार्यक्रम में हुई, जौन कि 6:30 पर अपने यही समय पर हुई 22 अगस्त के, तो भाई ओमें प्रमुख आवश्यक खनिज तत्वन की कमी से अपने पशुओं में कौन कौन बीमारी होत हैं और ओकर कैसे बचाव कल जा सकेला, वो खनिज तत्व कैसे कल जो

0: पूर्ति कल जा सकेला। डॉक्टर आशीष कुमार वर्मा और सतीश कुमार यादव का बात बत कही हुई भैया लोग ओके भी सुनी है। और हम कब ना कि अब घड़ी का इशारा होता कि अब हमनी का चलल जा अपनी भैया लोग से आज्ञा लेहल जा। तो पंचो जय जवान
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शाम के चूंकि 7 बज चुके हैं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम की पहली भेंट, आइए सुने हमारा आप साथ साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। कार्यक्रम का ये पहला गीत शैलेंद्र सिंह और हिमलता की आवाज़ें, फिल्म का नाम अखियों की झरोखों से, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और अब ये संदेश, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत।
1: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। STD कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।

श्रोतम कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये गीत जो आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था अजूबा और रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम अमीर गरीब, रचना है आनंद बख्शी की।

शोधम फिल्म अमीर गरीब में किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कुछ खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना हमारे पास चौकी इंचार्ज अकेलवा और थाना लोहता वाराणसी से प्राप्त हुई है। सूचना के अनुसार पिंकी देवी, इनके पति का नाम है सर्वजीत कुमार, इनकी उम्र है 32 वर्ष और पता है परजनपुर पोस्ट मंगलपुर थाना लोहता वाराणसी। ये 5 फुट की हैं और गेहुआ रंग है, हरे रंग की साड़ी इन्होंने पहन रखी है। पिंकी कुमारी दिनांक 3/5/2026 दिन बुधवार को समय लगभग 12 बजे घर से गायब हुई और फिर लौट के नहीं आईं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपके पास हो तो चौकी इंचार्ज अकेलवा और थाना लोहता वाराणसी को आप सूचित कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है, चौकी इंचार्ज अकेलवा इनका मोबाइल नंबर है 9792798598 और थाना लोहता वाराणसी का मोबाइल नंबर है 9454043091। एक और सूचना हमें प्राप्त हुई है और ये सूचना पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया से प्राप्त हुई है। मुनि कुमार पिता शंकर रावत, उम्र 14 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, गोरा रंग है इनका और ये 1/2/2026 को बाहर घूमने के लिए भोर में 3 बजे घर से निकले और उसके बाद वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई भी जानकारी यदि आपके पास हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया और थाना कोतवाली जनपद बलिया को आप सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से।
0: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और विविध भारती वाराणसी, और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुँचाएं।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। कहा, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं मिर्जापुर के मड़िहान तहसील क्षेत्र में बारिश के बीच 2 कच्चे मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्रकूट में बारिश के चलते आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहे। प्रयागराज में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं बारिश के चलते प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते एक पैसेंजर और 3 मेमो गाड़ी को झूसी स्टेशन से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस को प्रयागराज रामबाग के प्लेटफॉर्म 5 से चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO सुमित कुमार ने बताया कि पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थिति के सामान्य होते ही ट्रेनों का संचालन रामबाग से दोबारा शुरू हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं।
1: अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील, और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो।
0: मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा नदी, बाराबंकी, अयोध्या और तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ और जलभराव की स्थिति के बीच सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। अयोध्या में 283 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट वितरित की गई, साथ ही लोगों को नदियों और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ITI को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ ही अप्रेंटिसशिप और ऑन जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ITI और उद्योगों के बीच निरंतर संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग केंद्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्रों का संचालन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों की उपलब्धता को प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में सुव्यवस्थित संचालन के लिए व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों से जुड़ी सुस्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और एक सोसाइटी के गठन

0: की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधा और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र वृद्धजनों के आवेदनों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराने, साथ ही योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को और बढ़ाने पर जोर दिया। योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत दौरे पर आए जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने ताजमहल की स्थापत्य कला और खूबसूरती को करीब से देखा। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। श्री जयवीर सिंह ने कहा कि जापान और उत्तर प्रदेश के उद्योग, सांस्कृतिक धरोहरों, तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के नजदीक आकर उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।
2: आज हमारे जापान से महामहिम राज्यपाल जी, वहाँ के कमांडर साहब, उनका पूरा परिवार आज उत्तर प्रदेश की सार्थक यात्रा पे आया हुआ है। आज ताज के दीदार किए हैं, आपके सामने उन्होंने अभिव्यक्ति देकर के इसकी प्रशंसा करने का काम किया है। और हमारे गवर्नर साहब का मानना है कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है और एक मित्रवत संबंधों को लेकर आगे बढ़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश दौरे पर आया जापानी प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल की भेंटवार्ता प्रस्तावित है। इन मुलाकातों के जरिए दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय संवाद होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा आज अयोध्या में समिति की बैठक में शामिल हुए। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा संभाला जा रहा ऑडिटोरियम और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की योजना है।
3: इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है, जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा।
0: आकाशवाणी लखनऊ का FM केंद्र FM रेनबो आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में FM रेनबो का प्रसारण शुरू हुआ था। इस अवसर पर आज शाम को आकाशवाणी केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में श्रोताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मिर्जापुर में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। प्रयागराज में रामबाग स्टेशन पर जलभराव के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कार्य योजना की समीक्षा। कहा, रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से भी जोड़ा जाए कौशल विकास। भारत दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज आगरा में किया ताजमहल का दीदार। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दौरे से मिलेगी जापान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को नई ऊंचाई। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा समिति की बैठक में हुए शामिल।

मिल कहा 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ हम आपके लिए उपलब्ध हैं। डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर भी। शाम के 7:31 और 20 सेकेंड फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग, आइए सुनते हैं इस संदेश के बाद।
1: हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम दिन शुक्रवार 21 अगस्त को। विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 222-1052 और 222-1050। एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।

श्रोताओं, ये गीत जो आप सुन रहे हैं इसे हमने लिया है फिल्म बॉबी से, और लता मंगेशकर की आवाज़, रचना है आनंद बख्शी की, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीतकार रसरंग।

श्रोता मुकेश की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था चेतना। रचना नक्शलाल पुरी की थी और कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं रसरंग आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं रसरंग आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। ये गीत जो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ थी, साथ दिया था मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम चंबल की कसम, संगीत खय्याम का था। और अब ये गीत जो आप सुन रहे हैं ये फिल्म चांदी सोना का है और किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, रचना मजरूह की।

श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चांदी सोना और रचना मजरूह की थी। और अब आप सुन रहे हैं फिल्म आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम कालिया, रचना मजरूह की, कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसरंग।

0: शोधन की आवाज़ थी आशा भोसले और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम था कालिया, रचना मजरूह की थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाते हैं फिल्म आदमी सड़क का, इस फिल्म का गीत।
1: कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया।

शुदा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म का नाम है आदमी सड़क का। रचना है वर्मा मलिक की और संगीत रवि का।

आदमी सड़क का इस फिल्म का गीत, फिल्म आदमी सड़क का इस फिल्म का गीत जो आप सुन रहे थे, इसमें आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और रचना वर्मा मलिक की थी और संगीत रवि का। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं तलत अजीज़ और बीनाज मसानी।

शोधन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। आज के कलाकार हैं तलत अजीज और पीनाज मसनी।

0: श्रोतम अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के कलाकार थे पीनाज मसानी के साथ तलत अजीज। सुगम संगीत के कार्यक्रम में पीनाज मसानी और तलत अजीज के गाए चंद गजलों के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। 8:15 और 57 सेकेंड फिल्म संगीत का कार्यक्रम आइए सुने हम और आप साथ कार्यक्रम रस माधुरी।
1: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 222-10-52 और 222-10-50। STD कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।

शोधन कार्यक्रम का पहला गीत जो आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना से था, और इस गीत में आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थीं। फिल्म दोस्ताना के गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, और अब आप सुन रहे हैं अगला गीत। फिल्म, इस फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें।

0: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। इस संदेश के पहले आपने सुना फिल्म आज का अर्जुन का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज थी। संगीत बाप्पी लहरी का था। और अब कार्यक्रम का अगला गीत अमित कुमार की आवाज, फिल्म का नाम तेरी कसम, संगीत आर डी बर्मन का।

0: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के पहले आपने सुना अमित कुमार की आवाज, फिल्म का नाम था तेरी कसम, संगीत आरडी बर्मन का। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत, जो है धर्मा फिल्म से, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। रचना है वर्मा मलिक की, और ये रचना आइए सुने हमारा साथ साथ।

श्रोताओं, की रचना जो आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से थी और आवाज़ें आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की थी, रचना वर्मा मलिक की थी। और अब कार्यक्रम के अंत में रसमाधुरी की अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत जो है फिल्म धर्मात्मा से, मुकेश और कंचन की आवाज़ें, संगीत कल्याण चैनल जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में रसमाधुरी की आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म का गीत। मुकेश और कंचन की आवाज़ें थीं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया।

0: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बरम।

0: अमरनाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
1: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी

0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबार्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यंग।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh National

0: बुनियादी ढांचे के फरोग पर तवज्जो की जाएगी, जबकि ग्रीन फील्ड इलाकों में लैंड पोलिंग और निस्बतन कम घनी वाले इलाकों के लिए के जरिए सड़कों के कनेक्टेड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। मजमूई तौर पर ये दोनों अंदाजे नजर जमीन के मुनासिब इस्तेमाल, शहर के अंदरून और दीगर शहरों से मजबूत कनेक्टिविटी और तालमेल पर मबनी पायदार तरक्की फराहम करेंगे। इस मंसूबे में अवाम को शहरकारी की मनसूबाबंदी में मरकजी मुकाम पर रखा गया है, जिसमें नौजवानों, खवातीन, बच्चों, मुअम्मर शहरियों और माजूर अफराद की उमंगों पर खसूसी तवज्जो की गई है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: प्लान के इजरा की तकरीब के दौरान मकानात और शहरकारी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले बरसों में तकरीबन 40 लाख मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मकानात का इजाफा किया जाएगा, जिनमें से एक बड़ी तादाद मेयारी रिहायशी यूनिटों की होगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद शहर की वसी आबादी के रिहायश से मुतालिक मांग को पूरा करना है। अपने मकसद के मुताबिक अगर प्लान पेशरफ्त करता है तो बड़ी तादाद में लोगों को मकानात के नए ऑप्शंस तक रसाई हासिल होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने बताया कि कौमी राजधानी के अवाम इस मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली 1484 मुरब्बा किलोमीटर का अहाता करती है और इसके अंदरून इसकी अपनी बहुत सी हदूद पाई जाती हैं। ताहम उन हदूद को जहन में रखते हुए ये प्लान इस तरह वजह किया गया है कि जिसमें देही इलाकों, अनऑथोराइज कॉलोनियों और मनसूबा बंद इलाकों का अहाता करते हुए पूरे शहर की मजमू तरक्की को यकसां तौर पर यकीनी बनाया जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सीनियर लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया। 78 साल रहनुमा ने मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में मुनक्किद हुई सदारती इंतखाबात में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने साबिक फौजी ऑफिसर ओली अहमद को शिकस्त दी। ओली अहमद को बांग्लादेश की जमात इस्लामी और तलबा की क्यादत में मुल्क की पहली सियासी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी NCP की क्यादत वाली 11 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी। उन्होंने 88 वोट हासिल किए। हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में FIH आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल किए मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। दोनों ही टीमों ने अपने लिए कई बार मौके बनाए लेकिन वो गोल करने में नाकाम रहीं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन IR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 9:30:17 कार्यक्रम आइए गैर फिल्मी गीत और गज़लों का सुनते हैं जो है अंजुमन। आप सभी श्रोताओं का अंजुमन में बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोताओं कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे सोनाली राठौड़ की आवाज़ में, ये रचना थी साहिर लुधियानवी की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

और शबुसले की आवाज़ आप सुन रहे थे शाम से आँख में नमी सी है, रचना थी गुलजार की। और अब ये रचना कार्यक्रम अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

शुभम, ये आवाज़ थी तलत अज़ीज़ और पीनाज़ मसानी की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। रात्रि के 9:48 और 38 सेकेंड। अगली रचना आपके रेडियो सेट तक।

0: شدن یہ آواز تھی چترا سنگھ کی اور رچنا تھی ممتاز مرزا کی. اسی رچنا کے ساتھ ہی آج کا کارکرم غیر فلمی رچناؤں پر آدھارت انجمن اب یہیں سمپن ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. میڈیم ویو 241.5 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر. راتری کے 10 بجے ہیں, 10:14, اور اب आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके ही पत्रों पर आधारित, जो फिल्मी गीत के लिए आप हमें पत्र लिखते हैं. फरमाइशों पर आधारित उन्हीं पत्रों को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं और कार्यक्रम का नाम है आपकी पसंद. आज के इस कार्यक्रम के साथ नमस्कार आप सभी को. आपके रेडियो साथी सिद्धार्थ का ये पहला गीत आप सब सुने, उससे पहले ये संदेश भी सुनते चलें.
1: हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम. दिन शुक्रवार 21 अगस्त को. विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण. हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में. फोन नंबर है 222-1052 और 222-1050. एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में. तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है.
0: श्रोताओं, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार के साथ स्वागत आज के इस कार्यक्रम में. कार्यक्रम है आपकी पसंद और पहला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम मिला, रचना मजरूह की. पहले गीत सुन लेते हैं.

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। फिल्म का नाम था मेला और रचना मजरूह की थी और सुनना चाहा था आप सब श्रोताओं ने। ये हैं सद्भावना छोटी बेरी वाराणसी से, अर्जुन कुमार सिंह, वंदना सिंह, बिनती विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी। और ये पत्र है पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला, अनार बाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी और आयशा सुलेमानी के साथ साकिब और जाहिद सुलेमानी, करवा डीह प्रतापपुर इलाहाबाद से राम प्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया गौतम और सौरभ वर्मा का ये पत्र हम तक पहुँचा है। और ये पत्र आया है जमानिया ज़िला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जमानिया रेलवे स्टेशन से ही आशुतोष एवं अभिनव जायसवाल, जमानिया से जो है स्टेशन रोड, यहाँ से एसपी जायसवाल और डिंपल जायसवाल, कमहरिया जमशेदपुर से विपिन बाबूदेव और बाबू आर्य जायसवाल, चकिया बाज़ार चंदौली से सुंदर एवं सुमन जायसवाल और बबरी बाज़ार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल। आप सब श्रोताओं ने सुनना चाहा था इस कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मेला से, और अब अगला गीत जो हमारा और आपका दोनों का इंतज़ार कर रहा है, कार्यक्रम है आपकी पसंद।

0: नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। तो हमें फोन जरूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के पहले आपने सुना फिल्म शर्मिली का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना नीरज की थी। और सुनना चाहा था परली वैजनाथ से विद्यानगर के मास्टर आरजी फड़, श्रीमती अनुसुईया फड़। ये हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द, श्री त्रिभुवन नाथ मालवीय, शशि मालवीय और आकाश मालवीय, अनमोल मालवीय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब श्रोताओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम में पत्र लिखा है। आपने ये पत्र भेजा है बड़ी कैबी वाराणसी से। और ये पत्र हम तक पहुंचा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का। और साथ में ये पत्र है ये अस्तुपुरा मऊनाथ भंजन से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, अबू बकर अली अंसारी, सादिक साजिद सारिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनबर और ईरम परवीन। रेलवे स्टेशन जमानिया से ये आज़िमबाद मऊनाथ भंजन से आमिर अखलाक, अवनीश कुमार मिश्रा और कुमारी रानी मिश्रा। वलीदपुर मढ़ा से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती और सिराज अहमद फारूकी का। और ये पत्र है जो हमें दिख रहा है कच्ची सराय दलमंडी वाराणसी से आया हुआ है मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद, रोज़ी अलीसा का। और ये पत्र है हमें मिला है करौता लोहता वाराणसी के हमारे साथी जो मित्र हैं, जो श्रोता हैं और हमें पत्र लिख रहे हैं। ये हैं अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश, सोना और राहुल प्रजापति। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के गीत सुनवाने के लिए जो कार्यक्रम है वो है आपकी पसंद।

नमस्कार सखियों, हम लेकर आए हैं फोन इन कार्यक्रम। दिन शुक्रवार 21 अगस्त को, विषय है सावन के पारंपरिक व्यंजन और पोषण। हमें फोन करें सुबह 11 से 11:45 के बीच में। फोन नंबर है 2221052 और 2221050। एसटीडी कोड है 0542, जिसे आप सुन सकते हैं 21 अगस्त को ही।

0: ही दोपहर 1:15 से कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, तो हमें फोन जरूर करें क्योंकि आपकी राय हमारे कार्यक्रम को और भी खास बनाती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। इस संदेश के पहले आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम था अभिनेत्री और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाहा था चकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन सुभाष शिवांश जायसवाल, नई बाजार भदोही से विनोद आशा हर्ष और श्रेया जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू गोपाल लाल जायसवाल और चिन्मय महतो, इनके साथ हैं विनोद पिंकी कृष्णा और पूनम जायसवाल। अहमदनगर बजरडीहा वाराणसी से बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली, अहमद रज़ा मुकीम रज़ा और आज़ाद अहमद अंसारी। ये हैं तकिया मणियाहूँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमा शाह, मोहम्मद दानिश शाह और मोहम्मद साजिद शाह। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, गांव फरासी से राजकुमार डूडी और सरजीत सिंह डूडी। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, परमवीर परवीन ग्रोवर आपने लिखा है, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा ततरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा। और अगला जो पत्र हमें दिख रहा है ये आया हुआ है सेक्टर 27 सी चंडीगढ़ से यश कुमार वर्मा, सुषमा वर्मा और इनके साथ इनके बहुत सारे मित्रगण। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी पसंद, और ये गीत आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म राजा रानी से है, संगीत आर डी बर्मन का है। और सुनना चाहा है जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज़ आलम और चांदनी नाज, गांव चहलता से संजय ढींगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। आप हैं अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र वड़के, फुलवा मेहता, विकास वड़के और नीलेश वड़के, और बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, आप सब हैं प्रमिलागंज आलोट, ज़िला रतलाम, मध्य प्रदेश से।

और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म पेंटर बाबू का गीत। इस गीत को गा रहे हैं महेंद्र कपूर और साथ दे रही हैं लता मंगेशकर और साथी। संगीत उत्तम जगदीश का है और सुनना चाहा है आप सबने। तितरवा डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जिया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहेद्री बाई, मंजू मनाशी, मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम। सौंदड़ महाराष्ट्र से शमीम अहमद अश्क और सबीहा खातून।

इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम शिखा शिफाली और ग्राम सरखोनेला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव कमलेश साव रावी साहू हनी हिमांशु डिम्पी और सेजल साव आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में पत्र लिखे और जिनके शामिल हुए जिनके शामिल नहीं भी हुए सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहीं अपने रेडियो साथी सिद्धार्थ को आज के आपकी पसंद कार्यक्रम से दें अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वायलिन वादन। कलाकार हैं विदुषी एन राजम। राग है मियाँ मल्हार। आपके साथ तबला संगति छोटे लाल मिश्र की है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थीं विदुषी एन राजम। राग था मियां मल्हार। आपके साथ तबला संगति छोटे लाल मिश्रा की थी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हिंदी में समाचार की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यवाग

0: जी, और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence today and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi today. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. PM Modi also recalled his detailed discussions with Japanese counterpart Sanae Takaiji during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. sharing a social

मीडियम वेव 241.5 हज़ार मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच डीआरएम 1,233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11:10 और 19 सेकेंड संपन्न हो रही है आज की यह सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें यहीं अनुमति दें। जय हिंद।